0: strategy for your retirement years. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
1: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
2: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
3: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
2: सच में बिल्कुल घर जैसा।
3: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
4: हाय, दिस इज रणवीर शोरी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।
5: गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सहेलियों, साथियों वगैरह वगैरह। और हम उससे ज्यादा, मैं और किसी को नहीं बोल रही यार, नाम बहुत होता है, आप खुद ही ढूंढ लेना, बहुत सारे नाम होते हैं, जो भी है, ऑल द सिनोनिम्स ऑफ फ्रेंडशिप्स एंड फ्रेंड्स। आप वेलकम टू माय शो एंड इवनिंग इन डैलस, एग्जैक्टली। और हम आ चुके हैं आज के मेरे सेगमेंट में, जो मैं करने वाली हूँ 7 बजे से 10 बजे तक। और मैं कौन हूँ? मैं तो हूँ मैं अलबेली, ना ना ना ना ना। नहीं, मैं उतनी, मतलब मेरा नाम भी है अलबेली, मेरा नाम नहीं है, सबको पता ही है यार, अब तो सब लोगों ने सुन भी लिया है, अब तो रेगुलर सेगमेंट बन चुका है। एग्जैक्टली, एवरी मंडे टू थर्सडे 7 to 10 PM आप मुझे यहाँ पे सुन सकते हैं। और मैं हूँ इपी द हिपी, द न्यूएस्ट बैडी आरजे हियर। वी आर अनफिल्टर्ड, वी आर अनअपोलोजेटिक एंड वी हैव रियली अनबायस्ड ओपिनियंस यू गाइज, ओके? वी जस्ट से थिंग्स and we make sure that it's like appropriate according to FDIC regulations as well. We don't want to go all out, but we do some really fun stuff over here. ठीक है, तो उसके आगे जाने से पहले मैं आपको, आज मैं बहुत सारी सही चीजें बोलने वाली हूँ, लेकिन वहां पे जाने से पहले ना, सबसे पहले मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ, ठीक है? और उसके बाद, हम गाना सुनने के बाद हम वापस आएंगे यहाँ पे, जिसमें आई विल टेल यू हाउ टू प्लान योर वीक। एग्जैक्टली गाइज, मेरे पास एक छोटा सा कैलेंडर है, दीज आर सम इवेंट्स दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज गर्मियाँ ऑफिशियली शुरू हो चुकी है, सारे बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, यू नो टेक्निकली ट्रैफिक भी कम हो जाना चाहिए, पर ट्रैफिक यार आज देख के तो लग नहीं रहा था कि ट्रैफिक कुछ कम है। बाय द वे, अगर आप बाहर निकल रहे हैं आज या इस वक्त, अगर आप ड्राइव कहीं भी कर रहे हैं, तो प्लीज जरा ध्यान से करिए, बिकॉज द ट्रैफिक गॉड्स आर नॉट गोइंग टू बी ऑन योर साइड टुडे, दे आर रियली नॉट गोइंग टू बी ऑन योर साइड टुडे, बिकॉज आज मैंने काफी ड्राइव किया आज, मैंने आई हैड सम लेसन वगैरह वगैरह सब टीच वीच करके व्हेन आई वाज ड्राइविंग। भाई कोई भी रोड मैं लूं, कोई भी रोड, हर रोड पे मुझे एक्सीडेंट दिख रहा है, हर रोड पे कोई ना कोई एक्सीडेंट दिख रहा है, या फिर दो लेन्स ब्लॉक्ड है, या फिर कंस्ट्रक्शन चल रही है, मतलब ऑल ओवर डैलस कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। इसी हफ्ते सबको डिसाइड करना है कि सारी रोड की मरम्मत आज ही हम खत्म करेंगे या इसी हफ्ते खत्म करेंगे। तो आप कहीं भी जा रहे हो भैया, प्लीज ओपन योर गूगल मैप्स, ट्रैफिक रिपोर्ट जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे, गूगल मैप्स आपको नेविगेट कर देगा विच इज टू द फास्टेस्ट रूट। और अगर आप टाइम से नहीं निकल रहे हो, वैसे तो माई एडवाइस वुड बी टाइम से लेके निकलो, कि अगर ट्रैफिक वगैरह फंस भी जाए देन यू कैन मैनेज, बट अगर आप ट्रैफिक अपडेट्स नहीं देख रहे हैं और टाइम नहीं है आपके पास, तो जरूर गूगल मैप्स पर चेक करिए, बिकॉज इट्स गोना नेविगेट यू टू डिफरेंट रूट्स and then you can just adapt accordingly, okay? Today, I don't know, I changed like 4 different routes. चलते थे, कहीं भी जा रही हूँ, फिर से मतलब रूट चेंज हो रहा है वगैरह वगैरह। एनीवेज, आप ये गाना एंजॉय करिए, फिर जब हम आएंगे वापस, तो आई विल टेल यू अबाउट सम रियली हिप एंड हैपनिंग इवेंट्स दिस वीक, विच यू कैन एब्सोल्युटली लुक फॉरवर्ड टू, मे बी टेक योर किड्स और नॉट, इट्स टोटली अप टू यू, ओके? और मे बी जस्ट एंजॉय इट बाय योरसेल्फ्स, और गो विद योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड और योर यंग वाइफ वगैरह वगैरह, एंड देन Yes, we will talk some more.

हेलो हेलो माय जाने मंस, कैसे हैं? वी आर बैक। जब तक ये गाना खत्म हो रहा था तब तक मैं अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी। भाई मैंने तो बहुत रिसर्च करी, और साथ में मैं ना एक बड़े अच्छे कॉल पे भी थी। आई वॉज ऑन अ कॉल विथ मिस्टर कमल। कमल जी जो मेरा शो कल भी सुन रहे थे, आज भी वापस वो रेगुलर सुन रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे करके ना आप लोग मेरे रेगुलर लिसनर्स बन गए, और मुझे लगता है कि मेरी एक कोई फैमिली बन गई है। क्योंकि मैं यहाँ पे जब डैलस आई, आई एम लाइक ऑल बाय माई सेल्फ। मेरे रिश्तेदार बोल के एज सच कोई भी नहीं है। इनफैक्ट पूरे नॉर्थ अमेरिका में मेरे कोई भी रिश्तेदार नहीं है। मैंने अपने घर वालों को बोला, मम्मी पापा टाटा बाय बाय, आई एम गोइंग, मुझे अकेले अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो मेरे पेरेंट्स थैंकफुली बहुत इनकरेजिंग थे, कहते जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। वैसे सिमरन तो नहीं है, खैर मेरा नाम एपी है, लेकिन वैसी वाली फीलिंग ही आ गई थी, बिल्कुल सिमरन वाली। ठीक है। तो फिर एनीवेज, जब मैं आई, जब आपके कॉल्स मुझे ऐसे आते हैं ना कि आप रेगुलरली मेरा शो सुन रहे हैं, आपको मेरी गपशप बहुत पसंद आ रही है, ये हम थोड़ी मस्खरी भी करते हैं, थोड़े मजाक भी करते हैं, वो जब आपको मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत मजा आता है। तो मैं अभी कमल जी से बात करी थी, वी बॉन्डेड ओवर चौपाटी में पाव भाजी और बहुत अच्छा अच्छा खाना, क्योंकि बॉम्बे की भाई चौपाटी वो अलग ही फील होती है। मतलब आप जाओ चौपाटी में या जुहू बीच पे जाओ, मतलब जूते वूते उतार के बैठो रेत में, अलग ही फील है उसकी। ठीक है, वहां पे ठीक है बहुत टाइप के लोग मिलेंगे आपको, बट इट्स वेरी नाइस। तो मैं उनको बता रही थी मैं बॉम्बे में कहाँ रहती थी, जब 2 साल मैं बॉम्बे में रही, तो उसके पहले मैं दिल्ली में थी, वगैरह वगैरह ऐसे ऐसे करके। तो थैंक यू कमल जी फॉर योर ब्यूटिफुल कॉल। आपने सिर्फ मुझे ये चीज़ बताने के लिए कॉल की, मुझे बहुत ही खुशी हुई, बहुत बहुत बहुत खुशी हुई। कमिंग बैक, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, गाइज देर आर सो मैनी अमेजिंग इवेंट्स हैपनिंग दिस वीक। अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। दीज आर समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। ऑब्वियसली मैं सब में तो नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सारे एक ही दिन पे हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने इवेंट्स चूज कर लीजिए, आपको कहाँ पे जाना है। सबसे पहली चीज तो मैं बोलूंगी, दिस इज द प्राइड मंथ, यू गाइज हैप्पी प्राइड। और हम लोग डैलस प्राइड मंथ सेलिब्रेट हो रहा है जून 6 को, सैटरडे, और उसके बड़े सारे छोटे छोटे फेस्टिवल्स हैं। एक मेन फेस्टिवल भी है उसका, जो मेन फेस्टिवल है दैट्स कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ रेनबोज एंड द फर्स्ट एवर सनसेट प्राइड। और ये डाउनटाउन डैलस में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ओके, 6 जून को। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द प्राइड फेस्टिवल, लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग कॉस्ट्यूम्स, लॉट्स ऑफ यू नो कैरेक्टर, लॉट्स ऑफ लिबरल आइडियाज एंड थॉट्स एंड एवरीथिंग। इफ यू आर इनटू दैट स्टफ तो आप जा सकते हैं मेन स्ट्रीट गार्डन पार्क में 11 बजे से रात के 10 बजे तक। वहां पे लाइव एंटरटेनमेंट होगा, वेंडर्स होंगी, बहुत कुछ होगा, मतलब इट्स लाइक अ फुल फेस्टिवल, तो यू कैन गो चेक इट आउट। हार्डवुड पार्क में भी होगा सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक, एंड दिस इज डेडिकेटेड टू द फैमिली प्राइड जोन, विच मीन्स अगर आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो दिस इज वेयर यू नीड टू टेक दैम। एंड टीन प्राइड ऑल्सो, दे हैव समथिंग नोन एज टीन प्राइड। वहां पे बाउंस हाउसेज है, गाइज आई थिंक दिस इज लाइक द परफेक्ट ओकेजन फॉर योर लिटिल बच्चा। अगर आपको समर में एक्टिविटी चाहिए होती है, क्योंकि बच्चे वैसे ही परेशान हो जाते हैं समर कैंप जा जाके, वो गंदे गंदे क्राफ्ट बना बना के और घर लेके आते हैं, वो स्लाइम शाइम में कवर्ड, पेंट शेंट में कवर्ड, आई नो दे ऑल एंजॉय इट एंड स्टफ, लेकिन मतलब यू नो दिस इज समथिंग मोर फन आई गेस। बाउंस हाउसेज है, फेस पेंटिंग है हार्डवुड पार्क में फ्रॉम 11 AM टू 6 PM ऑन सैटरडे। देन पेसिफिक प्लाजा ऑल्सो इज होस्टिंग द प्राइड फेस्टिवल फ्रॉम अगेन 11 AM टू 6 PM। दिस इज अगेन अ कम्युनिटी फेस्टिवल जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को फीचर करेगा। देर इज गोना बी फूड एंड एक्टिविटीज, एंड देन देर इज पेगासस प्लाजा में भी हो रहा है 11 AM टू 10 PM। दिस इज अ परेड व्यूइंग एरिया। अगर आपको प्राइड परेड नहीं पता है, तो लोग बड़े रंगीले रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स पहन के रस्ते पे निकलते हैं, एंड देन देर इज अ प्रॉपर परेड। इट्स लिटल बिट ऑफ अ वाइल्ड पार्टी यू नो, बट आई मीन इट्स क्वाइट फन टू वॉच, एंड यू बेसिकली इट्स लाइक अ रियली सेफ फीलिंग एंड इट्स काइंड ऑफ नाइस। मैं कभी गई नहीं हूँ किसी भी प्राइड इवेंट में, बट आई रियली वॉन्ट टू गो समटाइम्स। कभी मुझे टाइम मिलेगा ना मेरे बिजी स्केड्यूल से, काम वगैरह से, तो मैं जरूर जाऊंगी। तो पेगासस प्लाजा इज लाइक अ परेड व्यूइंग एरिया, देयर इज अ VIP एक्सपीरियंस ओवर देयर, एंड देर आर वेंडर बूथ्स ऑल्सो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, जनरल एडमिशन टिकट $10 की है,
अगर आप पहले से खरीद रहे हैं, और अगर आप पहले से नहीं खरीद रहे हैं, अगर आप गेट पे खरीद रहे हैं, तो टिकट्स आर $15. सीनियर्स या एक्टिव मिलिट्री पर्सनल को मिलेगा $2 डिस्काउंट. वाह, चिल्ड्रन अंडर 12 आर फ्री. गाइस जाओ, बच्चों के लिए तो फ्री है, तो यू कैन टोटली गो. ओके, टिकट्स कैन बी परचेज विया द डैलस प्राइड टिकट्स पेज. इसके अलावा देर इज सनसेट प्राइड परेड विच इज ऑल्सो हैपनिंग ऑन द सेम डे आफ्टर द फेस्टिवल, बेसिकली फ्रॉम 7 PM टू 9 PM. द सनसेट परेड इज फ्री. इट्स फ्री, यू कैन वॉच इट, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, एनीथिंग यू वॉन्ट गो. इसके अलावा और क्या क्या इवेंट्स हो रही है डैलस में, मैं आपको बताती हूँ गाइज, मेरा ये टैब खुल जाए. एग्जैक्टली सैटरडे को पता है और क्या हो रहा है, 4 बजे से रात के 11 बजे तक. गाइज, ये जिनको खाने, जो खाने के शौकीन हैं, उनके लिए है. देर इज अर्विंग टाको फेस्टिवल. यम, ऑल काइंड ऑफ टाकोज. दिस इज ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल मार्गरीटा ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अगर आपको खाने हैं यमी यमी टाकोज, तो आप जरूर जाइए. गाइज, दिस इज अ फ्री इवेंट. खाना आई एम श्योर फ्री नहीं होगा. देर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड माय फ्रेंड्स. लेकिन अगर इवेंट तो फ्री है, और इवेंट में क्या क्या हो रहा है, देर इज गोइंग टू बी लाइव म्यूजिक, वेंडर्स, यार्ड गेम्स. तो अगर आपको डार्ट्स खेलने हैं, या वो जो क्या खेलते हैं ना, वो सैंड बैग फेंक के, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बट यू नो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. देर इज फोटो ऑप्स ऑल्सो. सो थोड़ा नाइस बैकग्राउंड के साथ अगर आपको क्वर्की फोटोज लेनी है, सो दिस इज द प्लेस. देर इज गोइंग टू बी स्ट्रीट टाकोज, देर इज गोइंग टू बी मार्गरीटास. द एंट्रेंस टू द फेस्टिवल इज फ्री. There is no tickets for it. However, tacos खाने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे. I think they have two prices for the tickets over there. I think $10 में आपको कुछ VIP experience वगैरह कुछ मिलता है. अगर आपको interested है तो ज़रूर Google करिए और जाइए Irving Taco Festival में, जो भी जो Saturday को भी है. मतलब wow, Saturday is like really hip, you guys, like so much. And this is for all my boys out there, all my boys and men I know. Actually, I shouldn't generalize it, by the way. वैसे तो all my friends who are soccer lovers, football lovers. यार देखो भाई, I am Indian. I come from the British tradition, जो भी है English language की. I can't say soccer. मेरे मुँह से ना football ही निकलता है. I know America में football का meaning कुछ और होता है, but we will call it football because हमारी audience वैसे Indian ही है. But there is, as you all know, FIFA World Cup is coming to town, okay? So, FIFA World Cup 2026 stadium tours are being organized, okay? So, Dallas Stadium tour bhi ho raha hai. If you're interested to see the stadium where it's going to be held, it's quite a limited time experience, and it's going to be amazing. You can book your date and time in advance. I think they have some dates still open. Just look for FIFA World Cup 20.

it's quite a limited time experience, and it's going to be amazing. You can book your date and time in advance. I think they have some dates still open. Just look for FIFA World Cup 2026 Dallas Stadium Tour. You can go take a tour. The whole tour is like around 1 hour 30 minutes. Parking is free. And I believe there is some... Achha, khatam ho gaya. Oh, koi baat nahi. Keep watching. There are multiple dates where it's being held. So, I saw it this morning. Tab to dates mil rahi thi. Mujhe lagta hai ab wo khatam ho gaya hai sari dates. Sales ended June 2nd. Oh, no! आज 12 बजे तक ही सेल्स चल रही थी. ओह नो, काश मैं पहले आती यहाँ पे तो मैं पहले बोल सकती थी आपके लिए. कोई बात नहीं, मे बी दोबारा खोल दे. कीप वॉचिंग आउट फॉर इट. आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. बट एनीवेज, दोज आर सम इवेंट्स दैट आई थॉट वर रियली कूल. देर आर सम मोर इवेंट्स व्हिच आई विल टेल यू अबाउट आफ्टर वी प्ले द सॉन्ग. सो यू गाइस कैन गो चेक आउट द सॉन्ग एंड देन वी विल कम बैक एंड आई विल टेल यू अबाउट सम मोर स्मॉलर इवेंट्स, नॉट सच बिग इवेंट्स. ओके, सो जस्ट एंजॉय.

फेस्टिवल में पहले गए हैं, मैं कभी नहीं गई हूँ प्राइड फेस्टिवल में, तो उन्होंने ये हमको डिस्क्रेशनरी वार्निंग दिया है, अगर आप बच्चों को लेके जा रहे हैं तो प्लीज इंश्योर कि 12 साल के ऊपर के बच्चे हों, बिकॉज अदरवाइज दे माइट इट माइट बी टू मच फॉर अ लॉट ऑफ द यंग माइंड्स. लेकिन आई थिंक अगर आप जो बच्चों वाला जो फेस्टिवल है ना, जो मैंने बीच में बोला था, अगर आपने नोट्स लिए हुए हैं विच इज स्पेशली डिजाइंड फॉर यंगर किड्स विद बाउंसी हाउसेज एंड फेस पेंटिंग एंड स्टफ, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन. तो पप्पू जी थैंक यू फॉर दैट डिस्क्रेशनरी वार्निंग्स. प्राइड परेड में ना लेके जाएं बच्चों को, परेड में कुछ और ही होगा शायद, आई हैव नो आइडिया, बट अगर आपको बच्चों की कम्युनिटी फेस्टिवल में लेके जाना है जहाँ पे वो फेस पेंटिंग वगैरह करें, टोटली गो ओवर दैट. पप्पू जी आपके लिए एक स्पेशल गाना, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत स्पेशल है. थैंक यू सो मच भैया.

आर बैक. अभी ये गाना बजाते बजाते मेरे को बड़ी एक इंटरेस्टिंग कॉल आई पप्पू जी से. पप्पू जी, उन्होंने अपना रियल नाम तो नहीं बताया. पप्पू जी, उन्होंने अपना नाम पप्पू जी बताया, तो आई विल टेक इट. यू नो व्हाट, क्यों नहीं, व्हाई नॉट. तो पप्पू जी ने बोला क्यों, क्योंकि वो

0: Hi guys, this part of the show is brought to you by Umar Khwaja. अगर आज के मौसम में आप किसी एक्सीडेंट वगैरह में फंस जाएं, क्योंकि बहुत सारे रोड्स पे एक्सीडेंट हो रहा है, तो प्लीज गिव अटर्नी उमर ख्वाजा अ कॉल. ही विल कम एंड फाइट योर केस एंड ही विल हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन यू डिजर्व. डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज इज वेरी पेनफुल एंड स्ट्रेसफुल, सो यू नीड एन अटर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर वेल कॉम्पेंसेटेड. यू डोंट पे अंटिल यू विन. So, for a free consultation, call 469-300-5046 or visit attorney.com. हम 25 सेकंड में जाने वाले हैं दूसरे ब्रेक पे, but this is another event that I really want to tell you about. It's called Painting Kalamkari Florals. If you're interested in art or painting, then this is being hosted by Maninder Singh Ji, who is hosting it at Sweetwater's Coffee and Tea at Preston Road, Frisco. And this event is going to be on Sunday, so you can check it out.
1: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
2: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
7: Calculating route. Rerouting.
6: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
7: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
6: क्यों?
7: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
6: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
8: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट,
7: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
14: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
15: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
16: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
17: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच ambience and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to page 3, hub 121 McKinney.
18: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
19: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
0: हेलो गाइस, वी आर बैक. मेरे जाने से पहले, ब्रेक में जाने से पहले, मैं आपको एक बहुत अमेजिंग इवेंट के बारे में बता रही थी, कॉल कलमकारी फ्लोरल्स, ट्रेडिशन इंडियन आर्ट एंड वाटर कलर. अगर आप 90s किड है या अर्ली 2000s किड है तो आपको पता होगा कलमकारी वाज लाइक ह्यूज इन कुर्ता डिजाइन. मेरे पास कम से कम 5 या 6 कलमकारी प्रिंट के कुर्ते थे, और कलमकारी प्रिंट की साड़ी भी थी, एक ब्लाउज भी था, एंड वगैरह वगैरह. इट वॉज लाइक सुपर हिप. DU के अगर आप स्टूडेंट थे ना, इफ यू आर अ गर्ल स्टडिंग इन DU, देन कलमकारी के कुर्ते आपके पास होने ही थे. तो एनी वेज, वट इज दिस कलमकारी? बेसिकली यूर पेंटिंग फ्लोरल्स, ओके, एंड वी आर पेंटिंग ऑन पेपर, वी आर नॉट पेंटिंग ऑन क्लॉथ. बट If you're interested, then you can go to Sweetwater's Coffee and Tea on Sunday, June 7th, 11 a.m. Just Google it, where it is happening. Agar tickets wickets chahiye, uska information unfortunately mere paas nahi hai. But it is hosted by Maninder ji, and you're going to paint some beautiful karamkari floral in watercolor. So I think this is a really great activity to do with your kids over the summer. You know, crafty. आप समर कैंप में क्यों पैसे दे रहे हो जब आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हो ये, है ना? समर कैंप में वो फालतू स्लाइम शाइम बनाएंगे, क्या बकवास है, घर ही गंदा होता है उसके बाद. एनीवेज, बच्चों को बिजी भी रखना पड़ता है, क्या करें. एनीवेज भाई लोग, आप लोग कॉल पे नहीं रेडियो पे बने रहिए, क्योंकि 8 बजे के बाद, जो 8 बजे जो हमारा ब्रेक होता है, उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा गिव अवे है चंडीगढ़ बाइट्स का. एग्जैक्टली पिछले हफ्ते मुझे किसी ने कॉल करके ना मुझे रेडियो पे पूछा कि मैडम ये चंडीगढ़ बाइट्स का लोकेशन बता दीजिए. मैंने कहा यार मैं गूगल मैप तो नहीं हूँ. ओके, तो कमल जी आपने भी मुझे बोला कि मैं आपकी गूगल मैप बन जाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर मैं गूगल मैप बन गई तो मैं गाने कैसे बजाऊंगी, हाँ, तो मैं इवेंट्स कैसे डिस्कस करूंगी. इतनी सारी मेरी मेंटल कैपेसिटी है नहीं, मल्टीटास्किंग मैं नहीं कर सकती, सॉरी. बट एनीवेज, वी हैव अ गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स एट अराउंड 8 o'clock. तो आप ट्यून इन रहिए, बड़ा मजेदार होने वाला है ये गिव अवे. और आपको क्या मिल सकता है उस गिव अवे में? यू कैन विन लाइक ए, व्हाट डू यू कॉल इट, लाइक अ गिफ्ट कार्ड और समथिंग लाइक दैट टू कढ़ाई पनीर और कढ़ाई चिकन. ओके, चंडीगढ़ बाइट्स में आपको कढ़ाई पनीर या कढ़ाई चिकन मिलेगा. वाह, कढ़ाई पनीर या कढ़ाई चिकन से याद आया, सो आई हैव अ लॉट ऑफ अमेरिकन फ्रेंड्स, और वो ना मेरे को पिछली बार जब मैंने ये रेडियो शो होस्ट किया था, आई हैड गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉल फ्रॉम अ लिसनर. तो वो मुझे आके पूछते हैं कि यार व्हाट इज द रीजन व्हाई कांट इंडियन पीपल डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ वी एंड अ डब्ल्यू. एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, आई नो व्हाई वी कांट डिफ्रेंशिएट, बिकॉज हम लोग कई बार ना वाटर को भी वाटर बोल देते हैं. आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि डिफरेंस क्या है, बहुत ही छोटा, बहुत ही माइनर डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में. अगर आपको सुनाई दे रहा है वो माइनर डिफरेंस रेडियो पे, बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में आप गूगल कर सकते हैं उसको, ठीक है. हर चीज़ गूगल इज द आंसर टू एवरीथिंग दीज डेज, या चैट GPT, ऑनेस्टली दैट्स द वे टू गो. बट W वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको हम वा बोलते हैं, और वा साउंड होता है, और वी वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं वा, लाइक वेरी, लाइक विजुअल, लाइक व्हाट एल्स. ओके, W वाले जो होते हैं वो बोलते हैं व्हाट, वाटर, वेयर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इंडियन लोग क्यों नहीं बोल पाते. तो मैंने ये बोला कि भाई इंडियन लोग इसीलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे लैंग्वेज में ना वो सिलेबल एग्जिस्ट नहीं करता है. जैसे इंडियन हर लैंग्वेज की ना सबसे अलग अलग खासियत होती है, ठीक है. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में चलो वी और वा का डिफरेंस है, लेकिन हमारे इंडियन लैंग्वेजेस भी हम पीछे थोड़ी ना है. देखो भाई, हमारे पास र है, हमारे पास ड है, हमारे पास ढ है, हमारे पास ड भी है, हमारे पास अढ़ भी है, ठीक है. इतने सारी वाउल्स हैं हमारे पास, सिलेबल्स हैं, इतनी सारी डिफरेंसेस है, और ये बहुत छोटी छोटी डिफरेंसेस है. अगर आपने हिंदी ग्रामर करी हुई है या उर्दू में भी ये सारे वर्ड्स हैं तो आपको ये पता है. और अगर आपको नहीं पता है तो इसीलिए मैं ये बोल रही थी, क्योंकि अभी मैं कढ़ाई पनीर बोल रही थी ना, तो मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, तो उसको ना वो डेंटन में रहता है, वो डेंटन में एक बड़ी अच्छी सी एक फूड ट्रक है स्पाइसी चौक बोल के, कहता है आई गो टू स्पाइसी चौक एंड आई ऑर्डर द कढ़ाई चिकन. I was like, what is karai chicken? He's like, oh, that's how they spell it. I was like, no. I said, okay, what is it? He was like, kadai chicken. I'm like, it's not kadai chicken, it's kadai chicken. He's like, what is it? Kadai chicken. Usko maine itni baar hi samjhaya tha. Maine kaha, yaar, tu karai bol de, ra hi bol de. That's the closest. Kadai to mat bol kam se kam. But anyways, this is your chance to win kadai chicken. Or kadai chicken, however you want to say it. Or kadai paneer from Chandigarh Bites in Allen. So, we will do that giveaway at 8. So, you are making a call. It's going to be a must giveaway. Okay? Not on call, on the radio. So, you are making this song. And when you come back, we will talk about something interesting. Okay?

एनीवेज गाइस, वी आर बैक. और मैं जो बोलने वाली थी वो ये था कि अभी जब हम गाने सुन रहे थे, मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉल आई. जिन्होंने अभी आपने शायद अगर मेरी स्टोरी सुनी होगी तो मैंने बोला था कि व्हाट डू यू कॉल इट, वो वी और डब्ल्यू के बीच का अंतर. मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉल आई थी पिछले हफ्ते. तो मिस्टर पटेल ने एक्चुअली पटेल जी ने वो मुझे कॉल करके वो वाला क्वेश्चन पूछा. तो फिर मैं उसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा वगैरह वगैरह, फिर मैंने आंसर पूरा उनको दे दिया. तो ये बातें सुन के मिस्टर पटेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ रेगुलर लिसनर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव माय हार्ट, ओके, एंड सेकंड ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली लिसनिंग एंड कॉलिंग एंड एक्चुअली ब्रिंगिंग समथिंग एल्स टू आर अटेंशन. वो ये था, कई बार ना क्या होता है, मेरे भी बहुत, मतलब मैं तो इंडियन खैर हूँ ही, बट मेरे भी बहुत अलग से इंडियन दोस्त काफ़ी हैं. तो उन्होंने ये बोला कि समहाउ वी इंडियंस जब हम बातें करते हैं, कोई हमसे, अगर हमसे कोई सवाल पूछता है, हे डू यू वांट टू हैंग आउट, डू यू वांट टू गो टू डिनर, एंड द पर्सन ऑन द अदर साइड, लॉट ऑफ द टाइम्स माई ओन फ्रेंड्स, दे विल जस्ट से श्योर. बट यू गाइज, श्योर इज नीदर अ येस और अ नो. यू हैव टू अकम्पनी दैट श्योर विथ समथिंग एल्स, लाइक श्योर आई विल टोटली गो विथ यू, और श्योर बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अवेलेबल. गाइज, दैट इज नॉट अ कॉन्फर्मेशन. तो आपको प्लीज येस कॉन्फर्मेशन करके अच्छे से क्लियरली आर्टिकुलेशन करके बोलना पड़ेगा. श्योर दैट साउंड ग्रेट बट वी आर बिजी, और श्योर दैट साउंड अमेजिंग, आई विल बी देयर, सी यू एट 8 o'clock. सो येस मिस्टर पटेल, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट टू माई अटेंशन. मेरे खुद के फ्रेंड्स भी यही कह रहे हैं. तो कई बार मुझे जब वो श्योर कहते हैं ना, श्योर डॉट डॉट डॉट, वो डॉट डॉट डॉट भी होता है बड़ी बारी, और स्पेशली टेक्स्ट में तो बहुत होता है. जब आप बात कर रहे होते हो देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट जब आप टेक्स्ट कर रहे होते हो, दिस इज अ टेक्स्ट प्रॉब्लम आई थिंक. जब आप टेक्स्ट कर रहे होते हो तब वो मतलब वो इट्स लाइक अ कन्फ्यूजिंग थिंग. लाइक टेक्स्ट इन माई ओपिनियन इज लाइक द वर्स्ट थिंग. आई फील लाइक पीपल शुड जस्ट कॉल ईच अदर अप दीज डेज. क्योंकि यार टेक्स्ट वाला ठीक है, आई मीन इट्स ईजी, इट्स स्ट्रेस फ्री और वट एवर, बट समटाइम्स यू शुड जस्ट पिक अप द फोन एंड कॉल योर फ्रेंड. नाउ डेज कॉलिंग समवन इज अपेरेंटली लाइक अ रियली बिग डील, एंड पीपल आर लाइक, ओ माई गॉड, आर वी रियली एट दैट लेवल ऑफ आर फ्रेंडशिप दैट यू आर गोना कॉल मी, और ओ माई गॉड, आई डोंट थिंक वी आर एट दैट लेवल ऑफ आर रिलेशनशिप दैट यू आर गोना कॉल मी, दिस इज लाइक कमिटिंग टू समथिंग. आई एम लाइक, ड्यूड चिल आउट, इट्स जस्ट अ फोन कॉल. I mean, what is wrong with people? Anyways, enjoy the song. We will come back and then we will do a giveaway at 8 o'clock. It's going to be super fun.

0: Guys, this part of the show is brought to you by Shri Krishna Jewelers. At Shri Krishna Jewelers, jewelry is not just an accessory. It's a reflection of tradition, elegance, and timeless beauty. From classic gold designs to sparkling diamonds, and from intricate kundan to stunning polki collections, every piece is crafted to celebrate life's special moments. Now welcoming you at their new location in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafting fine jewelry and cherished memories since 1967. You guys, it is that time. हम थोड़ा give away करेंगे, लेकिन इस छोटे से break के बाद, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्यास लग रहा है, तो I will go and get some water and आप ये वाला गाना सुनिए in the meantime. Thank you for tuning in and come back in 5 minutes.
1: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
4: Paid for by Mark Hill for Mayor.
5: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
6: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya?
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, स्वीट 205 फ्रिस्को।
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
12: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
13: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-244.
14: 5858 or visit lawsontravel.com.
15: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
0: Hello guys, kaise hain aap sabhi log? We are back. और अभी का टाइम हो चुका है, पता है क्या, अभी का टाइम हो चुका है 8:04. देखो मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो गई. क्यों क्यों नहीं, हम लोग तो थोड़े इंग्लिश वाले टाइप ही लोग हैं, हमारे इंग्लिश मिक्स हो सकती है. व्हाई नॉट. तो इट इज़ टाइम फॉर द एब्सोल्यूट फन गिव अवे. तो पहले मैं अपना स्पीच सुना दूँ, फिर आपको मैं क्वेश्चन बोलती हूँ. वो मेरा स्पीच क्या था, एक सेकंड ढूंढने दो यार. ये मिल गया, हियर इज योर चांस टू विन कढ़ाई पनीर, नॉट कढ़ाई पनीर और कढ़ाई पनीर, इट्स कढ़ाई पनीर और कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. प्लस एंजॉय द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली, लोकेटेड ऑफ मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन. Visit chandigarhbites.com for details. Okay? Please make sure कि अगर आप ये दोबारा giveaway जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो make sure पिछले एक महीने में आपने एक बार भी giveaway नहीं जीता है, क्योंकि यार थोड़ा वो बाकियों के लिए unfair हो जाता है. सबको chance मिलना चाहिए, है ना. तो अगर आपको मिल चुका है ये giveaway, congratulations. और अगर आपको नहीं मिला है ये गिव अवे तो आप जरूर मुझे कॉल करिए. वंस द विनर इज सिलेक्टेड, मैं आपका फोन नंबर और नाम वगैरह बाद में ले लूंगी एंड वगैरह वगैरह, और उसके बाद देखते हैं. एनीवेज, हियर इज द टाइम फॉर द क्वेश्चन. अभी ये जो क्वेश्चन है ना, मैं एक गाना बजाने वाली हूँ, ठीक है. आपको ये गेस करना है कि इसका कॉपी किया हुआ वो कौन सा बॉलीवुड गाना है, ठीक है. It's very easy. ये originally एक मेरे ख्याल से English गाना है. I'm not sure कौन सी language है. I mean, I don't think it's English actually. I think it's Spanish or French. I don't know what song this is. But एक कोई तो गाना है, it's very popular. I think maybe Spanish या Portuguese, पता नहीं, कुछ तो है, जो भी है. तो ये गाना है, उसको कॉपी करके बॉलीवुड फिल्म्स में डाला गया है. बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत सारे बॉलीवुड गाने काफ़ी कॉपी किए हुए होते हैं. मुझे तो वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है. देर इज़ एन ओरिजिनल वर्जन एंड देर इज़ अ रीडन बॉलीवुड वर्जन. सो चेक इट आउट एंड देन कॉल मी एंड टेल मी द नेम ऑफ द बॉलीवुड ट्यून, नॉट द ओरिजिनल ट्यून दैट आई एम प्लेइंग. टेल मी द नेम ऑफ द बॉलीवुड ट्यून. ओके, आर यू ऑल रेडी? ओके, 5, 4, 3, 2 2.5, 2.75, and here goes, and 1, here goes.

गाइज, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपको इतने सारे गाने पता होते हैं ना. मतलब इतना सही गिव अवे का वो होता है, एक के बाद एक के बाद एक कॉल्स पे कॉल्स कॉल्स पे कॉल्स आई जा रही है, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर करेक्ट आंसर्स. दिल ले ले लेना, उसके बाद अरे बाबा, इसको अरे बाबा भी बोलते हैं, उसको दिल ले ले लेना भी बोलते हैं, एक और भी गाना है, कितने सारे तो कॉपीज बन चुके हैं. मतलब मुझे कई बार हंसी आती है, मैंने कहा यार, मतलब थोड़ा तो डिग्निटी मेंटेन करके कॉपी किया करो, इतना इतना डायरेक्ट कॉपी नहीं चलता है. एनीवेज, दैट बीइंग सेड, आप ये वाला गाना एंजॉय करिए, ये पूरा ओरिजिनल है, देयर इज नो कॉपी इन दिस. ओके, एंड या, हैव फन.

बैक। और क्या मजेदार गाना था वो। आपने अपनी हेड बैंगिंग करी कि नहीं आज की हेड बैंगिंग करी कि नहीं? मैं तो यहाँ पे बिल्कुल स्टूडियो में ना एकदम टोटली इन माय वाइल्ड स्पिरिट, यू नो, जैसे मैं हूँ वैसे। एनीवेज दैट आई एम जस्ट किडिंग यू गाइस, बट थोड़ी बहुत हेड बैंगिंग करी मैंने। यू नो, थोड़ी फील आ गई यार, बिल्कुल मुझे अपने ना रॉक लाइक कॉन्सर्ट्स की याद आ गई जब हम लोग यंग थे, मतलब व्हेन आई वाज स्टिल अ कॉलेज गर्ल इन DU। हम लोग ना ऐसे ही बैटल ऑफ द बैंड्स वगैरह में बड़ा जाते थे, वहाँ पे मेटल बैंड्स होते हैं, वहाँ पे जाके ना हम हेड बैंगिंग बड़ा करते थे। और वापस जब आते थे गर्दन में इतनी दर्द होती है ना, सर ऐसे पीट पीट के। ऐसा नहीं है हम सर नहीं फोड़े कहीं पे, खून भी नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, वेरी PG-13। लेकिन वो जो फील आती है ना, उसमें मॉश भी कर रहे हैं, किसी को चोट वोट भी लग रही है, कभी कभार लग भी जाती थी, कोई बात नहीं। बट दैट वॉज अ डिफरेंट वाइब यू गाइज, दैट वॉज सो लॉन्ग अगो। एंड यू नो, दोज आर सम फॉन्ड मेमोरीज आई हैव फ्रॉम IIT Delhi, by the way. All this headbanging stuff was IIT Delhi का ना बहुत बढ़िया सा एक म्यूजिक फेस्टिवल हुआ करता था called Blitzkrieg. It was their IIT Delhi का कॉलेज फेस्टिवल था, और हम लोग ना 4-5 दिन वहीं रहते थे। मतलब IIT Delhi में तो नहीं रहते थे, मतलब we would spend a lot of days and a lot of hours there just hanging out and having fun with our friends. Anyways, but फन की बात करते करते टुडे ना, यू नो, ड्यूरिंग डूम स्क्रोलिंग आई केम अक्रॉस दिस रियली रियली इंटरेस्टिंग थिंग। आई मीन, एंड दिस इज नॉट मी, लाइक दिस इज नॉट माय पैराफ्रेजिंग ऑफ एनी वे, आई एम जस्ट लाइक समराइजिंग दिस। आई डोंट नो, हैव यू कम अक्रॉस दिस इंटरव्यू ऑफ ललित मोदी? यू नो, एंड ललित मोदी इज बाय द वे, यू नो, सुष्मिता सेन्स एक्स, in case you don't know. So there's this like little clip of his interview that's circulating all over the internet where people are like, this interviewer, she's asking Lalit Modi ki bhai, everybody's like, you have so much money, Lalit ji, and Sushmita Sen is like a gold digger and everything. And then he clarified it. He's like, bhai, it is the other way around actually. Agar aapko pata nahi hai, it's a very nicely put interview, okay? And agar aapko pata nahi, Sushmita loves diamonds and she loves diamonds so much. Sushmita Sen, jinko nahi pata, she was you know, the Miss Universe in 1994, and then she came into Bollywood right after. Aapko agar nahi pata, Sushmita Sen actually meri colony mein rehti thi, meri padosan thi. To matlab ha, mere ghar pe I think 2 blocks chhod ke unka ghar tha wahan pe. She was only 18 years old tab जब हम जानते थे सुष्मिता सेन को। एक दिन मैं उनके घर भी चली गई, मैंने कहा, सुष्मिता सेन, वाओ, यू वन मिस यूनिवर्स। हम छोटे छोटे बच्चे थे, आई वाज लाइक 5 or 6 इयर्स ओल्ड, हम ऑटोग्राफ लेने चले गए। एनीवेज, तो पता नहीं कहाँ से पता चलेगा कि सुष्मिता सेन आई है वापस वसंत कुंज में, चलो उनसे मिलके आते हैं। तो हम पहुंच

छोटे बच्चे थे, आई वॉज लाइक 5 or 6 years ओल्ड, हम ऑटोग्राफ लेने चले गए. एनीवेज, तो पता नहीं कहाँ से पता चलेगा कि सुष्मिता सेन आई है वापस वसंत कुंज में, चलो उनसे मिलके आते हैं. तो हम पहुंच गए, मैं और मेरी दोस्त उनके घर पे. एनीवेज, सो कमिंग बैक टू द इंटरव्यू, तो ललित मोदी का इंटरव्यू था और उनसे पूछा कि देखो हम वी हैव हर्ड दैट शी इज अ गोल्ड डिगर बिकॉज शी वॉज विद यू ओनली फॉर द मनी. एंड देन ही क्लैरिफाइड, इज लाइक भैया ये ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा आई वॉज अ केप्ट बॉयफ्रेंड ऑफ सुष्मिता बिकॉज शी हैज सो मच मनी, शी हैज सो मैनी डायमंड्स एंड शी लव्स डायमंड सो मच दैट शी हैज मैनी डायमंड स्टोर्स ऑल्सो दैट शी ओन्ड. एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस बाय द वे. आई ओनली थॉट दैट यू नो शी वॉज एन एक्ट्रेस हु इज नो लॉन्गर करंटली इन द मार्केट बिकॉज वी हार्डली हियर ऑफ एनी मूवीज एंड स्टफ लाइक दैट. तो हमें नहीं पता होता इनके साइड हसल्स क्या है. तो उनका साइड हसल है अपेरेंटली सम डायमंड स्टोर्स और समथिंग. एंड ही सेड शी टुक वेरी गुड केयर ऑफ मी, एवरी टाइम दे वेंट आउट शी वुड पे फॉर एवरी थिंग, शी वुड नॉट लेट हिम पे फॉर एनी थिंग लाइक दैट. एंड देन ही वॉज लाइक आई वॉज जस्ट सो फॉर्चुनेट टू हैव अ गर्लफ्रेंड लाइक सुष्मिता, शी टुक रियली रियली रियली गुड केयर ऑफ मी. एंड आई वॉज लाइक ओके गर्ल, यस क्वीन, पावरफुल गर्ल, ओके शी नोज हाउ टू ट्रीट समवन रियली नाइसली. बट ऑल्सो द फैक्ट दैट ही इज एडमिटिंग टू दैट, आई थिंक दैट वॉज रियली कूल. आई थिंक दैट शोज हाउ सिक्योर अ मैन इज, ओके दैट शोज इन माई ओपिनियन एज अ वुमन, आई थिंक दैट इट शोज द मैस्कुलिनिटी टू एडमिट. इट शोज अ हाइटन्ड सेंस ऑफ सिक्योर मैस्कुलिनिटी. आई एम यूजिंग सो मेनी बिग वर्ड्स वैसे तो अभी, बट आई फील लाइक इट्स अ सेंस ऑफ हाइटन्ड सिक्योर मैस्कुलिन सिक्योरिटी दैट यू नो ही इज एबल टू एडमिट दैट कि भाई माई गर्लफ्रेंड वॉज द वन हु एक्चुअली टुक केयर ऑफ मी, शी वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिल्स एंड एवरी थिंग, एंड यू नो ही वॉज द केप्ट बॉयफ्रेंड. आई थिंक दैट्स प्रीटी कूल. आई थिंक यू नो अ लॉट ऑफ मैन वुड नॉट लाइक टू एडमिट दैट बिकॉज ऑफ ego issues or whatever it is, you know, we have that, we all know it, even you guys know it, even the girls know it. But I think that was really cool. If you guys get a chance to see the interview, मैंने छोटा सा ही वैसे उसको तो बोला summarize करके, but अगर आपको मौका मिलेगा तो जरूर देखना interview. It's quite a thing, you know. But anyways, उससे बात करते हुए एक गाना याद आ गया मुझे सुष्मिता सेन जी का. आई तो लव द सॉन्ग, शी लुक्स एब्सोल्युटली रैविशिंग इन द सॉन्ग. बहुत पुराना गाना है, बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है, मतलब अर्ली नाइन लेट 90s का गाना है. बट प्लीज़ इन्जॉय द सॉन्ग एंड आई थिंक वेन यू कम बैक देन यू नो वील लिसन टू सम मोर म्यूजिक.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओह हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
2: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
5: हाँ।
2: घर रिलोकेट करनी है?
5: हाँ।
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
5: हाँ भाई हाँ।
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
0: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: Coughing or sneezing at home, your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy. Live safe with Duck Time.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही manage कर लेंगे.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
2: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
2: ये क्या होता?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
11: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
12: Hello, people. कैसे हैं? मैं तो बहुत ठीक हूँ. Well, अभी time आ गया है एक request लेने का. मेरे को थोड़ी देर पहले ये request आई थी, पर मैं दूसरे हमारे script में हमारा plan था, तो मैं वो बजा नहीं पाई. I hope Zimran, आप अभी भी सुन रहे हैं. This song is only for you. ये गाना है from the new movie. Welcome to the jungle, और ये गाना है ऊंचा लंबा कद forever, which features अक्षय कुमार and दिशा पटानी. Enjoy.

राइट गाइस, वैसे ये गाना सारे दिन रेडियो पे वैसे ही बज रहता है, तो इसलिए मैं इस गाने को पूरा खत्म नहीं करी. क्योंकि मेरे पास, मैं ये गाना सुनते सुनते ना, आई वॉज रीडिंग द कॉमेंट्स इसके यूट्यूब वीडियो के नीचे. इट्स सो इंटरेस्टिंग. सबने लिखा हुआ है, कटरीना वी मिस यू, कटरीना वॉज द टॉप ऑफ हर ग्रेज व्हेन द ओरिजिनल सॉन्ग केम आउट, एंड देन दिस सॉन्ग इज मेड फॉर कटरीना. गाइज, पीपल आर नॉट इंजॉयिंग वॉचिंग दिशा पटानी ऑन दिस वीडियो. भाई आई डोंट नो, आई थिंक शी इज, आई थिंक दिशा पटानी इज लाइक स्मोकिंग हॉट सो मच. आई हैव दिस फ्रेंड, ओके. मैं ना कहीं भी जाती हूँ, मैं दोस्त बहुत बनाती हूँ, मुझे लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है. आई एम द व्हाट यू कॉल दैट, द क्विंटेसेंशियल एक्सट्रोवर्ट जिसको बोलते हैं ना. तो मैं हर जगह जाके मैं दोस्त बना लेती हूँ, आई एम दैट पर्सन. तो एक बार ना जिम में वर्कआउट करते करते जिम में भी मैंने एक दोस्त बनाया. ही वॉज दिस अमेरिकन डूड, ओके, हिज नेम इज टिम. तो मैंने बोला कि भाई आई एम इंडियन. कहते यू डोंट लुक इंडियन, यू लुक हिस्पैनिक. मैंने कहा नहीं, आई एम वेरी मच इंडियन, आई ग्रू अप इन दिल्ली, आई जस्ट लुक हिस्पैनिक, आई लुक स्पैनिश. मेरे को आके लोग स्पैनिश में बातें भी करते हैं, बट आई एम वेरी मच इंडियन. सो कहते ओके. कहता यू नो आई फॉलो दिस बॉलीवुड एक्ट्रेस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन दिस इंडियन एक्ट्रेस. आई लाइक अच्छा विच वन, एंड देन ही शोड मी दिशा पटानी. मैंने कहा यू डोंट नो एनी वन एल्स, यू नो दिशा पटानी. इज लाइक या शी इज वेरी हॉट, सो आई जस्ट स्क्रोल थ्रू हर यू नो वीडियोज एंड रील्स एंड स्टफ लाइक दैट. आई वाज लाइक यू नो वट, ओके, शी इज हॉट, आई विल गिव दैट टू यू. बट एनी वेज, द नेक्स्ट सॉन्ग आई एम गोना प्ले फॉर यू गाइज, फॉर ऑल माई लिसनर्स, डू यू गाइज रिमेंबर दिस 2000s में ना चैनल वी पे एक शो हुआ करता था. देर वॉज इज लाइक रियली बिग टैलेंट शो, जैसे सारे गामा वगैरह नहीं होता. देर वॉज दिस रियली बिग टैलेंट शो, दिस वॉज कॉल्ड चैनल वी पॉप स्टार्स, एंड आई बिलीव इट वॉज 2002 वेन इट गॉट फर्स्ट एयर्ड. और तो अभी जितने भी बॉलीवुड, काफी सारे जो बॉलीवुड सिंगर्स हैं, जैसे मैं नाम भूल जा रही हूँ इनका, बट बेसिकली दिस वॉज द फर्स्ट सीजन ऑफ जस्ट चैनल वी पॉप स्टार्स, एंड ऑल टू ऑफ द सिंगर्स इन दैट, जो टू ऑफ द सिंगर्स हु आर रियली रियली पॉपुलर इन दैट, दे आर एक्चुअली इन बॉलीवुड राइट नाउ. दे आर एक्चुअली वेरी एक्टिव बॉलीवुड सिंगर्स. एक का तो नाम है अनुष्का मनचंदा, शी संग अ लॉट ऑफ इनक्रेडिबल सॉन्ग्स, एंड द अदर वन आई एम फॉरगेटिंग द नेम. मैं भी रिसर्च करके थोड़ा आपको बताती हूँ. बट दे फाइनली, लाइक यू गाइज, उस टाइम पे ना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो आपको अगर कोई गाना सुनना होता था तो आपको जाके कैसेट खरीदना होता था या सीडी खरीदनी होती थी और उसको फिर सुनना पड़ता था. आज के ज़माने में सबके पास अपना फ़ोन है, तो स्पॉटिफाई पे जाते हैं, एप्पल म्यूजिक पे जाते हैं, यूट्यूब म्यूजिक पे जाते हैं, एंड यू कैन लिसन टू इट. बट यू नो अ लॉट ऑफ दीज ओल्ड रिकॉर्डिंग्स दैट वर मेड, दे वर नॉट डिजाइंड विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी कि उनको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर हम डाल सकें फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये जो बैंड है, द फर्स्ट विनर ऑफ दिस गर्ल, दिस टैलेंट शो, विच वॉज बेसिकली द नेम ऑफ द ग्रुप वॉज वीवा, एंड दे वर इनसेनली पॉपुलर. इतने पॉपुलर थे, उन्होंने कितने सारे तो गाने बनाए थे. और दिस वॉज द फर्स्ट मे बी लाइक द पॉपुलर गर्ल बैंड इन इंडिया, आई थिंक, बिफोर ऑल दीज ब्लैक पिंक एंड के पॉप गर्ल्स वर हैपनिंग. दे वर लाइक द फर्स्ट ओरिजिनल, यू नो, पॉप स्टार गर्ल, पॉप स्टार ग्रुप. सो मैं तो आई वॉज लाइक अ ह्यूज फैन. एंड फन फैक्ट, उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, आई वॉज इन आई थिंक क्लास 9th. और टू पार्टिसिपेट इन द टैलेंट शो यू हैड टू बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड. अब मैं क्लास 9 में 14 साल की बच्ची थी, मैं भी चली गई. मैंने कहा मैं भी जाऊंगी ऑडिशन देने, देखते क्या होता है. बट ऑब्वियसली मुझे लिया नहीं उन लोगों ने, बिकॉज आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड. बट मैं जिस ग्रुप में थी, आई क्रॉस लाइक अ फ्यू राउंड्स. उसके बाद हाँ, थोड़ा मजा ही आया, मतलब इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. आई थिंक सारे दिन धूप में बैठ बैठ के हम गए ऑडिशन देने, आए आए. तो एनी वेज, तो वीवा ने पता है क्या किया, वीवा ने अभी अपना अपने सारे गाने डिजिटाइज कर दिए हैं, एंड दे आर नाउ ऑन ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, यू शुड गो चेक इट आउट. आई विल प्ले यू लिटिल बिट ऑफ दैट सॉन्ग, बिकॉज दे वर इनसेनली पॉपुलर बैक इन द 2000s, एंड देन वी विल कम बैक टू प्लेइंग सम मोर फन सॉन्ग्स. एंड फिर मैं आपको सुष्मिता सेन जी की एक स्टोरी सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे आतिक जी की कॉल आई, जो मेरे रेगुलर लिसनर है. थैंक यू आतिक जी, आपको बड़ा मजा आया कि ये सुनके कि सुष्मिता सेन मेरी पड़ोसन थी. एग्जैक्टली. तो मेरे पास उससे रिलेटेड ना बहुत एक फनी सी स्टोरी है, जो मेरे फादर मुझे बचपन में खूब सुनाते हैं. एक्चुअली सबको ही सुनाते हैं वो, इट्स वन ऑफ दोज कैची स्टोरीज. तो आप आइए, फिर मैं आपको वो स्टोरी सुनाती हूँ.

जी, हम भी नई नई बातें लेकर आए हैं. गाने तो आपने सुन लिए, मेरी भी बातें सुन लीजिए. एनीवेज, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय कनेक्टिंग अमेरिका. विद कनेक्टिंग अमेरिका यू कैन टर्न योर बिजनेस इनटू अ पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू ए यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रेटजी डिजाइन टू बूस्ट योर बॉटम लाइन. एंड इट डजंट स्टॉप देयर, दे ऑल्सो हेल्प होम ओनर्स पे देयर मॉर्गेज ऑफ इन 10 ईयर्स और लेस. सो डोंट वेट यू गाइज, कॉल जेम्स टुडे एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com एंड स्टार्ट टर्निंग योर डेली एक्सपेंसेस इन टू इनकम. कनेक्टिंग अमेरिका, वेयर स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इन टू कैश. Guys, I love doing voices because it's so fun. Okay, मुझे अब वो मेरा थोड़ा bit है to go into different voices and accents because what's the fun without it? You can't be the same person all the time. You gotta be colorful in life, right? प्राइड महीने में थोड़ा कलरफुल होना चाहिए, क्यों? Why not? अभी गाना सुनते सुनते I got a call from Priyanka D'Souza, who was talking to me about how nostalgic she felt by listening to this song by Viva. Guys, I mean, Channel V and all these music channels, they are not really music channels anymore. All they do is basically show reality shows. But back then, they were about music. The reality shows were also about music. And, you know, Priyanka said, it's such a nostalgic feeling to be able to listen to those songs. And we would like, wait ki next episode kab air hoga? Who gets eliminated? OMG! And they basically tried to copy. I mean, you know, we are Indians. We are masters at copying people. I mean, what can we say? But that being said, we have a lot of original things too. Yaar, aisa nahi hai. But anyways, ye wala jo, at least humare media industry mein jo hai, this one was basically, they were trying to copy Spice Girls, I think. To waise hi unhone ek curly hair, dark skin ladki ko dal diya, ek koi aur baby spice dal diya, ek aise, I think they were trying to use the same formula to like try and implement, see if that kind of clicks. And thanks to Priyanka, I remember all the names of the four singers now. There was Anushka Manchanda, there was Neha Baseen. They are both very popular in Bollywood right now. They do lots of songs. Then you have Pratichi Mohapatra. I think she left singing. I think she went and became an engineer or something. And same with that last girl, I forgot her name. क्या नाम था? कोई बात नहीं, दोबारा गूगल करके प्रियंका तुम्हें याद आ जाएगा तो मुझे बता देना, नहीं याद आएगा कोई बात नहीं. भाई मैं आप सबको सुष्मिता सेन की स्टोरी सुनाने वाली थी. इसके पहले भी आतिक जी ने मुझे बोला कि सुष्मिता सेन आपकी पड़ोसी थी, यू नो, आपके पास कोई बड़ी मजेदार सी स्टोरी है. भाई स्टोरी मैं सुनाती हूँ और ये मेरे फादर के वर्ड्स में ये स्टोरी है क्योंकि वो बड़ी बार ये स्टोरी बोलते. तो हम लोग क्या है ना, हम वैसे तो हम रहते थे दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में हमारी एक बड़ी छोटी सी बड़ी अच्छी सी बंगाली कम्युनिटी हुआ करती थी. और हम लोग ना हर साल नवरात्र के टाइम पे सारे बंगालीज मिलके दुर्गा पूजा करते हैं बेसिकली, ठीक है. और दुर्गा पूजा में क्या होता है, बेसिकली वी आर बंगालीज, तो बंगालीज दे लव टू बी अटैच टू दैट कल्चर. तो सब लोग दुर्गा पूजा के टाइम पे मतलब एक कोई प्ले करेगा, कोई गाना गाएगा, कोई मतलब चार बच्चे मिलके डांस करेंगे. एक्चुअली लोकल्स भी इन्वॉल्व हो जाते थे, किसी की मम्मी ने चार बच्चों को डांस सिखा दिया. मैंने तो हर साल टिल द एज ऑफ 13, फ्रॉम द एज ऑफ 5, बेसिकली फ्रॉम द एज ऑफ 5 टिल द एज ऑफ 13, एंड आई थिंक आफ्टर 13 आई बिकेम लिटिल मोर ऑकवर्ड एंड कॉन्शियस इन लाइफ. मैंने कहा नहीं, मुझे स्टेज पर नहीं चढ़ना है. देखो अब मैं स्टेज पर ही, मेरा प्रोफेशन वही बन गया. लेकिन उस टाइम पे मतलब फ्रॉम द एज ऑफ 5 टू एज 13 तक हर साल मैंने स्टेज पे खड़े होके या तो मैंने डांस किया या मैंने गाना गाया या मैंने कोई एक्टिंग करी है. एक साल में हमें क्या बोलते हैं, मर्जीना अब्दुल्ला, बेसिकली अलीबाबा 40 चोर की प्ले करी थी, प्ले हुआ था. एक कभी हमने कोई रविंद्र संगीत पे गाना मतलब डांस कर लिया, कुछ कुछ ऐसा चलता रहता है. तो हम लोगों ना एक ग्रुप था, उस ग्रुप का कल्चरल ग्रुप था जो मेरे फादर ने और कुछ कुछ जो हैं आसपास उन सब ने मिलके बनाया था. उसका नाम था संस्कृति, ठीक है. संस्कृति नाम से ग्रुप बनाया था कि हम लोग बंगाली कल्चर को आगे लेके जाएंगे, प्रमोट करेंगे, हर साल हम इवेंट्स करेंगे ऐसे ऐसे. तो उसमें से दे वर लाइक रिक्रूटिंग डांसर्स. तो माय फादर एग्जैक्टली लाइक मी, दी एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट दैट इज देयर, वो सबसे जाके सोशलाइज करते थे. वो शाम होते ही पूरे नेबरहुड में घूमते रहते थे, पूरे ब्लॉक में, कि अच्छा बंगाली कौन है आपके घर पे, मतलब यंग बच्चे हैं, डू दे वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस डांस, वो ना रिक्रूट करते थे. और जो हमारे जो डायरेक्टर थे उनका नाम था अभिजीत. तो अभिजीत मेरे फादर को आके कहते हैं, रायदा
मतलब मेरा लास्ट नेम रॉय है ना, तो रॉय को वो राय बोलते थे, और दा मतलब बड़े भाई, तो राय दा आप प्लीज मुझे ना 5 फीमेल डांसर्स की जरूरत है, यंग गर्ल्स, मतलब यू नो दे कैन बी लाइक बिटवीन द एज ऑफ 13 to 17, दे नीड टू डांस इन अ ग्रुप इन द बैकग्राउंड, और जो दो मेन कैरेक्टर्स है वो दो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सामने होंगे, लेकिन बैकग्राउंड में वी नीड समथिंग सम ओल्डर गर्ल्स टू जस्ट स्टैंड इन द बैकग्राउंड एंड डांस. तो मेरे फादर कहते हैं हाँ ठीक है मैं ढूंढता हूँ, आई लुक फॉर सम बैकग्राउंड डांसर्स फॉर यू. तो उस टाइम पर सुष्मिता सेन शी वॉज ओनली लाइक मे बी 16 or 17 ईयर्स ओल्ड, शी वॉज स्टिल अ हाई स्कूल किड. तो सुष्मिता सेन जैसे आपको नाम से पता ही चल गया होगा, शी इज ऑल्सो बंगाली. तो मेरे पापा सुष्मिता को तो नहीं जानते थे लेकिन उनके डैड को जानते थे क्योंकि वो भी बंगाली थे ऑब्वियसली. तो घूमते घूमते ऐसे ही सोशलाइज करते करते एक दिन मेरे फादर पहुंच गए उनके घर पे, नॉक नॉक, कहते हैं हाँ जी कैसे हैं मिस्टर सेन वगैरह वगैरह, कहते हैं नहीं हम तो बहुत सही हैं, आप कैसे ब्ला ब्ला ब्ला, कहते हैं आप तो दुर्गा पूजा में आते ही हैं हर साल, यू नो यू आर एन एक्टिव मेंबर ऑफ आर एसोसिएशन, अब हम लोग ना एक कल्चरल इवेंट परफॉर्म करें वेयर वी नीड सम डांसर्स, बेसिकली वी नीड सम यंग गर्ल्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डांस, तो आपकी तो बेटी है, डज शी वॉन्ट टू डांस? तो कहते हैं कि आप उसी से पूछ लो डायरेक्टली, वो यहीं पे है, वो अभी स्कूल से वापस ही आई है, आप पूछ लो, मतलब 4-5 बज रहे थे ऐसे कुछ. तो वो आई नीचे सुष्मिता सेन, नहीं वो एक्चुअली आई थिंक पीछे बैठी हुई थी कहीं पे. तो मेरे फादर ने पूछा बेटा डू यू वांट टू डांस, ऐसे ऐसे डांस है आप करोगे? तो सुष्मिता कहती है कि अंकल आई वुड लव टू बट आप एक बार मेरी ना हाइट देख लो, वो देखो कि बाकी लड़कियों से वो मैच करेगा कि नहीं. एंड गाइज इफ यू नो शी इज वेरी टॉल फॉर इंडियन स्टैंडर्ड, शी इज लाइक 5'11" और समथिंग लाइक दैट, सो फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स दैट इज एक्सट्रीमली टॉल. और बाकी जितनी भी लड़कियां थी ना जो डांस करने वाली थी उसकी सुष्मिता की एज ग्रुप की, वो सारे मुन्ने मुन्ने 5'1", 5'2", 5'3. तो सुष्मिता कहती है अंकल मैं तो डांस कर लूंगी लेकिन आई विल स्टैंड आउट इन दैट एंटायर ग्रुप, इज गोना लुक रियली ऑकवर्ड, सो आई डोंट थिंक आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस. एंड देन दैट्स द स्टोरी बेसिकली. तो इसी खुशी में आपको मैं एक और गाना सुनाती हूँ विच फीचर्स सुष्मिता सेन, एंड देन विल कम बैक एंड लिसन टू मोर स्टोरीज यू गाइज़.

Guys, correction. Sushmita Sen is actually 5'7" and a half, 5'8". Well, that is still pretty tall for Indian standards, honestly. मतलब कई बार जब मैं कैलकटा जाती हूँ ना, वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन जब मैं कभी कभार जब मैं कैलकटा जाती थी ना बचपन में अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से मिलने, वो सब मुझे कहते अरे तुम्हारी हाइट कितनी अच्छी है भाई, मैं तो 5'3" ही हूँ. I consider myself as a short person in America, क्योंकि सारी shelves तो इतनी ऊपर होती है, मेरा हाथ भी नहीं पहुँचता. मेरे घर पर एक step stool खरीदा हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन for Indian standards, I know Indian women are not very tall, so it was apparently very tall in Indian standards, but I'm sure there are people who are way taller than I am, you know, and one of them is Sushmita. That's why she became Miss Universe, you guys. Anyways, आप ये गाना सुनिए, उसके बाद हम जाने हैं वाले छोटे से ब्रेक पे, फिर आएंगे और लास्ट एक घंटे में हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे एंड कॉन्वर्सेशंस करेंगे एंड स्टोरीज शेयर करेंगे. सो कम बैक.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग। देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल वन, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल टू, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल थ्री, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: Chicken banana.
5: Chicken banana?
6: Bro, banana नहीं, banana. मतलब make the chicken right.
7: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
8: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897. Or visit astrologerishwar.com.
0: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
9: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
10: यारो सुनो जरा, वो गाना जो था ना जो ब्रेक के पहले बज रहा था, वो इतना प्यारा गाना था। वो तो वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है। जब वो आया था उसमें उर्मिला मातोंडकर भी मेरे जैसे एपी जैसे हिप्पी बनके एकदम ड्रेस कर रही थी और ऐसे ऐसे करके डांस कर रही थी, एकदम वाइब्स थी उसकी फुल ऑन। तो इसीलिए आप सबके लिए वो गाना दोबारा मैं बजाऊंगी, क्योंकि यार अच्छे गाने ना सुनने को मिलते नहीं है आजकल के ज़माने में। सो लेट्स लिसन टू द सॉन्ग, ओके, एंड देन एंजॉय।

are back, you guys. This next part of the show is brought to you by AG Fintechs. AG Fintechs, one of the fastest growing tax firms in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and get you ready for the future. So call 469-469-9. No. Let me redo the number again. थोड़ा ज्यादा जल्दी बोल दिया मैंने. कॉल 469-942-9888. लेट मी रिपीट दैट, 469-942-9888, और विजिट agfintechs.com. एनीवेज गाइस, दैट वाज कॉल फंबलिंग ऑन द रेडियो, बट समटाइम्स दैट हैपेंस व्हेन यू टॉक नॉन स्टॉप फॉर 3 आवर्स. थोड़ा बहुत मुंह से इधर उधर स्लिप हो ही जाता है यार, मतलब थोड़ा इंटेंशनल थोड़ी ना है. इसीलिए हम बहुत सारा पानी शानी पीते हैं ताकि वी कीप हाइड्रेटेड एंड वी टॉक सम सेंस. टॉकिंग सम सेंस से याद आया कि अभी ये गाना आज मैंने ना, आई वॉज लिसनिंग टू सम दीज रैंडम स्पॉटिफाई रिकमेंडेशन, और पता नहीं ये गाना कहाँ से आ गया स्पॉटिफाई के रिकमेंडेशन में. मैंने कहा यार, आई हैवन हर्ड दिस सॉन्ग इन सो लॉन्ग, बट दिस इज़ अ वाइब. सो आई एम गोना प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू एंड देन वी गोना कम बैक एंड देन वी गोना टॉक अबाउट सम स्टफ. ओके, वी गोना टॉक अबाउट सम मॉडर्न रिलेशनशिप, सम डेटिंग लाइफ स्टफ, बिकॉज दैट्स यूजली द सेगमेंट विच इज पोस्ट 9 o'clock दैट वी ऑलवेज डू. We talk about some grown-up problems in life because that's also a thing. So, yeah, go enjoy this song and then we come back and then we talk.

क्या बात है, कितना प्यारा गाना था ना। कितने सालों बाद मैंने वो गाना सुना और वो रैंडमली स्पॉटिफाई ने ऐसे ही सजेस्ट कर दिया कि अरे ये गाना सुनो, यू लाइक दिस सॉन्ग। मैंने कहा अच्छा, डू आई, आई गेस आई डू नाउ। बट एक मैं आपको सेइंग बोलती हूँ बिफोर वी गो ऑन टू यू नो सम जूसी स्टफ्स एंड सम थिंग्स लाइक दैट। ये सेइंग है, बहुत से लोग तुम्हारी उम्मीदों पे पानी ज़रूर डालेंगे, लेकिन तुम उसमें पता है क्या करना, उसमें दूध और चाय पत्ती डाल के चाय बना देना। ठीक है, पानी को रहने दो, पानी को पतीले में डालो, उबालो, दूध और चाय पत्ती डाल के चाय बना देना। टेक एवरी क्रिटिसिज्म एंड टर्न इट इंटू समथिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव से याद आया कि गाइस, आई मस्ट ब्रिंग यू सम रियली पॉजिटिव न्यूज़ दैट आई सॉ दिस वीक, एक्चुअली मे बी ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला इससे पहले बोलने का, बट आई फील लाइक आई शुड टेल यू दिस। ओके, नंबर वन, दिस इज लाइक हमारे DFW की स्टोरी। एन एली वे इन डेंटन, बेसिकली इट टर्न इट इंटू अ कजू कोरस कॉन्सर्ट। इफ यू गाइज नो वट अ कजू इज, इट्स लाइक अ किड्स टॉय, इट्स लाइक अ विसल, एक सीटी जैसी होती है, बस उसमें ना हवा नहीं भरनी पड़ती, यू डोंट हैव टू ब्लो इन टू इट, यू हैव टू सिंग इन टू इट। और वो बहुत ही खराब सुनने में आता है। अगर आपके पास मेटल कजू है, जो मैं यूज करती हूँ कई बार अपने कॉन्सर्ट्स में, बिकॉज इट काइंड ऑफ साउंड लाइक अ रियली बैड ट्रम्पेट, बट अगर आपने प्लास्टिक वाला सुना है, वो तो बहुत ही गंदा साउंड करता है, बट एनी वेज इट्स काइंड ऑफ क्यूट। बेसिकली आई सॉ द वीडियो एंड इट वॉज इनक्रेडिबल। देयर बंच ऑफ दीज पीपल, दे ज्वाइंड एन ऑल टुगेदर, दे डिसाइडेड कि चलो भाई हम एक एली वे में मीट करेंगे डेंटन में। एंड जैसे आपको पता ही है, डेंटन में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास है, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक स्कूल्स इन द होल कंट्री। सो दे ऑल गैदर्ड एंड दे टर्न दैट बैक एली इन टू अ स्ट्रिंग कॉन्सर्ट। बेसिकली देर वो स्ट्रिंग प्लेयर्स, देर वॉज ए स्ट्रिंग क्वार्टेट, वायलिन, चेलो, वियोला वगैरह वगैरह, एंड साथ में बाकी जितने ऑडियंस थे सबको एक कजू दे दिया, और सब ने कोरस में मिलकर इतना बढ़िया गाना गाया या बजाया। आई डोंट नो, कजू में आप गाना गाते हैं या बजाते हैं, आई मीन आई डोंट नो, वट एवर, हम गाना गाया ही बोलते हैं। लेकिन वो इतना बेसुरा था, फिर भी इतना अच्छा लग रहा था सुनने में। इट वॉज लाइक अ जॉइंट एफर्ट, इट वॉज लाइक जस्ट स्पॉन्टेनियस एंड इट वॉज सो कूल। आई थिंक दैट वॉज रियली अमेजिंग। एंड देन द सेकेंड थिंग दैट आई सॉ, दिस वॉज लाइक अ कपल ऑफ वीक्स अगो एक्चुअली, दिस इज इन न्यूयॉर्क सिटी। दिस कपल, दे बेसिकली शट डाउन फिफ्थ एवेन्यू बिकॉज वो अपनी बारात निकाल रहे थे यार, वहां से पूरी फिफ्थ एवेन्यू उन्होंने शट डाउन कर दी। भाई आप सोच रहे हो कितना रिसोर्स होगा उनके पास, कितने जुगाड़ होंगे, शायद मेयर के साथ ही जुगाड़ होगा, आई डोंट नो, पता नहीं कहीं से तो जुगाड़ लगाया, परमिशन लिया, पूरी फिफ्थ एवेन्यू उन्होंने ब्लॉक कर दी फॉर अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, दिल्ली स्टाइल बारात पूरी। और रोड पे वो ट्रक में खड़े हुए हैं एक कपल, और साथ में उधर ढोल वाला है, डीजे वाला है, वो भी ट्रक के ऊपर खड़ा है, और पीछे से बाराती जा रहे हैं। और क्या सही फील आ रही थी ना मुझे दिल्ली में, ना शादी के सीज़न में, ये अक्टूबर नवंबर के महीने में एक रोड होती है एमजी रोड बोल के, वो एमजी रोड गुड़गांव से दिल्ली कनेक्ट होती है। वहाँ से अगर आप शादी के सीज़न में जा रहे हो, देर इज़ नो वे यू कैन रीच होम ऑन टाइम, आई मीन गारंटीड आप कम से कम 2 घंटा लेट पहुँचोगे। मैं कितनी बार तो वहाँ पे 20 मिनट के रास्ते में मैं खड़ी हुई हूँ 1.5 घंटे तक, क्योंकि लोग बारात लेके डांस कर रहे हैं बीच रास्ते में। हाईवे है वो भाई, हाईवे है। तो सोचो वही चीज़ NYC में भी रेप्लीकेट हो गई, तो इज़न दैट अमेजिंग। एनीवेज, ये गाना आप सुनिए, उसके बाद हम आते हैं और भी बातें करते हैं। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स एक्चुअली, मेरी इसके साथ बड़ी अच्छी नॉस्टैल्जिक मेमोरी है। संडे के दिन ना, वैसे मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वी आर नॉट आउटराइट म्यूजिकल फैमिली, लेकिन बंगालीज हैं, म्यूजिक चलता रहता है, लाइक एवरी बंगाली फैमिली आई फील इज अ म्यूजिकल फैमिली दैट वेज, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ आर कल्चर। क्योंकि अगर आप बंगाली हैं तो आपको कुछ ना कुछ म्यूजिकल या कल्चरल कुछ करना ही पड़ेगा, या तो आप उसमें क्या बोलते हैं गाना सीखिए, या तबला बजाइए, या पियानो बजाइए, या फिर डांस सीखिए, यू हैव टू डू समथिंग। ओके, तो मेरे डैड ने कभी गाना नहीं सीखा, मेरी मम्मी ने भी कभी गाना नहीं सीखा, बट यू नो वी काइंड ऑफ हैव दिस थिंग। सो माई एवरी संडे माई डैड वुड प्ले दिस कैसेट।

डैड ने कभी गाना नहीं सीखा, मेरी मम्मी ने भी कभी गाना नहीं सीखा, बट यू नो वी काइंड ऑफ हैव दिस थिंग. सो माई एवरी संडे माई डैड वुड प्ले दिस कैसेट ऑफ हसन जहांगीर, एंड उसमें ये गाना होता था, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे कहाँ गुली गुली. और आई हैव सो मेनी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज विद इट. आई एम गोना प्ले यू दैट सॉन्ग. बाय द वे, डिड यू नो हसन जहांगीर इज एक्चुअली अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट? दिस इज हिज ओरिजिनल सॉन्ग आई बिलीव, विच बिकेम फर्स्ट पॉपुलर इन पाकिस्तान, एंड इट बिकेम सो पॉपुलर दैट बॉलीवुड अडेप्टेड इट एंड इट बिकेम अ पार्ट ऑफ अ मूवी. एंड देन नाउ दिस इज अ मच मोर मॉडर्नाइज वर्जन ऑफ इट. सो ऑल्सो इन द वॉइस ऑफ हसन जहांगीर, ही इज स्टिल अलाइव यू गाइज, एंड ही इज स्टिल सिंगिंग लाइक ए रॉक स्टार. सो एन्जॉय दिस ट्यून.

शो होता है वो रेगुलरली सुनती हैं और वो मुझे हमेशा कॉल करती हैं, एक बारी नहीं कम से कम 3-4 बारी कॉल करती हैं मुझे, कहती है तुम बहुत अच्छा बोल रही हो, मैं ये वाला सुना दो ये वाला, मतलब रिक्वेस्ट भी आती है ऑफ कोर्स, लेकिन रिक्वेस्ट से ज़्यादा वो मुझे अपनी अपनी स्टोरीज सुनाती हैं एंड देन उनके थोड़ी बहुत स्टोरीज मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ. तो एनी वेज, तो एक दिन उन्होंने कॉल किया माया जी ने मेरे को, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई टीचिंग विच इज़ बेसिकली माई मेन इनकम, यू नो जहाँ से मैं अपना मेन इनकम करती हूँ एंड मेरा मेन काम वही है, वर्क विद अ लॉट ऑफ किड्स एंड आई वर्क विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. फन फैक्ट पता है क्या है, माई रेंज ऑफ स्टूडेंट्स, इट रेंजेस, द एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रेंजेस फ्रॉम 4 years old to 98 years old. एंड आई एम नॉट किडिंग, माई ओल्डेस्ट स्टूडेंट, हर नेम इज़ टोनी, उनके हस्बैंड की डेथ बहुत साल पहले हो गई, अभी वो अकेले रहती हैं, शी लिव्स इन प्रेस्टन हॉलो एरिया और अकेले रहती हैं वहाँ पे, उनकी एक बेटी भी है, उनके बच्चे भी हैं, दे आर ऑल ग्रोन अप, उनके ग्रैंड किड्स भी ग्रोन अप हैं ऑब्वियसली, बट शी इज़ अ 98 ईयर ओल्ड लेडी हु इज़ रियली फिट फॉर हर एज, विच मीन्स शी कैन वॉक अराउंड, शी डजन हैव डिमेंशिया, शी डजन हैव अल्जाइमर्स, आई थिंक शी रिमेंबर्स एवरी थिंग, येस हेल्थ अप डाउन रहती है उनकी, ऑफकोर्स शी इज 98, वॉट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट, बट आई टीच हर, सो शी डजन डू रेगुलर क्लासेस, बट कभी कभार वो महीने में एक बार या महीने में 2 बार शील कॉल मी, शी इज लाइक एपी वाई डोंट यू कम टू माई हाउस, एंड आई सेड ठीक है मैं आ जाती हूँ आपके घर पे, लेट्स हैव अ लेसन, व्हाट डू यू वांट टू वर्क ऑन. कहती है कि मैंने ना अपने यंग टाइम में ना बहुत सारे गाने लिखे थे और मुझे पियानो बजाना नहीं आता, उस टाइम पर आई यूज़ टू वर्क विद अ पियानो प्लेयर, वो इसने कॉर्ड्स वगैरह बना दिए थे, आप ये वाले कॉर्ड्स बजाओ, मैं इसके साथ अपने पुराने गाने, आई वॉन्ट टू रिमेंबर वॉट आई रोट, दिस वन वॉज फॉर माई सन हु पास्ड अवे, विच इज़ रियली सैड बाय द वे, सो शी रोट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर हिम, एंड देन शी इज़ लाइक दिस इज, दिस वन इज़ बेसामे मूचो, विच इज़ बेसिकली लाइक अ ब्राज़ीलियन सॉन्ग, इट्स लाइक अ पोर्चुगीज ट्यून, वेरी पॉपुलर इन ब्राज़ील, लाइक अ बॉसा नोवा, स्लो बॉसा ट्यून, एंड देन शी इज़ लाइक आप ये वाला गाना बजाओ, आप ये वाला गाना, ऐसे करके हम उनके कीज ढूंढते हैं और ऐसे बजाते हैं, एंड यू नो वॉट शी डज नाउ डेज, सो एवरी टाइम आई गो विजिट हर, वी रिव्यू सम ऑफ हर सॉन्ग्स एंड देन शी प्रैक्टिस देम, एंड देन शी हैज़ दीज टू फ्रेंड्स जो डैलस में एट अ रेस्टोरेंट दे प्ले एवरी मंडे, सो दे डू लाइक अ लिटल पियानो बार गिग, लाइक अ पियानो बार इवेंट, एंड देन वहाँ पे जाके वो लोग परफॉर्म वगैरह करते हैं और उस परफॉर्मेंस में वो जाती हैं, शी विल गो एंड सिंग टू ऑफ हर सॉन्ग्स एंड इट्स रियली रियली रियली नाइस, एंड यू नो शी लाइक्स इट बिकॉज क्यों नहीं, ऐसे भी करना चाहिए कभी, आपको आपकी जब एज हो जाएगी यू नीड टू कीप योर ब्रेन एक्टिव, यू नो डोंट स्लो डाउन, कीप डूइंग थिंग्स दैट यू एब्सोल्युटली लव. तो ऑल ऑफ माई ओल्डर लिसनर्स जो मेरे सुन मेरी मेरा शो सुन रहे हैं, मुझे कॉल भी करते हैं बहुत सारे लोग, आप एक्टिव रहिए, मैं अपने फादर को भी बोलती हूँ मेरे पे डिपेंडेंट मत हो, आप खुद भी अपना काम करना सीखो, क्योंकि क्या होता है ना उससे ब्रेन एक्टिव रहता है एंड दैट स्लोज डाउन एजिंग, सो उसी के लिए एक बड़ा अच्छा सा गाना एंड देन वी आर गोना गो इनटू अ ब्रेक.

गाइस कितना सही गाना था ना वो, मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक दिस वर्जन, क्योंकि ये वाला वो जो वर्जन था ना, ये कोक स्टूडियो की वर्जन का है। इट ऑल्सो फीचर्स गुल पनरा एंड ऑफ कोर्स हसन जहांगीर विद दिस इनक्रेडिबल लाइनअप ऑफ आर्टिस्ट। तो गाइस अभी बात करते करते ना, आई हैड दिस लाइक रियली इनक्रेडिबल कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई रेगुलर लिसनर्स, माया जी। वो हर रोज, मतलब हर रोज तो खैर नहीं, मैं हर रोज होती होती भी नहीं हूँ, लेकिन जब भी मेरा

0: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
1: Paid for by Mark Hill for Mayor.
2: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahu.
3: Front page ka to pata nahi, par tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
2: Kaise?
3: Page 3 eatery?
2: No, not another restaurant again.
3: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
2: Matlab great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं
4: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
5: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
6: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी, जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
5: K2 ड्राइव मतलब
6: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
5: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
6: 100%
7: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
8: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
10: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
11: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. Dallas और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
12: All right, guys. This next part of the show is brought to you by Texas Primary Care. For 13 years, Texas Primary Care Clinic has proudly cared for our community. Now growing with a brand new name and a second Frisco location, introducing Lenoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Lenoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics, and Himalayan Med Spa services all under one roof. So many words. Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. You can walk in anytime and no appointment needed. कई बार क्या होता है ना, इतनी सारी वर्ड्स बोलते बोलते मुंह में प्यास लगती है इतनी कि मेरे वर्ड्स कभी कभार फंबल हो जाते हैं. इसीलिए हम लोग गाना बजा देते हैं ताकि मुझे बात कम करना पड़े और आप गाना इंजॉय करिए, क्योंकि भाई हम तो गाना सुनने के लिए बैठे हैं ना. तो ये वाला गाना आप सुनिए, दिस इज चौधरी बाय मामे खान. एक्चुअली मामे खान से बहुत फनी स्टोरी, फनी तो नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको एक सुनाती हूँ. व्हेन आई वाज यंगर, आई वाज लाइक मे बी इन माय अर्ली 20s, लाइक 23, 24. और उस टाइम पे मामे खान जो है अभी बहुत फेमस है. मामे खान, ही इज़ अ मांगनियार फोक सिंगर. और अगर आपको मांगनियार फोक सिंगर नहीं पता कौन है, मांगनियार ट्रेडिशनल राजस्थानी फोक सिंगर्स हैं. तो मामे जो हैं वो मामे, ही हैड जस्ट बेसिकली स्टेप्ड आउट ऑफ राजस्थान एंड ही वाज ट्राइंग टू एक्सपैंड हिज यू नो परफॉर्मेंस एंड हिज आर्टिस्ट्री एक्सेट्रा आउटसाइड राजस्थान. तो वो अपने फोक सिंगर से, मतलब इरा से बाहर निकल के ही वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू मोर कमर्शियल स्टफ. तो उस टाइम पे मैं दिल्ली में, आई यूज टू इंटर्न फॉर दिस ब्यूटिफुल डांसर कॉल्ड मंजरी चतुर्वेदी. गाइज, मैंने इतना कुछ किया है ना लाइफ में, मुझे कई बार अपनी खुद की स्टोरी सुन के लगता है कि वाह, मैंने क्या नहीं किया है, मैंने सब कुछ कर लिया. बट एनीवेज, मैं अपने बारे में बात नहीं करी. तो वहाँ पे मंजरी इज दिस डांसर, शी हैड बेसिकली पैटेंटेड एंड कॉपीराइटेड दिस न्यू डांस फॉर्म. टेक्निकली न्यू तो नहीं है, इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ टू एग्जिस्टिंग आर्ट फॉर्म्स लाइक कवाली म्यूजिक, जो कि हमें सबको पता है बहुत बहुत ही सालों से चल रहा है, इट्स स्पिरिचुअल सूफी म्यूजिक, राइट? एंड देन शी हैड कंबाइन दैट विद कथक एंड शी हैड क्रिएटेड समथिंग नोन एज सूफी कथक. एंड आई वॉज वर्किंग फॉर मंजरी एज बेसिकली हर एडमिन पर्सन एंड हर रिसर्च एसोसिएट बिकॉज शी ऑल्सो हैड अ नॉन प्रॉफिट. तो उसमें आई वुड गेट इन टच विद दीज लोकल आर्टिस्ट और फंड रेजिंग भी मैंने बहुत करी मंजरी के लिए. मैंने बहुत इवेंट्स हेल्प करे ऑर्गेनाइज करने में, लाइक इंक्लूडिंग अ सिम्पोजियम एंड अ सेमिनार अबाउट यू नो Kavali music and the continuation of traditional art and stuff like that. So, usme she had done this concert, which was basically her main thing was she would hire these local musicians from the dargahs and like these folk musicians like the Manganiyars, and she would do live performances with it. And I think that is brilliant because sab kuch jo tha na improvised tha. उसमें से कुछ मतलब रिहर्सल, एक रिहर्सल होती थी उनकी, लेकिन ये नहीं है कि हर शो में वही चीज वो करते थे. दैट वाज सो अमेजिंग फॉर मी एज एन आर्टिस्ट टू सी एंड लर्न फ्रॉम आल्सो, कि आप मतलब हर बारी हर कॉन्सर्ट में कुछ नया आ रहा है, नए आर्टिस्ट आ रहे हैं. तो उनमें से एक आर्टिस्ट ग्रुप था ये मांगनियर का, और तब मामे खान ही वॉज सो यंग, ही वॉज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज स्टिल ट्रेवलिंग विद हिज फादर, उनके फादर के ग्रुप के साथ वो गा रहे थे. He was a young guy. और तब मैं मामे से first time मिली. And to see मामे doing so well in Bollywood, I'm going to play you this song with मामे खान, अमित त्रिवेदी featuring मामे खान. And this is a very popular track, चौधरी. बहुत Bollywood में भी आ चुका है. तो आप ये सुनिए. And then tell me how you like it or not.

गाइस कितना मजा नहीं आता, एक गाना एक रिदम से शुरू होता है, एक स्पीड में शुरू होता है, बाद में इतना एक्साइटिंग हो जाता है, इतनी बिग फिनिश हो जाती है, वो सुन के ना एक्साइटमेंट हो जाती है, एकदम जोर से सब लोग मिलके बजा रहे हैं ऑल टुगेदर. ओ वाओ, इट्स लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ हाई. इट्स लाइक ओ वी आर ऑल प्लेइंग. और अभी मैं ना ये गाना चल रहा था बैकग्राउंड में एंड आई वॉज वॉचिंग द वीडियो, और वहाँ पे अमित त्रिवेदी ही इज कंडक्टिंग द होल बैंड एंड ही वॉज ऑल्सो गेटिंग एक्साइटेड एंड ही वेंट लाइक ओ ये. तो मुझे वो देखकर आई मीन दैट एनर्जी ट्रांसफर्ड ऑन टू मी एंड आई वाज लाइक ओह आई टोटली फील इट. बट यू नो सबसे मजेदार वाली चीज क्या थी, मैंने रियलाइज नहीं किया, तो वहां पे जो ये कोक स्टूडियो का परफॉर्मेंस था, वहां पे जो बैंड में जो थे, देयर वाज अ तबला प्लेयर ऐसे घुंघराले बाल वाले. अगर आपने कभी वीडियो उसका देखा है, इस गाने का नाम था चौधरी, अमित त्रिवेदी फीचरिंग मामे खान. इन केस यू लाइक इट देन यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. आई थिंक कितना प्यारा गाना था. तो वहाँ पे जो घुंघराले बाल वाला जो तबला प्लेयर था, मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा फेमिलियर सा लग रहा है, ये कौन है? फिर मुझे याद आया, अरे ये तो मेरा बॉम्बे में रूममेट था, इसका नाम था संकेत. और मुझे पता नहीं था बॉम्बे मतलब संकेत वॉज प्लेइंग विद अमित त्रिवेदी. आई न्यू संकेत वॉज प्लेइंग विद कैलासा एंड कैलाश खेरन, ही वुड गो ऑन अ लॉट ऑफ टूर्स. उसके बाद जब मैं व्हेन आई लेफ्ट एंड फाउंड माय ओन प्लेस, देन संकेत वॉज नो लॉन्गर माय रूममेट. और देन आई गॉट टू नो कि वो बाद में रहमान के साथ भी बजा रहा था. और अभी मेरे को उसकी वीडियो मैंने बड़े सालों बाद आई सॉ संकेत्स फेस हु वॉज माई ओल्ड रूममेट ऑन दैट कोक स्टूडियो वीडियो एंड आई वॉज लाइक अरे वाह ये तो संकेत है. मतलब मजा आ गया. वेरी गुड तबला प्लेयर, वेरी वेरी गुड पर्कशन प्लेयर. बट एनीवेज हम लास्ट 15 मिनट हैं हमारे शो के, लेट्स वाइंड डाउन लिटिल बिट. वैसे तो मैंने सोचा था मैं आपको थोड़ी रिलेशनशिप वगैरह की बातें करूंगी आज, लेकिन उसका मूड वैसे जम नहीं रहा है. आई मीन आई थिंक द म्यूजिक इज अ लिटिल मोर हाइप्ड अप, इट्स लिटिल मोर एनर्जेटिक. सो मे बी अनदर डे, मे बी टुमारो आई विल ब्रिंग यू सम रेडिट थ्रेड्स, बिकॉज दैट इज वॉट आई हैव प्लान्ड. ऑन वेंसडेज एंड थर्सडेज वी गोना डू सम रेडिट थ्रेड्स, वी गोना हैव सम जोक्स, वी गोना हैव सम फन, वी गोना शेयर सम स्टोरीज. सिर्फ मैं अपनी नहीं स्टोरीज शेयर करूंगी, आप भी मुझे कॉल करके अपनी स्टोरीज बताइए. येस वी हैव टू हैव अ टाइम लिमिट, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी हो जाती कुछ कुछ स्टोरीज. बट इन आवर लास्ट 15 मिनट्स मैं आपको बड़े प्यारे प्यारे से गाने बजा रही हूँ. लेट्स वाइंड डाउन अ लिटिल बिट. आई होप यू हैड अ वंडरफुल ट्यूजडे एंड आई होप यू हैव ए फैंटास्टिक रेस्ट ऑफ योर वीक. कल मिलते हैं दोबारा इसी टाइम पर मैं अभी पूरी तरह से जाने रही हूँ. एक गाना सुनते हैं फिर वापस आते हैं, थोड़ी उसके बाद और बात करेंगे, मे बी एक दो मिनट के लिए और.

All right, guys, we are in our last 9 minutes. और जाने से पहले मैं आपको एक गाना, दो गाने और सुनाऊंगी, लेकिन ये गाना सुनाने से पहले मैं एक स्टोरी और सुनाती हूँ. जब मैं when I was younger, there was this guy, अब मैं उसका नाम तो नहीं लूंगी अभी रेडियो पे. आई वॉज आई थिंक लाइक मे बी 22, एंड आई थिंक दिस बॉय हैड मैडली फॉलन इन लव विथ मी. एंड यू नो, वो मेरे को इम्प्रेस करने के लिए ना, आई इट वॉज सो क्यूट. उसे ना इस गाने के लिरिक्स एक कागज पे लिखे. एंड आई एम द सिंगर यू गाइस. मैं ऑलरेडी इतने सालों से, ऑलरेडी मैं बचपन से गा रही थी, एंड आई वॉज ऑन स्टेज. एंड यू नो, ही न्यू दैट आई एम अ सिंगर, आई हैव अ बैंड. एंड ऐसे ऐसे करके हम लोग शोज वगैरह करते थे उस टाइम पे. बट वो, उसकी नीयत बहुत इनोसेंट थी, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं इस लड़की को पटाऊं तो कैसे पटाऊं. तो उसने ना ये गाना, ये वाला ओरे पिया नहीं, अभी जो मैं बजाने वाली वो वाला गाना, उसके लिरिक्स उसने एक कागज पे लिखे, और वो मेरे सामने आके अपनी प्यार की कन्फेशन करने लगा. और उसने मेरे लिए गाना गाया, इतनी बेसुरी आवाज में गाना गाया. बट यू नो व्हाट, इमोशंस तो फिर भी आती है. तो मुझे ये गाना सुन के अभी याद आ गया. मैंने कहा आह, ओह, टू बी यंग एंड टू बी फ्री एंड टू बी इन लव, सो ब्यूटिफुल. बट लेट मी स्टॉप टॉकिंग, यू एंजॉय द सॉन्ग.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।
2: He's got very little time.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.
1: आ भाई सेठी।
2: हाँ जी मनी पाजी।
1: पहुंच गए हैं?
2: पहुंच गया मैं। अरे अरे अरे अरे पाजी, करता बड़ा सही है, इत्थे तो पार्टी करनी बनती है।
1: ओ पार्टी दी कसरत तेनू हाले, पार्टी करदा दे है तू।
3: पाजी उस गोरे से घर लेके ना एक बार भी यहाँ आए हो?
1: हो गए बहुत साल, हो गए, दादी नु मिलन आया सी एक बारी।
2: पाजी तुहाडी दादी मैनू बिल्ली वर्गी क्यों लग रही है?
1: तू लगता है तू पैग लाए होया।
4: तू इदा कर, तू सो जा, आराम कर।
2: नहीं पाजी, एक ही बोतल पीती है, ज्यादा नहीं पीती, पर दादी बिल्ली वर्गी लग रही है।
4: ओए मेरी दादी नहीं है, उसे गोरी दी दादी होनी है। ओए तू पै जा, ओए तू सो जा,
1: मेरी फ्लाइट है, तू सो जा।
2: पर दादी

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
2: hmm.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
5: Abe jaldi bol kal subah Panvel nikalna hai
6: Panvel ho ya Dallas safar tabhi mast Jab gaane ho zabardast only on Fun Asia Radio

पार्टी करो कहना क्यों नहीं मानते जिने के दिन होते हैं बस चार इंसान के शर्माना और घबराना ये दोनों चीजें छोड़ दो रूल्स और डांस फ्लोर ये दोनों चीजें तोड़ दो शुभ होए बादशाह

0: your favorite music on your favorite radio.
1: Ha ha ha.

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

0: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
1: Paid for by Mark Hill for Mayor.
2: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे. ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद AG Fintax's एडवाइजरी सर्विसेज.

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे। इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल, धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

जहे नसीब, इतनी रात गए आप हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ तो बात होगी इस चैनल में। रात भर आपके साथ फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

0: ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीता बदलाओ, लाओ।
1: गीतों से मियाँ तानसेन, कानों में शहद तो भरा जा सकता है लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे?
0: तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो एक रेट लगा रखते हो, भूख लगी है, भूख लगी है। लाओ दबाओ।
1: भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ।
0: कौन सा हिस्सा? 2 रुपए थे, उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं
1: दिया? मैं कहा इनकार कर रहा हूँ। अब 1 रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं?
0: बचा है।
1: और उस 1 रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं?
0: तेरी तो भूख की ऐसी की तैसी।
2: कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में, गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगे तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
3: पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी हैं, रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: स्पीकर फट जाए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: डैड को लगता है मैं गाने के साथ लिप्स मैच नहीं कर सकता। ही इज रॉन्ग, वॉच मी।

0: समझे हैं? हाँ?
1: बढ़िया।
2: Playing the music you want all day, every day, only on Fun Asia Radio. 104.9.

0: थोड़ा आगे चल।
1: आपके सुहाने सफर का साथी फनीशिया रेडियो।

104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, Pure Facts, Desi.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना है।

0: खुदा करे जिंदगी में ये मकाम आए, तुझे भूलने की दुआ करो और दुआ में तेरा नाम आए।
1: 104.9 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना जस्ट लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ओनली वन नेम पॉप्स अप एजी फिनटैक्स दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग फाइल स्मार्ट फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस एंड एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना दैट्स आवर कमिटमेंट तो इस बार डिले क्यों कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स प्लान टुडे प्रॉफिट टुमारो

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: IT is the spice of our station. Yeah, 104.9 FM.
1: Action!

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Hi, this is Ranbir Kapoor.
1: And I'm Vani Kapoor, and you're listening to Funasia Radio.
2: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
3: ऐसी जगह।
4: अरे झुमका भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए।
5: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
4: अरे

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: entertainment.
1: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: भूख लगी
2: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
0: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
3: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हैव 121 मैकिनी।
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
6: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रियल्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
12: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
11: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
9: टैक्सेस आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेसफुल विद CPA शालिनी कोडियाल ऑन योर साइड। यू फोकस ऑन ग्रोइंग योर बिजनेस व्हाइल शी हैंडल्स द प्लानिंग टू मिटिगेट योर टैक्स लायबिलिटी। शी इज honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.scodialcpa.com.
13: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
14: Calculating route, rerouting.
13: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
14: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
13: क्यों?
14: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
13: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
14: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
15: हाय, आई एम राजकुमार राव एंड यू आर लिसनिंग टू द मोस्ट पॉपुलर FM स्टेशन इन द US, 104.9 FM, फन एशिया रेडियो।

0: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
1: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
2: Paid for by Mark Hill for Mayor.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं हीरो।
0: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
8: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
9: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
8: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
9: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
5: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
10: बिग अचीवमेंट्स deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
11: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route. Rerouting.
1: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
2: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
1: क्यों?
2: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hurst के स्मार्ट लोग जानते हैं, डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
1: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
2: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
4: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
14: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.
15: Welcome to this hour of the program. It's going to be a busy hour. I have a giveaway for you. I'll have world news for you. I have plenty of music lined up. And we have a guest on our airwaves, all coming up in this 9 o'clock right here on the Fun Asia Network. It's Wednesday, the 3rd of June. We have a rather dry and hot day ahead of us. We should touch about 90 degrees later this afternoon.

0: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
1: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
0: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
2: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. FunAsia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
3: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panchtara is now open at a new location in Allen. Wahi swaad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhathe, roz taazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panchtara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
4: Pritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
4: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
5: वेट, व्हाट?
6: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
7: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
6: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
3: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
8: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
3: कहाँ?
9: फूडिस्तान इन ऑवरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी.
8: और अगर ऑर्डर $20 से ज्यादा हो तो घर बैठे डिलीवरी.
3: ओ वाओ.
9: एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट DYB, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
8: फूडिस्तान इन ऑवरी. Everything they see, one place, one vibe.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है. हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस.
15: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं.
14: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
15: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू. उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है.
14: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे.
15: एग्जैक्टली. अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर.
14: नंबर बोल जल्दी.
15: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com.
16: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश.
17: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
18: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं.
19: ऑलराइट डॉलर्स, लिसन अप. Store owners, this one's for you. Ravi's summer kickoff is back. Mark your calendars for today and tomorrow, 3rd and 4th of June. Both days from 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's bigger. The entire warehouse turns into a tropical experience. Expect crazy deals, new product launches and free gifts all day long. Meet vendors, discover bestsellers and stock up like never before. Ravi's Import Warehouse at 11029 Harry Hines Boulevard, Building A in Dallas, 11029. Harry Hines Boulevard, and it is Building A for Ravi's summer kickoff today and tomorrow. And all you Dallas Bollywood fans, your playlist is about to come alive. Vishal and Shekhar, the duo behind some of Bollywood's biggest super hits, bringing the super hit tour to Dallas. It's happening on Sunday, the 12th of July, the Curtis Culver Center in Garland. Tickets are on sale at cashpatelproductions.com. And here's something really exciting. Vishal Dadlani himself will be joining us live on Fun Asia Radio. Next Monday, the 8th of June at 5.05 p.m. Don't miss that interview and don't miss the concert. Vishal and Shekhar live in Dallas. And it's happening on Sunday, the 12th of June. I do have world news coming up shortly.

0: इश्क मस्ताना लाइफ इन फुल स्विंग टेकिंग अस टू द एंड ऑफ आवर शो एट 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
6: Documents ya parcel bhejni hai?
3: हाँ.
6: घर रिलोकेट करनी है?
3: हाँ.
6: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
3: हाँ भाई हाँ.
6: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
7: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
8: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
9: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
8: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
10: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
11: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
10: K2 ड्राइव मतलब?
11: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
10: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
11: 100%
12: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
13: Safar khoobsurat hai manzil se bhi.
14: अरे भाई वही तो नहीं होता, हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
15: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन. चाहे शादी के लिए इंडिया जा रहा हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल. फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस. लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री. कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
16: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
17: Excuse me. It's called being loyal.
16: It's called being predictable.
17: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
16: And what's so special at Neon Cactus?
17: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
16: Not bad.
17: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
16: Okay, this I didn't expect from you.
17: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
18: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ।
1: अच्छा सुना सुना।
0: हाँ वो मेरी प्रैक्टिस नहीं अभी।
1: अगली बार प्रैक्टिस करके आना और किसी और के लिए मत गाना।

एंड दैट वॉज सवेरा, लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम ऊंचाई. और सवेरे की सवारी आपकी क्या है? जी नहीं, आपकी गाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ, आपके आपकी मूड की बात कर रही हूँ. किस पे सवार हैं? कल के दिन का कुछ बैगेज है तो वो पीछे छोड़ के आए, उसे ट्रंक में रखे और उसे बाद में देखें क्योंकि दिन शुरू हो चुका है. लेट्स यू नो कंटिन्यू विद दिस डे दैट वी हैव इन आर हैंड्स इन ए मोस्ट सॉर्टेड वे. तो सॉर्टेड ऐसे हो सकते हैं आप कि भाई अगर आपको अपना गाना सुनना है, जल्दी सुनना है, तो यू हैव टू सेंड इन योर रिक्वेस्ट एज सून एज पॉसिबल. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ये जो हमारे रिक्वेस्ट का लाइन अप होता है, जरूर हम तक पहुंचे. 9722355555. मौसम का हालचाल कमिंग अप इन ए बिट. आई कैन वेल टेल यू कुछ मिक्स ऑफ क्लाउड्स और सनशाइन हमारे लिए है, और अभी भी आज भी कुछ हमारा कंटिन्यू करने वाला है रेन चांसेस. कल अच्छी बारिश हुई है, एक्चुअली प्लेनों में मैं रहती हूँ और वहां पे अच्छी बारिश हुई है, और जिसके कारण वेदर बहुत बढ़िया हो गया था. और आज सुबह भी इनफैक्ट द वेदर इज प्रीटी नाइस. द रेन हैज एक्चुअली ब्रॉट डाउन द टेम्परेचर. वेल, आई टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इन मच डिटेल इन द नेक्स्ट सेगमेंट. फिलहाल जो बताने वाली हूँ वो है मिस्टर अनिल गांधी और उनकी टीम के बारे में फ्रॉम AG फिनटैक्स. वेल, दे यूज देयर डेकेड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग एंड बुक कीपिंग एक्सपीरियंस टू एनेबल स्मॉल बिजनेस ओनर्स सक्सीड एंड बिल्ड वेल्थ by helping them save hundreds of thousands of dollars. And that doesn't sound bad at all. तो अगर आप interested हो, individuals और businesses दोनों के लिए अगर आप interested हो अपना untapped potential, you know, you can find through them, they help all of the business owners and individuals as well. Financial and tax services for the people who are seeking, just get in touch with Mr. Anil Gandhi. 469-942-9888 is that number. agfintax.com is the website. And this part of my show is brought to you by AG Fintax. Once again, thank you for tuning into Gupshup Gali with me too.

0: जरा में ना बहुत कुछ होता है. एक्चुअली जरा होता तो थोड़ा सा ही है, लेकिन जरा में बहुत कुछ समाया होता है. अब देखिए ना, आप अपनी हेल्थ भी थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके जो देखते हैं, उसी का आप समझ लें कि फ्रूट्स जो है, उसका फल जो है, आपको आगे चल के मिलता है. सो इट इज़ नॉट वॉट यू आर डूइंग ऑन ए गिवन डे, इट इज़ ओवर द टाइम दैट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ दैट यू स्टे हेल्दी एंड फिट लेटर एज वेल एज यू ग्रो ओल्डर. करेक्ट. नाउ गिवन दैट, टेक्सास प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहती हूँ. 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक प्राउडली सर्व करता आ रहा है हमारी कम्युनिटी को. और अब इनका जो ये ब्रांड न्यू लोकेशन है, सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन एंड अ ब्रांड न्यू नेम दैट दे आर इंट्रोड्यूसिंग, इट इज़ लुनॉक्सी मेडिकल. ये है डॉक्टर मनदीप आचार्य, जिनका नाम आप ज़रूर याद रखें. इट इज़ फाउंडेड बाई हिम. लुनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैंस, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड ऑल्सो हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज. एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज़ कि ये सारी सर्विसेज आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी. सो डू रिमेंबर, इट्स द लुनॉक्सी मेडिकल, द सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओपन 7 days a week फ्रॉम 8 AM टू 8 PM and walk in any time, no appointment is needed. कुछ ऑफ बीट गाने लगा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर, as I always try to do in the first hour of my show.
1: कहती है खुशनुमा

यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी. मेरा नाम है मीठू. आप लोगों के साथ 12:30 तक हूँ एंड देर इज प्लेंटी टू टॉक अबाउट. फिलहाल तो मौसम के बारे में ही बात कर लें क्योंकि हमारा डालस का एवर चेंजिंग मौसम नीड्स एन अपडेट एवरी सिंगल डे. तो उसी के चलते बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आज जो हमारा है 5 से 6 degrees कूलर होगा दैन येस्टरडे. वी हैड रेन एंड इसी का नतीजा है और ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू करेगा इन टू द आफ्टरनून आवर्स. मिक्स ऑफ क्लाउड एंड सनशाइन दैट वी गो have high around 90 degrees and it is going to feel like mid-90s wala temperature because of the heat index. Aur kuch mamooli chances hain isolated shower ya storm ke liye aaj afternoon hours mein, but coverage will be lower than yesterday, let me tell you that. Aur rain chances hamare zyada badh jayenge starting tomorrow afternoon and this trend will continue into the weekend. So yes, ladies and gentlemen, hamare rain chances ke bare mein to maine bata diya ki dheere dheere jo wo badhne wale hain over the weekend, and you may want to start thinking about alternative plans this weekend if you plan on being outdoors, because there is a low end level sort of a risk for flooding across North Texas from starting tomorrow through Sunday that I see here. And looking ahead to next week, the forecast is trending drier for all of us next week. Lekin mujhe aisa lagta hai ki next week ki baat next week karenge. Hum filhal abhi ki baat kar rahe hain. To chaliye quickly main aapko update deti hu on the current temperature and yes, a brief on the exact temperature that we're going to see. 78 degrees right now, ladies and gentlemen. Aur kal yaad karke dekhiye kuch

86, 87 कुछ ऐसा था, और उसके पहले 89 था. तो इट इज सच अ वंडरफुल बिगनिंग टू आर डे. और आज का हाई 89 के आसपास, लो 73. टुमोरोज हाई विल बी अराउंड 87 एंड लो विल बी अराउंड, लेट्स सी, इट विल बी अराउंड यू नो द मिड 70s दैट आई एम लुकिंग एट. यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. गोइंग टू स्लिप इनटू दिस नेक्स्ट ट्रैक. और टेक्सस A&M यूनिवर्सिटी ने कुछ रिसर्च किया है वेदर रिलेटेड एंड इट इज़ कनेक्टेड टू बिग सिटीज. उसके बारे में बताऊंगी. लेट्स सी नेक्स्ट सेगमेंट, इफ आई हैव टाइम आई विल से इट इन दिस सेगमेंट. लेकिन मैं बता रही हूँ ना, बहुत सारा माल मसाला है फॉर एवरी सेगमेंट दैट यू गोइंग टू ट्यून इनटू. दिस इज गपशप गली विद मी टू ऑन फनीजर रेडियो 104.9 FM.

0: कुछ हटके गाने लगाने की कोशिश रहती है इस पहले घंटे में. होपफुली यू आर एंजॉयिंग दीज सॉन्ग्स जो शायद आपने सुने हो, या शायद मैं ये कहने में चूकूंगी नहीं कि भाई आई थिंक मोस्ट ऑफ यू प्रॉबेबली हैवंट हर्ड दीज सॉन्ग्स, बट इफ यू लाइक देम जस्ट रिमेंबर देम एंड कीप लिसनिंग टू देम. म्यूजिक अलग अलग जगहों से भी आती है फिल्मों के अलावा, एंड दैट इज वॉट वी नीड टू स्टार्ट चेरिशिंग मोर एंड मोर. और राइट, खबरें भी अलग अलग जगह से आती हैं, और हमारे डैलस फोर्ट वर्थ और बाकी टेक्सस सिटीज के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रूशियल साइंटिफिक रिपोर्ट सामने आई है. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. अकॉर्डिंग टू ए ब्रांड न्यू 2026 स्टडी फ्रॉम टेक्सस A&M यूनिवर्सिटी व्हिच केम आउट जस्ट फ्यू डेज बैक, आर कॉन्क्रीट एंड स्टील सिटीज आर एक्टिवली ऑल्टरिंग द वेदर एंड मेकिंग इनकमिंग स्टॉर्म्स सिग्निफिकेंटली वर्स. रिसर्चर्स ने 22 साल के डेटा को एनालाइज किया है और ये डिस्कवर किया है कि जब भी छोटे आइसोलेटेड पॉपअप थंडरस्टॉर्म्स या सिंगल सेल स्टॉर्म्स किसी बड़े शहर के ऊपर से गुजरते हैं तो वो सिटी की गर्मी को, यानी कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से, और ज़्यादा बड़े और इंटेंसिफाइड हो जाते हैं, फ्यूल्ड एंटायरली बाय ट्रैप्ड अर्बन हीट. नाउ दिस इज एस्पेशली ट्रू एट नाइट जब रूरल एरियाज ठंडे हो जाते हैं, पर डैलस जैसे बड़े शहर जो हैं दिन भर की गर्मी को ट्रैप करके रखते हैं अपने आप में, फ्यूलिंग ओवरनाइट स्टॉर्म्स एंड ट्रिगरिंग सडन सिवियर फ्लैश फ्लडिंग एज वेल. यस, ऑन द फ्लिप साइड जो स्टॉर्म्स कोल्ड फ्रंट्स के साथ आते हैं वो शहर की टर्बुलेंस की वजह से 16% टू 28% तक वीकन हो जाते हैं. सो हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट, आई थॉट आई विल शेयर.
1: मार्क हिल इज द लीडर फ्रिस्को नीड्स टू मूव फॉरवर्ड टुगेदर. एज अ फॉर्मर स्कूल बोर्ड प्रेसिडेंट, मार्क हैज अ प्रूवन record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
2: Paid for by Mark Hill for Mayor.
3: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motorworks in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motorworks, engineered for excellence.
4: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? धुआं धुआं क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
5: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
6: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
7: I've been researching retirement planning.
8: Oh, really? Where?
7: Google, YouTube, a guy on TikTok.
8: Or you could just talk to WealthTactic.
7: What's the difference?
8: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
6: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है.
15: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त. ओनली ऑन फन एशिया रेडियो.
16: tracks that put you on the right track.

दुनिया में रह के दुनिया को तो नहीं छोड़ सकते ना, इसीलिए ये रोमांटिक गाने जो हैं ये जब जिस वक्त प्ले होंगे ना तो उस मोड में रहें, लेकिन दुनियादारी के बारे में भी सोचें, यानी कि हमारे अपने खुद के लिए और आसपास के लोगों के लिए, अपने शहर के लिए ज़रूर सोचें. फ्रिस्को इज़ ग्रोइंग फास्ट, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट, एंड द फ्यूचर ऑफ आर सिटी नीड्स एक्सपीरियंस लीडरशिप. For more than 40 years, Rod Villauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. तो रॉड का ये जो मानना है कि सेफर नेबरहुड्स होने चाहिए, स्मार्टर डेवलपमेंट होने चाहिए, स्ट्रॉन्गर पब्लिक सर्विसेज होने चाहिए, और यू नो फैमिली वैल्यूज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना आसान होना चाहिए, एंड दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली मेक्स फ्रिस्को सो वेरी स्पेशल, एंड ही वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट, एंड यू कैन हेल्प हिम कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि इलेक्शन में आपके वोट्स मैटर करते हैं, एंड वोट रॉड विलावर इफ यू बिलीव इन हिज फिलोसफीज फॉर फ्रिस्को मेयर, बिकॉज द नेक्स्ट 4 years विल डिफाइन द नेक्स्ट 40 फॉर फ्रिस्को. सो वोट फॉर श्योर एंड वोट रिस्पॉन्सिबली, लेडीज एंड जेंटलमैन. दिस इज फन एशिया रेडियो 104.9 FM, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर.

एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है फीफा सेगमेंट. ये 10:45 टू 11 एम के बीच मैं फीफा के बारे में, 2026 फीफा के बारे में कुछ खबर लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए. तो आज क्यों ना हम बात करें अबाउट दैट एडिडास ट्रायोंडा, द ऑफिशियल मैच बॉल फॉर 2026 फीफा वर्ल्ड कप. नाउ ये जो इसका डिज़ाइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है द यूनिटी ऑफ थ्री होस्ट नेशंस, US, कनाडा और मेक्सिको. और जो नाम है ट्रायोंडा, इट ट्रांसलेट्स टू थ्री वेव्स. और ये आइकॉनिक डिज़ाइन जो है इसमें काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, एंड दैट इज़ ऑनरिंग द होस्ट कंट्रीज एंड रिप्रेजेंटिंग आइकॉनिक स्टेडियम वेव्स. और इसमें ना इनकॉर्पोरेट किया गया है एक सटल नेशनल सिंबल भी, ए स्टार फॉर द US, एन ईगल फॉर मेक्सिको एंड अ मेपल लीव फॉर कैनेडा. दैट्स हाउ ब्यूटिफुली दैट बॉल हैज़ बीन डिज़ाइन, विच इज़ कॉल्ड अ ट्रायोंडा. और इसके एरोडायनमिक्स भी बहुत शानदार है. इट बोस्ट एन इनोवेटिव थर्मल बॉन्डेड फोर पैनल कंस्ट्रक्शन और fewer panels than previous World Cup that this ball is going to have, and it is already in circulation obviously. और ये जो deep seams हैं और texture जो surface है इसका, it is to provide better in-flight stability and precision. इसके अलावा भी बहुत interesting बात ये है, and it is to do with the technology that has been used in this ball. So yes, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये ball कोई आम football ball नहीं है. इसको इतना हाई टेक बनाया गया है कि इसमें एक इंटरनल कनेक्टेड सेंसर चिप होने वाला है दैट सेंस रियल टाइम ट्रैकिंग डेटा डायरेक्टली टू द वीडियो असिस्टेंट रेफरीज. सो यस, इसका मतलब ये है कि मिलीमीटर लेवल की एक्यूरेसी के साथ पता चल जाएगा कि बॉल ऑफसाइड गई है या गोल लाइन के उस पार चली गई है. मतलब कुल मिला के ह्यूमन एरर की कोई गुंजाइश नहीं होने वाली है. एंड यस, और इसका डिज़ाइन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, टू कंट्रोल यू नो द फ्लो ऑफ द बॉल. सो ऑल दीज थिंग्स मेक इट इवन मोर एक्साइटिंग, द एडिडास ट्रायोंडा बॉल, जो आपको पता होना चाहिए बिफोर द मैच स्टार्ट्स. नाउ विथ दिस खबर, मेरे ख्याल से चलें अगले गाने पर. This is the FIFA segment that I bring for all of you during this time. तो आज जो ट्रायोंडा बॉल के बारे में हमने आपसे बात की, hopefully this was an information that you were not aware of. कुछ ऐसी ही जानी अनजाने बातें हम इस सेगमेंट में कवर करते चलेंगे आप लोगों के लिए ऑल थ्रू द FIFA गेम.

और वही रहने वाला है हमारे डैलस में, धूप और छांव, ए मिक्स ऑफ द टू वी गोइंग टू सी टुडे. इट इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स सी, 58 मिनट्स पास 10 बाय द स्टूडियो क्लॉक. और अगले सेगमेंट में आपके लिए कुछ सवाल. द सेगमेंट विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि गपशप लगाते हैं हम ऑन एयर आके. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
3: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
4: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
3: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
4: वेट, व्हाट?
2: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
5: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
6: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
8: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
9: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
8: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
10: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to FunAsia.
11: Tracks that put you on the right track.

कोई नदी नहीं पार करनी पड़ेगी आपको, गाड़ी उठाएं और जाएं तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट. इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ लंच राइट नाउ, ये एक सजेशन हमारी तरफ से. इट इज़ इन गार्लिन, लेडीज एंड जेंटलमैन. और गाड़ी से तो फासला सब कुछ फटाफट तय होता है. इफ़ यू आर अराउंड यू नो गार्लिन, दिस शुड बी योर स्टॉप. वो सारे स्पाइस लवर्स जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए वेरी स्पेशली दिस वेरी स्पेशल प्लेस, जहाँ पे तंदूरी प्लेटर्स से लेकर करीज और फिर आपके नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, आपको सारा कुछ मिलने वाला है at Tandoori Flame Restaurant, ladies and gentlemen. And yes, turn your daily meal into an exciting meal. Ek ordinary din ko bahut extraordinary banane ke liye, jaen Tandoori Flame Restaurant. It is located in Garland. Once again, apne din ko extraordinary banane ke liye, Fun Asia Radio bhi sunte rahein aur dil se sunte rahein aur chipak ke sunte rahein. क्योंकि हम बात करने वाले हैं कुछ लैंग्वेजेस की, और इसी के चलते कुछ ऐसे गाने लगा रही हूँ आपके लिए विच हैज द फ्लेवर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज इन द सॉन्ग. और इसी से जुड़ा एक सवाल आप लोगों के लिए आ रहा है, और हर बार की तरह ना कोई सही ना कोई गलत जवाब है. 9722355555 गिव अवे ऑल्सो दैट इज कमिंग योर वे. वन ऑफ यू कैन बी ए लकी विनर From India Bazaar, उनका ग्रोसरी हैम्पर तगड़ा होता है.

सारे गाने जो इस सेगमेंट में प्ले कर रही हो ना, एक अलग अपना फ्लेवर लेकर आ रहे हैं उस स्टेट का, जिस स्टेट को ये बिलोंग करता है. एंड दिस वाज द राजस्थानी फोक सॉन्ग दैट आई प्लेड फॉर ऑल ऑफ यू, चौधरी बाय मामे खान दैट आई प्लेड फॉर ऑल ऑफ यू. और यहाँ पे आप लोगों से कुछ पूछना है, और आप लोगों को किसी एक को एक्चुअली मैं देने वाली हूँ इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ की तरफ से एक बढ़िया सा ग्रोसरी हैम्पर. और आप जानते हैं ना कि इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ में आपके लिए हैं ऑब्वियसली फ्रेश प्रोड्यूस और स्पाइसेस और स्नैक्स एंड ऑल दैट इंडिया बाजार इज सो नोन टू सर्व. तो आप ज़रूर जाइएगा इस लोकेशन पे, 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ. फॉर पीपल लिविंग इन फोर्ट वर्थ, केलर, हर्स्ट, हैसलेट, आप सब के लिए ये बहुत कन्वीनियंटली लोकेटेड है. और बाकियों के लिए एक रीज़न बनता है कि आप इंडिया बाजार के नए स्टोर को चेकआउट करें. ठीक है, नाउ दैट बीइंग सेड, आप लोगों के लिए सवाल इज टू डू विथ लैंग्वेज, लेडीज एंड जेंटलमैन. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक रिसर्च लेकर आई हूं मैं आप लोगों के लिए, कि हम सब जानते हैं कि यूएस को एक मेल्टिंग पॉइंट पॉट ऑफ कल्चर्स कहा जाता है, राइट? और इसका मतलब सीधा सीधा ये भी होता है कि ये एक मैसिव मेल्टिंग पॉट है फॉर लैंग्वेजेस ऑल्सो, करेक्ट? नाउ अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंसस ब्यूरो, 77% of Americans speak English at home as their first language. Spanish number 2 spot पे आता है. लेकिन real twist ये है कि जब हम पूछते हैं कि English और Spanish के बाद third position पे कौन सी most spoken language है for each state, that is the most interesting part, right? क्योंकि English और Spanish के बारे में हम सबको पता है. आपको पता है कि हमारे टेक्सास में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो ज़ुबान है, इट इज़ वियतनामीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, ड्रिवन हेविली बाय थ्राइविंग कम्युनिटीज दैट एस्टैब्लिश डीप रूट्स आफ्टर द वियतनाम वॉर. कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन स्टेट में हेल्थ केयर और नेवल माइग्रेशन की वजह से तगलॉग, द फिलिपिनो लैंग्वेज इज डोमिनेटिंग. जबकि न्यूयॉर्क में मैसिव इमिग्रेशन हब की वजह से चाइनीज टॉप पर आता है. द कूलेस्ट पार्ट इज दैट एरिजोना एंड न्यू मेक्सिको शोकेस देयर नेटिव रूट्स विद नवाहो taking third place because it encompasses the massive Navajo nation that is there. So US is a beautiful tapestry woven from centuries of global migration and native cultures that it is. I thought it is such an interesting data about different states that I wanted to share with all of you. So now it is your turn to share your mother tongue with us. So call kijiye. और जो भी हमारे थर्ड कॉलर होंगे ना, उनको हमारी तरफ से और साथ में इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ की तरफ से एक बढ़िया सा तगड़ा सा ग्रोसरी हैम्पर मिलने वाला है. सो यस, डू गिव मी अ कॉल एंड ग्रीट आर लिसनर्स इन योर ओन मदर टंग. इट्स एज सिंपल एज दैट. जी हाँ, कॉल करके अपनी भाषा में, अपनी जुबान में आपको ग्रीट करना है हमारे लिसनर्स को. ठीक है, गुड. 9722355555. एक और बढ़िया सा फ्लेवर लेकर आना चाहते हैं, अ डिफरेंट लैंग्वेज अगेन. दिस सॉन्ग विच इज सच अ पॉपुलर वन. नाउ इस गाने के बाद आपके कॉल्स लें,

0: That Haryanvi song, which is Banjari, which has garnered so much of love from everybody, I absolutely enjoy playing it. और मैं enjoy कर रही हूँ different languages में आप लोगों के लिए एक flavor जो लेकर आ रही हूँ इन गानों में. Hopefully you are enjoying that and we are going to enjoy you all coming on air and greeting our listeners in your own mother tongue. जी हाँ, US एक जो melting pot है cultures का and that directly means कि melting pot है different languages का. तो हमने कि आप लोगों से बातचीत करते हैं और आपकी लैंग्वेज में हम ग्रीटिंग्स पहुंचाते हैं अपने लिसनर्स तक. यू आर लाइव ऑन एयर एंड थैंक यू फॉर होल्डिंग द लाइन प्रतीक. यस, मजा मा.
1: नमस्ते
0: नमस्ते. थैंक यू फॉर ग्रीटिंग आवर लिसनर्स हियर एंड दैट इज गुजराती, राइट? थैंक यू. बहुत मीठी लैंग्वेज लगती है मुझे गुजराती. थैंक यू जी. थैंक यू फॉर योर कॉल एंड यू आर माय नंबर वन कॉलर. गोइंग टू माय नंबर टू कॉलर. नंबर थ्री को मिलने वाला है इंडिया बाजार की तरफ से एक खास गिफ्ट, ग्रोसरी हैम्पर. ऑलराइट, यू आर माय कॉलर नंबर टू. जी हाँ, अपना मदर टंग बताइए और फिर उस भाषा में आप हमारे लिसनर्स को ग्रीट कीजिए. यू लाइव ऑन एयर.
2: हेलो, मैं परवीन बोल रही हूँ.
0: हाँ जी.
2: गुजराती माँ.
0: हाँ जी.
2: गुजराती भाषा छे. मारा तरफ थी तमने बधाई ने आज नो दिवस खुशी खुशी आनंद थी गुजरे एवी प्रार्थना छे.
0: ओ वंडरफुल, थैंक यू फॉर योर विशेस एंड बैक टू यू. थैंक यू. वेटिंग फॉर माय कॉलर नंबर थ्री. हियर वी गो. ऑलराइट, यू आर माय कॉलर नंबर थ्री एंड देयरफॉर यू आर माय विनर. नाम बताइए और अपनी मदर टंग भी बताइए.
3: मेरा नाम जशनदीप गिल है. मदर टंग पंजाबी. सो सत श्री अकाल टू एवरीवन.
0: ओ लवली. मेरी ना कितनी तमन्ना है कि मैं पंजाबी सीखूं. यू नो माय अंकल ही लिव्स इन चंडीगढ़ एंड देयरफॉर ही स्पीक्स अमेजिंग पंजाबी. बिल्कुल फ्लुएंट पंजाबी बोलते हैं ऑब्वियसली. कभी सीख नहीं पाई हो यार. सो थैंक यू सो मच.
3: नहीं कोई गल नहीं, ट्राई करियो ट्राई करियो, सीख जाओगे.
0: बस सीख जाऊंगी, है ना. मैं जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ सही. बताइए क्या नाम है आपका.
3: यू आर डूइंग दिस. जशनदीप गिल.
0: जशनदीप गिल, आपको मिलता है ये ग्रोसरी हैम्पर. आई एम गोइंग टू आस्क यू टू होल्ड द लाइन फॉर मी फॉर जस्ट अ टैड बिट एंड आई एम गोइंग टू गेट टू यू एंड टेक ऑल योर इन्फॉर्मेशन ऑफ हियर. कंग्रेचुलेशंस.
3: थैंक यू. श्योर.
0: एंड जशनदीप गिल ने तो जीत लिया है. मैं सोच रही थी कुछ और लैंग्वेजेस में हमारे अगर विशेस मिलते तो मज़ा आ जाता है. बहुत ही बढ़िया लगता हमें. तो ज़रूर कॉल कीजिएगा इफ़ यू हैव इन माइंड व्हाट टू टेल आर लिसनर्स हियर इन योर ओन मदर टंग. ज़रूर कॉल कीजिएगा. बाकी रही बात बांग्ला में, ये गाना सुन लें. फ्लेवर ऑफ बाउल गीती दैट्स दिस सॉन्ग ड्रिंक्स फ्रॉम लोटेरा. और जशनदीप से मैं बात करके आती हूँ, ठीक है.

विद दैट जश्नदीप गिल ने तो इनाम जीत लिया. और पता एक और माइंड ब्लोइंग बात क्या है, वो खुद फोर्ट वर्थ से हैं. सो इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ से जो उन्हें मिला है, इसे कहते हैं नेकी और पूछ पूछ या सोने पे सुहागा. यू आर लिसनिंग टू फनीशर रेडियो 104.9 FM और मैं हूँ ए बोंग. आई एम अ बंगाली, तो बांग्ला में क्यों ना विश करूँ मैं आप सबको. तो आपनार दिनटा शुभ होक एटाई আমি আপনাদের উইশ করলাম. দিস ইজ ইন বাংলা ফ্রম মি, আই এম ইয়র হোস্ট মিঠু. অ্যান্ড এক অর গানা যো লগানা চাহতি হুম আপলোগোকে লিয়ে, দিস ইজ আ ভোজপুরি সং অ্যান্ড ইট হ্যাজ আ হিস্ট্রি টু ইট. কিসি অর দিন আপলোগোকে সাথ শেয়ার করুঙ্গি. ফিলহাল আপ ইয়ে গানা শুনে অর এনজয় করেন. ইট ইজ ইন দ্য ভয়েস অফ রেখা ভরদ্বাজ.

0: गाना जो है ना ये 200 साल पुराना है, विच हैज बीन रिवाइव्ड बाय कोक स्टूडियो भारत, और इसके साथ जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ऑफ कचौड़ी गली इन बनारस, विच आई विल शेयर विद यू मे बी टुमारो और एनी डे दैट यू रिमाइंड मी. ऑलराइट, कीप लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
5: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी. टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
7: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
8: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
9: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
8: सच में? बिल्कुल घर जैसा.
9: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर. लोकेटेड इन अर्विंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट. चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम.
10: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
11: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
12: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
13: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
14: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच ambience and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to page 3, hub 121 McKinney.
15: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
16: Tracks that put you

ऐसा है कि ये गाना मैंने ऑन पर्पस लगाया था क्योंकि इस गाने में साइकिल है, और क्योंकि आज वर्ल्ड साइकिल डे है तो हम अपने साइकिल्स को याद करने वाले हैं और आप मुझे कुछ बताने वाले हैं. 9722355555, एज सिंपल एज टेलिंग मी कि आपको साइकिल चलाना किसने सिखाया. दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू नो. 9722355555. और आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त गिव अवे है फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर. सो इफ यू आर इनटू यू नो देयर फूड, विच आई एम श्योर यू आर, आपके लिए ड्राई चिली चिकन है या चिली बेबी कॉर्न या फिर डैलस का बेस्ट बटर चिकन जो कि आपको रेड हॉट चिली पेपर में मिलता है, चिकन मक्खन वाला, तो इन तीनों में से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं. और लोकेशन जो तीन आप चूज कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर रिचर्डसन, मैकिनी और एलन, एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द फ्रिस्को लोकेशन, और इसीलिए ये मेंशन करना यहाँ ज़रूरी था. एंड फॉर ऑल ऑफ यू टू कॉल मी एंड टेल मी कि आपको साइकिल चलाना किसने सिखाया, एज सिंपल एज दैट. सो वी गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग और उसके बाद हम आप लोगों के कॉल्स ऑन एयर लेना शुरू करेंगे. सी बॉलीवुड हैज़ gifted us some memorable bicycle scenes and songs. वो acting जो हमारे जो actors ने की है on cycle, पता नहीं सही में चलाते थे कुछ तो, शायद ऐसे ही acting भी करते थे, but ये तो तय है कि जहाँ पर acting का सवाल है, जहाँ पे cycle ने catalyst play किया, जो जीता वही सिकंदर. I think that must have been one of their very key things in selecting the actors, कि cycle चलाना आता है कि नहीं, या पता नहीं लोग पूछते भी होंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट एवरीबॉडी दैट आई नो ऑफ कैन राइड अ साइकिल. ये बात अलग है कि जल्दी सीखे देर से सीखे, लेकिन सीखे ज़रूर है. इतना मैं अपने जान पहचान के लोगों में कह सकती हूँ कि ये मैंने तो देखा है. अब इतने सारे गाने हैं, उनमें से कुछ गाने साइकिल पे सवार हमारे एक्टर या एक्ट्रेसेस दैट वी हैव सीन इन द बॉलीवुड सॉन्ग्स, दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर यू. और आप बताइए कि साइकिल पे सवार तो हो गए, लेकिन वो पीछे से धक्का किसने दिया टू गिव यू दैट इनिशियल बूस्ट to learn cycling.

0: एंड इट इज वर्ल्ड बाइसिकल डे, तो आज ये बनता था कि आप लोग उससे पूछें कि भाई आपको साइकिल चलाना है, किसने सिखाया, कौन आपके पीछे भागे हैं सीरियसली, एंड दैट इज क्वाइट अ टास्क, यू शुड नो दैट. जिन्होंने भी किसी और को साइकिल चलाना सिखाया है वो जानते हैं कि ये कितना डॉन्टिंग टास्क होता है कि वो पीछे पीछे दौड़ना. और वो आप दिन में ही सिखाते हो तो वो समझ में ही सिखाते हो, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं बाकी महीनों में, तो और समझ में छुट्टी होती है, यानी कि वो भरी धूप में वो पीछे दौड़ दौड़ के सिखाना, उफ, वो एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है. ऑल राइट, आई एम गोइंग टू टेक माय फर्स्ट कॉलर्स, एंड लेट मी टेल यू, रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से आप में से किसी एक को मिलने वाला है दिस गिव अवे, ड्राई चिली चिकन या चिली बेबी कॉर्न या फिर चिकन मक्खन वाला. आई एम गोइंग यू नो से आज क्योंकि June 3rd है, वर्ल्ड बाइसिकल डे, 3rd कॉलर को मिलने वाला है. ठीक है, यू लाइव ऑन एयर.
1: हेलो.
0: हाँ जी, सोहेल साहब
1: हाँ
0: एंड
1: जी.
0: मरिया जी, थैंक यू फॉर होल्डिंग द लाइन. ये वो दंपति है कि जब भी कॉल करते हैं तो साथ में कॉल करते हैं. आई लव इट.
1: जी आई नो वी लाइक. ओके सो ओके सो द माय आंसर बेसिकली है ना, एक बहुत ही मस्त था, एंड दिस इज फैक्ट एक्चुअली.
0: ओके,
1: आई मी एंड माय ब्रदर वी हैव लाइक एज डिफरेंस ऑफ ओनली 2 years, राइट? वो 2 साल बड़े हैं मुझसे.
0: हाँ जी.
1: हमने एक दूसरों को साइकिल चलाना सिखाया. वुड यू बिलीव दैट?
0: क्या बात है. एट व्हाट एज? एट व्हाट एज?
1: क्या हाँ, आई थिंक 8. आई वाज 8 एंड ही वाज
0: 10 प्रोबेबली. या ओह वाओ.
1: और हमारे हमारी जो बिल्डिंग में गेटेड कम्युनिटी, बट बिल्डिंग में एक दूसरा 12 या 14 साल का बच्चा था जो साइकिल दौड़ाता था.
0: जी.
1: हमने उसको देख के इंस्पायर हम हुए हैं और यकीन करें वी वेंट एंड वी गॉट अ बाइसिकल एंड हम लोग ने एक दूसरे को सिखाया.
0: अरे बारी बारी. क्या
1: वो भी गिरते थे, भैया भी गिरते थे, मैं भी गिरता था.
0: वो तो ऑनर वाली चोट होते थे. मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा कि जो गिरा नहीं होगा साइकिल सीखते वक्त, है ना?
1: नहीं नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और कितनी बार ऐसे होता था, भैया मुझे बोलते थे तू चला, मैं पीछे हूँ, मैं पकड़ा हूँ. फिर मैं जब
0: पलट के देखो
1: देखता हूँ तो कोई नहीं है.
0: कोई नहीं है. और तब रियलाइज करती हूँ कि क्योंकि कोई नहीं है अब तो गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो
1: कॉन्फिडेंस.
0: आई नो, इट इज सो ट्रू.
1: कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल जनाब, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन एयर. आपकी स्टोरीज एक्चुअली बड़ी शानदार होती है हमारे लिसनर्स की, और इसीलिए लेना चाहती हूँ हमारे अगले कॉलर को लाइव. एंड योर कॉलर नंबर 2, आप बताइए आपने किससे सीखा साइकिलिंग?
2: जी, मैंने सीखा मेरी फ्रेंड से, हु वाज जस्ट 1 year सीनियर टू मी. तो उससे मैंने की. हाँ, गर्मियों की छुट्टी में जो मैं नानी के घर जाती थी, तो वो नानी के घर में हम दोनों रेंटल लेते थे साइकिल.
0: बात है.
2: एंड देन शी यूज्ड टू टीच मी एंड वी यूज्ड टू हैव फन टुगेदर.
0: हाउ फन दैट साउंड्स. एंड हाउ ओल्ड वर यू देन?
2: I was in my second grade at that time.
0: Oh, and she was probably in 3rd?
2: Yes, so she was in the 3rd grade, yeah.
0: Oh, how sweet is that? What is the name of your friend? Let's give her a big shout out today.
2: Her name is Hema and she lives in Florida now.
0: How amazing. You should, you know, call her and tell her that you shared the story today on air. How wonderful. Thank you so much. And what's your name?
2: My name is Kiran.
0: Kiran, thank you. What a sweet story that was. Going to my caller number 3. और आपको मैं पहले ही बता दूं कि आपने जो साइकिल चलाना सीखा, जिनसे भी सीखा, उनके साथ रेड हॉट चिली पेपर का शेयर कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि यू आर द विनर फॉर दिस सेगमेंट. बताइए क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम सुरोमा इंदौरी है और मैं जरूर शेयर करती अगर वो इस शहर में रहते. तो मैंने सीखा है मेरी बड़ी दीदी से और पापा ने भी सिखाया. और मैं ना चलाते चलाते एक लेडी की ऊपर चढ़ भी गई थी मेरे साथ. और तभी ना इलेक्शन भी चल रहे थे इंडिया में, तो हाँ. वो बोल रहे थे इस मुन्नी का प्यारा गाय बछड़ा.
0: So many memories, my goodness. मुझे भी अपनी बड़ी बहन ही मान सकती हैं आप. रेड हॉट चिली पेपर मुझे भी ले जा सकती हैं आप. वैसे एक सवाल, बिफोर आई गिव इट टू यू, आई हैव अ क्विक क्वेश्चन. आपने इस महीने जीता है क्या, मतलब एक महीने के अंदर अंदर जीता है रेड हॉट?
3: नहीं, जीता.
0: ऑल राइट, थैंक यू सो मच. चलिए हम आपको होल्ड पे रखते हैं. और एक और गाना सुनवाते हैं. शुरुमा जीत चुकी हैं फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर. भले वो इंसेंटिव नहीं हो, लेकिन ये एक इंसेंटिव जरूर हो कि भाई हम अपने स्टोरीज आके शेयर करें, बिकॉज इट इज रिवाइविंग सो मेनी नॉस्टैल्जिया फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर आर लिसनर्स एज वेल. मुझे मेरी मॉम ने सिखाया और बेचारी कितना मेरे पीछे पीछे दौड़ी है. और जो कि सोहेल साहब ने कहा ना कि वो कहती थी कि हाँ मैं पकड़ी हुई हूँ, एंड देन शी वुड लीव मी सो दैट आई कुड लर्न ऑन माई ओन एंड ऑल ऑफ दैट. एंड वो जब पीछे पलट के देखते हो ना, वो कॉन्फिडेंस वाली ही बात होती है. जैसे पीछे पलट के देखा कि नहीं है, तो फिर बिल्कुल हिलडुल के और मतलब बैलेंस खो जाता था आपका, है ना. हाउ फनी इज दैट. आई टेल यू अ फनी स्टोरी ऑफ वन ऑफ माय कजिन्स. जो हमारे ये वीकेंड पे एक फैमिली, बिग फैमिली कॉल हुआ था, उन्होंने ये इंसिडेंट शेयर किया था अपने बचपन से अबाउट साइकिलिंग कैसे सीखी और क्या इंसिडेंट हुआ था. ठीक है, आई विल टेल यू ऑल ऑफ दैट. एंड फिलहाल एक अच्छा सा गाना, अगेन ए सॉन्ग विच फीचर्स साइकिल. मैं ये नहीं कहूँगी कि आलिया भट्ट, इट फीचर्स साइकिल. इट इज वर्ल्ड बाइसिकल डे, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स सेलिब्रेट. दिस इज कपशप गली विद मी टू.

It is 3rd of June और annually इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड बाइसिकल डे. और ये इम्पोर्टेंस ऑफ बाइसिकल समझाने के लिए लोगों को कितना सिंपल है, कितना अफोर्डेबल है, इन्वायरमेंटली कितना फ्रेंडली है, ये सारी चीज़ें. और फिर हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, ये हम सब जानते हैं इसके बारे में, राइट? मतलब कुल मिला के एनर्जी एफिशिएंट है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मेंटल वेलबींग के लिए भी साइकिलिंग इज सो गुड बिकॉज इट स्टिम्युलेट्स योर मेंटल हेल्थ एज वेल. कुल मिला के बहुत सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा है साइकिलिंग. सो यस, अगर आपको क्या लगता है कि अगर आपको आपको मौका मिलता तो क्या आप साइकिल से अपने काम पे जाते? क्या पता नहीं टेक्सास में ये चीज लागू हो सकता है कि नहीं, बिकॉज कंसिडरिंग कि सब कितना स्प्रेड आउट है तो शायद मुश्किल होता है, लेकिन देयर आर मेनी मेनी सिटीज जहां पे ये चीज एक्चुअली होता है. उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले एक और बात जो बताना चाहती हूँ वो है अबाउट दिस स्टोरी दैट वन ऑफ माई कजन शेयर इन आर व्हाट्सएप वीडियो कॉल. फैमिली, हमारे पूरे फैमिली के साथ हो रहा था, तो बचपन की बातें शेयर हो रही थी और उन्होंने बताया कि दिस कजन ऑफ माइन ही हैड लर्न टू बाइसिकल, लेकिन उन्हें उतरना और चढ़ना नहीं आता था. थोड़ा ऊंचा भी था साइकिल भाइयों का, बड़े भाइयों का, वो शेयर कर रहे थे. तो एक दो भाई उनको चढ़ने में हेल्प करते थे और उतरने में हेल्प करते. तो दिस वन टाइम जब घर के सामने वो चला रहे थे, एक बड़ा सा मैदान था और मैदान के इर्द गिर्द चला रहे थे, पता चला कि दोनों भाई कहीं गायब हो गए. वो भी बच्चे ही थे, वो कहीं अपने कुछ उनका उनका फोकस भटका और वो चले गए. एंड ये बेचारे मेरे ब्रदर, वो एक चक्कर लगाते थे और फिर अपने भाइयों को बुलाते थे, भैया, देन ही वुड गो फॉर अनदर चक्कर और फिर भैया, क्योंकि उतरना चढ़ना आता नहीं था. तो अब उतरे कैसे? चढ़ तो गए हैं, चला तो लेते हैं, लेकिन उतरे कैसे? इट वॉज सो हिलेरियस टू यू नो लिसन टू दोज स्टोरीज जो हमने शेयर की हमारे कॉल में. सो आज बाइसिकल डे पे मैंने सोचा कि ये भी शेयर कर लिया जाए आप लोगों के साथ.

और चलते हैं एक और ऐसे ही बाइसिकल वाले गाने पर, जिसके साथ तो एक कहानी है कि भाई काजोल बाइसिकल से गिरी थी और थोड़ी देर के लिए उनकी याददाश्त चली गई थी. एंड करण जौहर एंड शाहरुख खान हैड अ बॉल विथ दैट.

0: यू नो वॉट, क्योंकि ये गाना मैं पूरा नहीं लगा सकती, तो सोचा कि जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर लेती हूँ कि भाई वर्मोंट एंड ओरेगॉन टेक द टॉप स्पॉट फॉर ओवरऑल कम्यूटर फ्रेंडलीनेस बैक्ड हेविली बाय हाई फेडरल फंडिंग पर कैपिटा फॉर बाइक, यानी कि बाइसिकल पार्ट्स एंड एक्सलेंट सेफ्टी रिकॉर्ड्स. जहाँ पर साउथ कैरोलिना एंड टेक्सिस ऑन द फ्लिप साइड सबसे कम है बाइसिकल्स यहाँ.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG FinTax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community. He calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
8: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating route. Rerouting.
8: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
9: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
8: क्यों?
9: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
8: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
10: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
9: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
11: आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है. प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. From taxes to CFO advisory, business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
17: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
18: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
17: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
19: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
16: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी.
20: वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
21: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
22: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ी, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
23: ना सब और प्राइस
22: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
24: मैं हीरोइन हूं।
25: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
26: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
25: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
26: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
22: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181, मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
27: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
28: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
29: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
30: Tracks that put you on the right track.

थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन इन दिस लास्ट सेगमेंट. कुछ गाने हम ऐसे लगाने वाले हैं जो इसी टाइम फ्रेम में रिलीज हुई हैं. वी विल स्टार्ट दैट इन जस्ट अ बिट. लेकिन उसके पहले यू नो व्हाट, आई डू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वर्थ शेयरिंग, जस्ट लाइक दिस म्यूजिक दैट इज प्लेइंग इन द बैकग्राउंड. क्योंकि ये है बिल्कुल होलसम देसी, लेकिन विथ कॉन्टेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल दैट इज इन दिस सॉन्ग. सो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स भी कुछ एक ऐसी जगह है आप लोगों के लिए जहां पर आप वो डिजाइन जो ढूंढ रहे हैं ना, वो ट्रेडिशनल हो या कॉन्टेम्प्रेरी विद दैट मॉडर्न फ्लेयर दैट यू आर लुकिंग फॉर योर सेल्फ और ए फैमिली मेंबर, आपको मिल सकता है यहाँ पर. कुछ भी आपका जो स्पेशल इवेंट है ना, उसमें थोड़ा सा और स्पार्कल ऐड करने के लिए मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स पे जरूर जाएं. इट इज ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग वेडिंग ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट, दैट्स टाइमलेस एंड क्राफ्टेड to shine. And yes, Malabar Gold and Diamonds, ladies and gentlemen, do download their app, mobile app, for the latest collections, updates and more details. Now that being said, let's take you to this gana.

It is a song that was created by Pritam, right? अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, श्रेया घोषाल और वैशाली माड़े की आवाजें थी, और कुछ ऐसा ही एक सिमिलर फील लेकर आया था एक गाना जो कि एक ऐसी फिल्म से था जो आज ही के दिन रिलीज हुआ था 3 years back, और अक्षय कुमार की ये ग्रैंड हिस्टोरिकल ड्रामा जो हमने देखा बिग स्क्रीन पर, सम्राट पृथ्वीराज, ये काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आई, बट द पॉइंट रिमेन्स कि इसके पीछे मेहनत डायरेक्टर ने काफ़ी की थी, और डायरेक्टर का नाम डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने इस फिल्म के स्क्रिप्ट को लिखने के लिए पूरे 18 साल रिसर्च के अपने लगाए थे। उन्होंने 2004 में ये जो स्क्रिप्ट है ये कंप्लीट कर ली थी, और उनकी सबसे पहली चॉइस पृथ्वीराज चौहान के लिए अपेरेंटली मिस्टर सनी देओल थे, लेकिन और उनके साथ एक्चुअली सनी देओल के साथ ऐश्वर्या राय वॉज सपोज टू बी द लीडिंग लेडी एज संयोगिता, और ये रोल बाद में मानुषी चिल्लर को मिला एज वी ऑल नो, और ये एक मैसिव बैटल सीन इसके लिए तैयार किया गया था। 50,000 पूरे जो हैं ऑथेंटिक पीरियड एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स वो बनाना, ये कोई मुँह की बात नहीं होती है, और हैवी पगड़ियाँ हाथ से डिज़ाइन की गई थी वो 12th सेंचुरी को डिपिक्ट करती हुई। सो येस, लॉट ऑफ वर्क दैट वेंट इन टू मेकिंग इट। इट डिड नॉट सी यू नो गुड बॉक्स ऑफिस रिजल्ट, नीदर डिड द सॉन्ग्स विच वर क्रिएटेड बाय शंकर एहसान लॉय। इस अगले गाने में ना इट हैज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कलंक गाना दैट यू जस्ट हर्ड। आई थॉट आई ब्रिंग दिस वन फॉर यू फ्रॉम सम्राट पृथ्वीराज।

रिलीज्ड ऑन दिस डे June 3rd, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 3 साल पहले सम्राट पृथ्वीराज, ये जो फिल्म अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर की आई थी, उसका ये गाना आपने सुना. और ऑब्वियसली एक बायोपिक था सम्राट पृथ्वीराज का, और इसीलिए काफ़ी इंटेंस बैटल सीन्स भी थे. और उन सीन्स में वन कैन ईजीली इमेजिन कि काफ़ी कुछ छोटे मोटे मिसहैप्स भी हुए थे, और कुछ हॉर्स इंसिडेंट्स, जो स्टंट मैन थे उनके, जो वो घोड़े से गिर पड़े थे, एंड ऑल ऑफ दोज इंजरीज हैड हैपेंड, बट कोई मेजर कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ था. दैट इज़ कमेंडेबल रियली, एंड दैट टेल्स हाउ ग्रेटली प्रिपेयर्ड द एंटायर टीम वॉज. एंड इसी से बात आती है कि भाई चोट ना कहीं भी लग सकती है आपको, और इसीलिए अटर्नी ओमर ख्वाजा का नंबर हमेशा आपके साथ होना चाहिए. यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि भले वो कार एक्सीडेंट हो, या स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट हो, या फिर वर्क प्लेस इंजरी हो, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें अटर्नी ओमर ख्वाजा को, एंड ही विल हैप्पीली हेल्प यू एंड रिमूव ऑल द स्ट्रेस दैट गोज़ विद हैंडलिंग सच केसेस. एब्सोल्युटली यू कैन बी अवे फ्रॉम इट, एंड ही विल हेल्प यू आउट थ्रू एंड थ्रू. और उनका प्रॉमिस ये होता है कि आपको पे नहीं करना अगर आप विन नहीं करते हो, ठीक है? तो अगर ये प्रॉमिस है, इतना बड़ा प्रॉमिस अगर लेकर आ रहे हैं, तो यू कैन रियली बी एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री, एंड यू कैन गेट व्हाट यू डिजर्व, द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. सो गेट इन टच विद देम. 4693005046 इज दैट नंबर. attorneyomer.com इज द वेबसाइट. नाउ लेट्स गेट ऑन टू another movie here, जहाँ जो कि आज ही के दिन रिलीज हुआ था, इन द ईयर 2011, एक सुपर हिट कॉमेडी स्टारिंग सलमान खान एंड असिन. और ये गाना, इट वॉज एक्चुअली इन ए तेलुगु मूवी, अल्लू अर्जुन ने इस गाने को इस फिल्म में निभाया है, और यहाँ हमारे भाईजान ने

जून 3rd 2011 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और सुपर डुपर हिट हुई थी। और एक और सुपर डुपर हिट बात करना चाहती हूँ यहाँ पर, वो है अहमद खान साहब, जिनका है आज हैप्पी वाला बर्थडे। ही टर्न 52 टुडे। एक ऐसे यू नो एक्टर एंड कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर, मतलब भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दिया है और बहुत अच्छा काम भी इन्होंने किया है एज कोरियोग्राफर। वी हैव सीन सो मेनी ऑफ हिज वंडरफुल सॉन्ग्स। उनका जो ब्रेक थ्रू कोरियोग्राफी था, इट वॉज फॉर द फिल्म रंगीला विच केम इन द ईयर 1995, और ये जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था, दैट सॉन्ग इज कमिंग अप फॉर यू नेक्स्ट। वी आर विशिंग हिम ए वेरी हैप्पी बर्थडे हियर फ्रॉम डैलस टू इंडिया, दैट वी आर सेंडिंग आर बेस्ट विशेस। वेलकम टू द जंगल इज द मूवी दैट ही हैज डायरेक्टेड एंड इट इज गोइंग टू बी रिलीज ऑन 26th of June। तो आई एम श्योर ये उनका बर्थडे मंथ है और होपफुली उनकी पिक्चर अच्छी चले, दैट इज वॉट ही इज प्रेइंग आई एम श्योर, एंड वी वॉन्ट टू ऐड टू दैट टू दोज प्रेयर्स, क्योंकि ये मल्टी स्टारर है। माने इट्स रियली एक्टिंग कू ऑफ सॉर्ट्स। मतलब सोच के देखे, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, परेश रावल, लारा दत्ता, देन दलेर मेहंदी, मिका सिंह, जॉनी लिवर, आफ्ताब शिवदसानी, राजपाल यादव, संजय दत्त, तुषार कपूर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, श्रेयस तलपड़े, दैट्स द लिस्ट ऑफ एक्टर्स ही हैज इन दिस वन फिल्म जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल। फिलहाल लेट्स टेक यू टू दिस नेक्स्ट ट्रैक, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस नेक्स्ट ट्रैक विल टेक यू टू द एंड ऑफ माई शो जिसका नाम है गपशप गली, और मेरा नाम मीठू।

ऐसा है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे आने वाला है और इसीलिए जोर तो आपको भी थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, क्योंकि म्यूजिक इज व्हाट ब्रिंग्स अस टुगेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म फनीचर रेडियो 104.9 एफएम। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आप भी म्यूजिक के दीवाने हैं हमारे तरह। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे विच इज ऑन 21st of June, हम आपके लिए यानी कि फनीशिया 104.9 FM wants to hear your story. So we all have that one song we never skip, है ना? एक कोई गाना होगा which brings back those memories or that special dedication connected to someone close to your heart. तो World Music Day पे share करें अपना music जो आपको बहुत प्यारा है by filling out a Google form which is available on our website and social media. ये contest 15 June तक चलने वाला है and tell us about your favorite music, your unforgettable music memory or what music means to you, and who knows, your story could win you some exciting prizes, because music isn't just entertainment, ladies. Music hota hai emotion, music hota hai nostalgia, music hota hai celebration and connection. Correct? Mante hai na? To kijiye participate. Aaj hi bhariye Google form hamare website pe jaake ya social media pe jaake and be part of our Funisha 104.9 FM World Music Day celebration. Now that being said, waqt hai Simi ke liye thodi jagah banate hain aur कल वापस आती हूँ आप लोगों के बीच बिटवीन 10 to 12:30. दिस इज मी टू साइनिंग ऑफ फॉर द डे।

0: कल वापस आती हूँ आप लोगों के बीच बिटवीन 10 to 12:30. दिस इज मी टू साइनिंग ऑफ फॉर द डे.
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
3: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
4: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
5: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
3: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
6: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
7: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
6: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
8: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
3: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ.
9: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
10: हाँ.
9: घर रिलोकेट करनी है?
10: हाँ.
9: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
10: हाँ भाई हाँ.
9: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
11: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
12: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
13: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
14: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
15: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

अ वेरी गुड आफ्टरनून माय देसी पीपल, आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो और मैं हूँ आरजे सिमी एके आरजे देसी गर्ल और शो है आफ्टरनून अड्डा। और आज वेंसडे है, यानी वीक का वो दिन जब वीकेंड थोड़ा पास सा लगता है पर मंडे का पेंडिंग टास्क अभी भी पेंडिंग है। और इस मिड वीक हमारा थीम है मिड ईयर रिपोर्ट कार्ड। सोचिए जरा, 2026 का आधा सफर तो हम तय कर चुके हैं। जनवरी में नए रेजोल्यूशंस लिए थे, नए गोल्स और नए प्रॉमिसेस के साथ धमाकेदार एंट्री मारी थी और अब हम जून में आ गए हैं, मिड ईयर में। यकीन नहीं होता ना? आपका मिड ईयर कैसा चल रहा है उसके रिपोर्ट कार्ड की थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या गोल्स अचीव हुए या फिर पोस्टपोन हो गए? क्या सरप्राइजेस मिले इस साल, अच्छा जा रहा या बुरा? बताइए मुझे बाय कॉलिंग मी एट 972-235-5555 पे।

आज का हमारा टॉपिक है मिड ईयर रिपोर्ट कार्ड। जैन में हम सब कितने मोटिवेटेड होते हैं ना कि इस साल डेली वर्कआउट करेंगे, इस साल पक्का से पैसे सेव करेंगे, इस साल हेल्दी ही खाएंगे और फोन कम यूज करेंगे। और जून तक क्या होता है, जून तक जिम मेंबरशिप एक्टिव है लेकिन हम इनएक्टिव हैं, सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा अमेज़न में एक्टिव है, हेल्दी फूड का रेजोल्यूशन पिज्जा के सामने सरेंडर कर चुका है। पर हो सकता है कि सबके साथ ऐसा ना हो। आप बताइए कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन अभी तक जिंदा है या नहीं। और अगर आपको मार्क्स देने होते आउट ऑफ 10 सपोज कीजिए, तो आप फिटनेस, सेविंग्स, फैमिली टाइम, मेंटल पीस, सेल्फ केयर को कितने मार्क्स देते इंडिविजुअली, और सबसे इम्पॉर्टेंट खुशियां, उसको 10 में से कितने मार्क्स मिले। कभी कभी हम अचीवमेंट काउंट तो करते हैं लेकिन हैप्पीनेस का स्कोर भूल जाते हैं।

आप जरा ये बताना कि मिड ईयर में कैसा है आपका जनवरी रेजोल्यूशंस का हाल, ये आपको मुझे बताना है। और काफी कॉलर्स के कॉल आए अभी मुझे, अभी सुरैया जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया कि वो तो अपना रेजोल्यूशन बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, लंच में सैलड खा रही हैं, स्वीट्स पे कंट्रोल है, बीन्स बॉयल करके खाया जा रहा है, और उनका मोटिवेशन है कि उन्हें अपने बच्चे के लिए जो है एक्टिव रहना है। आई थिंक मोटिवेशन काफी जरूरी है लाइफ में टू कंटिन्यू एनी थिंग। और आप सब भी अपने हैबिट्स को, अपने रेजोल्यूशन को के पीछे जो मोटिवेशन थी ना, उसको याद कीजिए, तो आप दोबारा ट्रैक पे आ सकते हैं। और फिलहाल मेरे पास एक अमेजिंग ट्रैक है आप लोगों के लिए। कीप लिसनिंग टू फर्नीचर रेडियो 104.9 FM।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutter. Rich, bold, no compromises.
4: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai. New on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao. Flavor hum sambhal lenge.
6: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
9: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
8: कहाँ?
10: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी।
9: और अगर ऑर्डर $20 से ज्यादा हो तो घर बैठे डिलीवरी।
8: ओह वाओ।
10: एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
9: फूडिस्तान इन ऑबरी। Everything they see, one place, one vibe.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
12: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज। दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी। कॉल तो करो 888-888-9914।
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
13: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ। विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर।
14: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

मैंने भी एंट्री मार ली है, पर क्या आपके दिलों में टंग टंग टंग हुई क्या? नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कोशिश जारी रहेगी। आप सुन रहे हैं फनेशर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिम्मी। आज वेंसडे है और वेंसडे को ना अक्सर हम फ्राइडे का इंतजार करने लगते हैं। हमें लगता है कि कब कब आ जाए बस फ्राइडे। और इसी तरह जब हम मिड ईयर में होते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि अब जल्दी जल्दी से ये साल खत्म हो जाए, नई चीज़ें नई साल से शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर साल का आधा हिस्सा निकल भी गया है तो कोई बात नहीं, अभी आधा हिस्सा बाकी है और जो बाकी है वो बहुत कुछ बदल सकता है। 6 महीने पहले जो पॉसिबल नहीं लग रहा था वो अगले 6 महीने में रियलिटी बन सकता है। आप लेट नहीं हो, आप रेस में पीछे नहीं है, आप बस अपनी टाइमिंग से चल रहे हैं भाई। हिम्मत रखिए और होप रखिए, क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत अच्छे अच्छे गाने और कुछ गिव अवेज भी, तो स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग टू फनेशर रेडियो।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी, लेके आई हूँ आपका शो आफ्टरनून अड्डा। और इस मिडवीक ना हम मिड ईयर रिपोर्ट कार्ड के बारे में बातें कर रहे थे और अब उसको कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। समरी सिर्फ इतनी है कि पहले 6 महीने कैसे भी हो, परफेक्ट हो या नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। क्रिकेट मैच के भी कई ओवर्स होते हैं, मूवी कभी कभी इंटरवल के बाद भी काफी इंटरेस्टिंग होती है और जिंदगी का बेस्ट चैप्टर कभी कभी सेकेंड हाफ में लिखा जाता है। तो अपने आप को जज बिल्कुल मत कीजिए, अपने आप को इनकरेज कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए। हर अचीवमेंट प्रमोशन या पेचेक ही नहीं होती, कभी कभी अचीवमेंट सिर्फ इतनी सी होती है कि मैंने पहले से बेटर फील किया, पहले से इम्प्रूव किया। और छोटी छोटी खुशियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों, सो कीप एंजॉयिंग द लाइफ।

अब हम आ गए हैं अपने गिव अवे राउंड में। जी हाँ, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, अगर आपको सही जवाब पता है तो आप मुझे कॉल करके बताएंगे और आप जीत सकते हैं सैल्स नैशविल हॉट चिकन की तरफ से फ्री 3 जंबो टेंडर्स मुफ्त मुफ्त मुफ्त। जी हाँ, तैयार हो जाइए। आज का सवाल है कि ये जो डायलॉग है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये किस मूवी से लिया गया है? अगर आपको जवाब पता है तो आप कॉल कीजिए 972-235-5555 पे और आप जीत सकते हैं सैल्स नैशविल हॉट चिकन के 3 फ्री जंबो टेंडर्स।

0: हमें हमारे गिव अवे राउंड का विनर मिल चुका है। आज हमने आपसे सवाल पूछा था कि ये जो डायलॉग है, ये पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये किस मूवी से लिया गया है, और जवाब है ओम शांति ओम। और आज की लकी विनर है तृप्ति, तो कॉन्ग्रेचुलेशन तृप्ति, आपको मिलता है सैल्स नैशविल हॉट चिकन की तरफ से 3 जम्बो टेंडर्स फ्री। और सैल्स नैशविल हॉट चिकन लेके आए हैं इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज। अगर आप 3 एक्स्ट्रा हॉट जम्बो टेंडर खत्म कर पाते हैं विद इन 10 मिनट्स विद ओनली 1 कप ऑफ मिल्क और नो डिपिंग का टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपको जो है चांस मिलता है फ्री सैंडविचेस जीतने का। जी, अगर आप 1 जंबो टेंडर्स खत्म कर पाए तो आपको मिलेगा फ्री सैंडविच फॉर 7 डेज। अगर आपने 2 जंबो टेंडर्स खत्म कर लिए तो आपको मिलेगा फ्री सैंडविच फॉर 15 डेज। एंड अगर आप वो महारथी निकले जिसने तीनों के तीनों इन्फर्नो टेंडर्स खा लिए विद इन टाइम ऑफ 10 मिनट्स, तो आपको मिलता है ग्रैंड प्राइज विच इज फ्री सैंडविच एवरी डे फॉर अ मंथ 30 days. Isn't this exciting? If you are interested in participating this Inferno Spice Challenge, then you can visit Fun Asia or aap registration kar sakte hain. Ek aur important baat ki ye jo registration hai na for the Spice Challenge of Sal's Natural Hot Chicken, this is फ्री। मतलब आई वुड डेफिनेटली साइन अप फॉर दिस, ऐसे बहुत कम खाने बोने के मौके मिलते हैं। और इफ़ यू आर अ चिकन फैन, इफ यू आर you know a non-vegetarian and you enjoy eating chicken, so this is one of the best challenge to be a part of. What are you waiting for? Aap hame bhi call karke register kar sakte hain aur Fun Asia pe bhi kar sakte hain, and inke website pe jo inka restaurant ka website hai us pe bhi kar sakte hain. This is happening on 6th June, which is Saturday, 4 PM. And for good music, stay tuned with Fun Asia Radio. We will be right back after this break. You are listening to RJ Simmi.
1: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
2: Paid for by Mark Hill for Mayor.
3: Please don't say your usual place.

आप सुन रहे हैं फनेशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी आपके अपने फेवरेट शो के साथ विच इज आफ्टरनून अड्डा। अभी स्टूडियो में टाइम हो गया है 1:40 और अब मैं लेके आई हूँ आज का वेदर अपडेट। जी हाँ, आज नॉर्थ टेक्सास व्हिच इज लाइक डैलस में गर्मी और ह्यूमिडिटी दोनों का कॉम्बो देखने को मिलेगा। दिन भर आसमान में बादल और धूप का मिक्स रहेगा और टेम्परेचर लगभग 89-90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच सकता है, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से फील टेम्परेचर mid-90s तक महसूस होगा। शाम के वक्त कुछ आइसोलेटेड शावर्स या पॉप ऑफ थंडरस्टॉर्म डेवलप हो सकते हैं, इसलिए अगर आप ऑफिस या कॉलेज से घर लौट रहे हैं या आउटडोर का प्लान बना रहे हैं तो वेदर अपडेट्स पे नजर जरूर रखिएगा। कुछ जगहों पर तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। रात तक टेम्परेचर गिर के करीब 72 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आ जाएगा और मौसम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, तो मुझे मोटा मोटी ये कल की तरह ही लग रहा है। और ये जो वेदर फॉरकास्ट था ना, दिस वॉज brought to you by Malabar Golds and Diamonds, और आप उनके कलेक्शन जरूर देखें, नए नए डिजाइन आए हुए हैं फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। और मीनवाइल कीप एंजॉयिंग द रिमिक्स ऑफ ऊंचा लंबा कट।

यस इट इज, मतलब अच्छे खाने का इतना मन करता है कि ये एक जिंदगी तो काफी नहीं है। और अच्छा खाना, टेस्टी खाना की बात करें तो पेस्ट्री ईटरी की एकदम याद सी आ जाती है कि वहाँ पे जो फ्लेवरफुल चाट मिलता है ना, फ्यूजन बाइट्स, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स। अगर आप अभी तक पेस्ट्री ईटरी नहीं गए हैं तो यू आर सीरियसली मिसिंग आउट ऑन समथिंग इन लाइफ, क्योंकि यहाँ पे बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मिलता है मॉडर्न फ्लेवर के साथ। आप यहाँ ब्रंच के लिए जा सकते हैं, लंच के लिए जा सकते हैं, डिनर के लिए जा सकते हैं, डेट नाइट के लिए जा सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ अगर एक फूडी मीटअप करना है तो भी जा सकते हैं। पेस्ट्री लेके आता है परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर, एनर्जी और वाइब्रेंट वाइब्स। ये लोकेटेड है एट हब 121, और अगर आपको इसके मेन्यू और दूसरी जानकारी चाहिए तो आप इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज page3eatery.com।

हमारी परम सुंदरी यानी जो कृति सैनन है वो आजकल हर जगह छाई हुई हैं। जी हाँ, फ्रॉम दी मूवी मिमी, जहाँ की वो परम सुंदरी के सॉन्ग की वजह से काफी पॉपुलर हुई थी, टिल टुडे विद कॉकटेल 2, जहाँ की वो माशुका बन चुकी है। मतलब उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफी चार्मिंग है, आई लव हर पर्सनैलिटी, बहुत ही अमेजिंग अदाकारा है। और ऐसे और अमेजिंग सॉन्ग्स लेके आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको कनेक्टिंग अमेरिका के बारे में बता दूं, क्योंकि ये लाए हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां आप अपने बिजनेस एक्सपेंस को कन्वर्ट करते कर सकते हैं एज अ पावरफुल इनकम स्ट्रीम। जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये होम ओनर्स को भी हेल्प करते हैं अपने मॉर्टगेजेस क्लियर करने में विद इन 10 ईयर्स या फिर उससे भी कम समय में। तो किस बात का इंतजार है, कॉल कीजिए जेम्स को एट 3218887345 या फिर विजिट कीजिए connectingamericafinancials.com। और ये जो है लेके आते हैं इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी टू बूस्ट योर बॉटम लाइन। वील बी बैक आफ्टर द सॉन्ग एंड द ब्रेक। कीप लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
5: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
4: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
5: ओके देन, Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
4: And what's so special at Neon Cactus?
5: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
4: Not bad.
5: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
4: Okay, this I didn't expect from you.
5: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Yaar, boss ne fir se daant diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
9: ये क्या होता?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
12: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
13: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So, is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
19: Abhe jaldi bol, kal subah Panvel nikalna hai.
20: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: दिस सॉन्ग वॉज फ्रॉम ये जवानी तो इश्क होना है. जी हाँ, वरुण धवन लेके आ रहे हैं एक नई मूवी एंड दे हैव रीमिक्स्ड चुनरी चुनरी. आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो और मैं हूँ आरजे सिमी आपके साथ लेके अपना शो आफ्टरनून अड्डा. और अभी हम आ गए उस सेगमेंट में जहाँ एक और गिव अवे बस आपका इंतजार कर रहा है. अगर आपको मेरे सवाल का सही जवाब पता है तो आपको कॉल करके बताना है और आप जीत सकते हैं $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. तो क्या तैयार हैं आप? पूछूं मैं सवाल? ठीक है, तो जो सवाल है वो रिडल है. मैं आपसे वो पूछ रही हूँ और आपको बताना है कि वो क्या है. मैं बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना आंखों के रोता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? फिर से रिपीट करती हूँ. मैं बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना आंखों के रोता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? जवाब अगर आपको पता है तो कॉल कीजिए 972-235-5555 पे.
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

मुझे लगता है कि हम सबको रिडल्स काफी पसंद आ रहे हैं, मतलब आप सब भी मेरी तरह रिडल्स के दीवाने हैं और आई एम सो सरप्राइज कि हर किसी ने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन था कि मैं बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना आंखों के रोता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ, और इसका सही जवाब है बादल यानी कि क्लाउड। और आज की हमारी लकी विनर है ऋतिका जोशी, आपको मिलता है $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनको फन पिज्जा किचन के बारे में नहीं पता है उनको बता दूं कि यहाँ पे है ना आपके लिए एकदम एक स्लाइस वेट कर रहा है, बस कि आप आइए और उसको खा जाइए। अगर आप वेजी लेवर हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं अचारी पनीर पिज्जा, जो कि मिक्स है, उसकी जो टैंगी अचार पंच है ना सॉफ्ट पनीर्स, वो ऐसे स्पाइसी मैजिक में घुल के क्या मसालेदार एकदम टेस्टी सा पिज्जा बनता है उसका। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मीट लवर्स हैं, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है तंदूरी चिकन पिज्जा, जो कि स्मोकी परफेक्शन है, स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर ओन टेस्ट बर्ड्स। अगर आपको बहुत ज्यादा मसालेदार पसंद है या फिर आपको ब्यूटीफुली बैलेंस स्लाइस पसंद है, फन पिज्जा किचन इज द राइट स्पॉट फॉर यू अगर आपको पिज्जा खाना है तो। और इसके अगर आपको डिटेल चाहिए, मेन्यू के बारे में जानना है, तो आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं विच इज funpizzakitchen.com। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर टुडेज विनर विच इज ऋतिका, एंड थैंक्स टू एवरीवन फॉर participating.

0: विद दिस माई शो कम्स टू एन एंड. आज का आफ्टरनून अड्डा आई होप आप सबको पसंद आया हो. दिस सेगमेंट वॉज ब्रॉट टू यू बाई ओमर ख्वाजा विद द ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट. अगर आप या आपके कोई जानकार किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में फंस गए हैं, किसी स्लिप या फॉल इंसिडेंट में हेल्प चाहिए उनको, तो आप अटर्नी ओमर ख्वाजा को रीच आउट कर सकते हैं बिकॉज ही विल हेल्प fight your case and get you your due compensation. और कभी कभी है ना, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह के साथ डील करना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, लीगैलिटी स्ट्रेसफुल होती है, पूरा प्रोसेस स्ट्रेसफुल होता है, और वो ना ऐसे कोशिश करते हैं कि आपको पूरा कॉम्पनसेशन ना मिले. तो उन केसेस में अटर्नी ओमर ख्वाजा और उनकी टीम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको तब तक पे नहीं करना है जब तक कि आप केस नहीं जीत सकते. इससे बड़ी बात अबाउट क्या हो सकती है. अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए फ्रॉम अटर्नी ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम, तो आप कंसल्ट कीजिए एट 4693005046 या फिर विजिट कीजिए attorneyomer.com. और जैसा कि मैंने बताया कि अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है. कल मिलूंगी आपसे इसी समय 12:30 से 2:30 बजे तक. तब तक टेक केयर, गुड डे.
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
4: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.

0: मेरी गाड़ी में बैठ जा।
1: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
2: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
3: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
4: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डालस। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
3: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
1: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
3: वेट, व्हाट?
6: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
7: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
6: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
5: हे डैलस, स्टिल परफॉर्मिंग ओनली फॉर योर बाथरूम मिरर और द फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio sun rahe hain aap. Main hoon Kiran aapke saath. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Thank you so much for connecting with me this afternoon. Lekar aati hoon aapke liye drive time with Sunehri Kiran every Monday through Friday. 2:30 baje se 5 baje tak aapke saath rehti hoon aur har roz hamare paas hota hai ek naya flavor aur aaj kafi kuch hai ji. 2:30 baje se leke 3 baje tak we are going to dive into some romantic melodies. बस दिल किया आज रोमांस को सेलिब्रेट करने का. 3 बजे से 4 बजे, एक्चुअली 3 से 3:30 तक लेके आऊंगी आपके लिए पॉप फ्रीक्वेंसी विच विल बी पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक. 3:30 टिल 4 p.m. वी विल टॉक अबाउट द टॉप ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ पाकिस्तान. आपको हमेशा बताती हूँ टीआरपीस के लिहाज से कौन से ड्रामास रेट कर रहे हैं टॉप पे. और फिर 4 o'clock onwards आपके लिए लेकर आऊंगी ट्रॉफी ट्रैक्स, कुछ अवार्ड विनिंग फिल्मों के अवार्ड विनिंग गाने. बहुत कुछ है आपके लिए लाइंड अप एज ऑलवेज राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद द सुनहरी किरण.

जी, आरजू नहीं है मुझे किसी और की, एक तुम ही काफी हो मुझे उम्र भर के लिए। कुछ ऐसी ही थीम है आज इस आधे घंटे, अब 20 मिनट रह गए हैं। द यू नो द मेलोडीज ऑफ रोमांस इज व्हाट आई एम प्लेइंग फॉर यू बैक टू बैक। अनदर वन इज लाइंड अप, बट बिफोर दैट, अगर आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोमांटिक इवेंट आ रहा है, कोई एंगेजमेंट है आपकी, एनिवर्सरी, यू हैव अ सेलिब्रेशन, यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ, देन मालाबार गोल्ड एंड डायमंड इज द प्लेस टू गो। प्रेस्टन रोड पे लोकेटेड है फ्रिस्को में, द डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी। एलिगेंट, टाइमलेस और बिल्कुल जबरदस्त पीसेस आपको मिलेंगे, ब्यूटीफुल रिंग्स, इयररिंग्स, डाजलिंग नेकलेसेस, कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स, मतलब जो कुछ भी आपको पसंद है। और जो बेहतरीन बात है वो ये है कि उनकी ऐप भी अब अवेलेबल है, तो अपने ऐप स्टोर्स पे जाइए, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की ऐप डाउनलोड कीजिए और चेक आउट देयर लेटेस्ट कलेक्शन, अपडेट्स एंड मोर डिटेल्स। दिस इज रोमांटिक मेलोडीज राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण।

जी हाँ, इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं. सुन रहे हैं आप दीज रोमांटिक मेलोडीज राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. आई हैव सम ब्यूटीफुल नंबर्स लाइंड अप फॉर यू टिल 3 PM बिफोर वी एंटर इनटू पॉप फ्रीक्वेंसी. एंड अगला गाना रंग जाऊं से ही एक बड़ा ही प्यारा मुझे गाना तनु विद मनु का याद आया, वही आपके लिए प्ले करूंगी. बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू दिस पार्ट ऑफ आर शो इज ब्रॉट टू यू बाय AG फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द USG. ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल services with untapped potentials, individual as well as business owners. Har entity ko help karte hain, support karte hain. They are trusted, efficient, and they get you ready for your future. You have any questions, give them a call. 469-942-9888. Ya phir unki website visit kijiye, which is agfintax.com.

ऐ रंगरेज इश्क, कुछ ऐसा रंग दे मुझे कि तेरे बाद भी तेरी खुशबू में जी सकूं। कुछ ऐसे ही खूबसूरत गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ, ब्यूटिफुल रोमांटिक मेलोडीज राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण। विद द नेक्स्ट सॉन्ग वी आर गोइंग टू हेड ऑन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आप H1B, F1 या फिर L1 वीज़ा या फिर कोई भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे आप हैं एंड यू आर प्लानिंग योर पैथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, तो द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता आर हेयर टू हेल्प यू। अटर्नी सीमा मेहता और उनकी एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज करती है जी एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीजा, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजा, परम लेबर सर्टिफिकेशन, US सिटीजनशिप, जो कुछ भी आपके इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी आपका वो है, तो द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता एंड देयर टीम इज हेयर टू हेल्प यू। तो यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपको ये सुन के कोई सवाल आपके जहन में आया है तो मैं आपको ईमेल आईडी देती हूं, आप उस पर अपना सवाल लिख के भेजिए एंड देयर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। दैट ईमेल आईडी इज info@seemamehtalawfirm.com. Once again, that email ID is info@seema mehta lawfirm.com. And this is Apna Banale.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
4: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
5: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury Brilliance Celebration, Tanmay Jewelers in Irving.
6: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
7: Because you don't travel with Lawson. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, Lawson Travel. For nearly 30 years, Lawson Travel has been helping families plan stress-free international trips with the best airfares, vacation packages, cruises and customized travel solutions. Lawson Travel makes every journey smooth, affordable and tension-free. Call now 214-631-24 458 or visit lawsontravel.com.
8: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
9: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
10: Zindagi ek safar hai suhana. यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
11: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़र स्वीट 205 फ्रिस्को।
12: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
13: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
12: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
14: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
15: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
13: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
16: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
17: Dallas की धड़कन 104.9 FM, Fun Asia Radio.

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for tuning in this afternoon drive time with Sunehri Kiran. Sun rahe hain aap 2:30 PM till 5 PM. Aur abhi 2:30 se 3 tak we played some beautiful romantic melodies and now we are in pop frequency. Kuch Pakistani pop music aapke liye play karungi aur uske baad leke aungi aapko top 10 trending dramas of the week pe. Aur aaj ka jo ye segment ka aagaaz hai ye karenge ji Ali Haider ke naye gaane ke sath. Unka ek naya gaana आया है दिले रंगीन विच इज काइंड ऑफ ऑन द लाइंस ऑफ पुरानी जीन्स और गिटार सो लेट अस लिसन टू दिस ब्यूटीफुल नंबर बहुत सारे व्यूज और बहुत पसंद किया जा रहा है राइट नाउ ऑन यूट्यूब

जी हाँ, और अगर आप एक बहुत ही एविड शॉपर हैं या फिर यू आर अ स्टोर ओनर, सो दिस वन इज फॉर यू. रवि इम्पोर्ट्स वेयर हाउस ब्रिंग्स यू देयर समर किक ऑफ. जी हाँ, ये होगा जी, अपने अपने कैलेंडर्स मार्क कर लीजिए. जून 3rd यानी कि आज से शुरू हो चुका है. आज और कल अभी भी जाइए आप, अगर आप सुन रहे हैं तो फौरन गाड़ी मोड़िए और चले जाइए जी रवीज इम्पोर्ट वेयर हाउस पे, जो कि लोकेटेड है हैरी हाइंस बुलेवार्ड पे, 11029 हैरी हाइंस बुलेवार्ड, बिल्डिंग ए, डालस टेक्सस 75229. और यहाँ क्या हो रहा है आज और कल, 5 बजे तक, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, दिस इज a place where shopping will be bigger and better and it is going to turn into a tropical experience. Extra crazy deals hain, new product launches hain, free gifts aapko milenge all day long. You will have an opportunity of meeting with vendors, you will discover best sellers as well as stock up like you have never stocked before. To ye hai ji Ravi's Import Warehouse, aur in pe aap visit kijiye. Once again, aaj aur kal subah 9 baje se leke sham 5 baje tak ye kick off सेल जो है वो आपके लिए जारी है. सो अगर जैसे मैंने कहा, अगर आप सुन रहे हैं, यू आर समवेयर क्लोज बाय और यू आर लुकिंग टू शॉप समथिंग, गो टर्न योर कार्स एंड विजिट रवि इम्पोर्ट्स वेयरहाउस लोकेटेड ऑन 11029 हैरी हाइंस बुलेवार्ड.

कुछ गानों को सुना जाए तो बस बंदा कहता है कि ये चलता ही जाए गाना और हम उसे सुनते ही जाए. एंड दिस आफरीन आफरीन जो कि राहत फतेह अली खान साहब का वर्जन आप सुन रहे थे विद मोमिना मुस्तहसन आई थिंक. जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत वर्जन ऑफ आफरीन आफरीन. विद दैट आगे बढ़ रही हूँ जी, और आपको बताती चलूँ कि अगर आप सोच रहे हैं, ग्लासेस पहनते हैं आप या कॉन्टैक्ट लेंसेस पहनते हैं, एंड यू वॉन्ट से गुड बाय टू देम, देन हैज समथिंग दैट यू मस्ट नो, जो आप शायद कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है. तो दिस इज व्हाट यू नो दैट लेसिक इज जस्ट वन ऑफ द सेवरल विजन करेक्शन ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टुडे. एंड डॉक्टर शहजाद बाटलीवाला जो कि अ फेलोशिप ट्रेन्ड आई सर्जन हैं और फाउंडर हैं विजनरी आई इन प्लेनो के, हिज अप्रोच इज वेरी सिंपल. ही विल एजुकेट यू फर्स्ट सो दैट यू कैन मेक द डिसीजन फॉर योर आईज विद कॉन्फिडेंस. अगर आप मजीद जानना चाहते हैं अपनी ऑप्शंस के बारे में, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट इफ यू आर अ true candidate of this, then please give them a call. That number is 214-972-2020. 214-972-2020 पे आप कॉल कीजिए, और आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं विच इज lasik-plano.com, lasic-plano.com. और बिल्कुल मत भूलिएगा टू मेंशन फन एशिया 2020 टू रिसीव अ फ्री कंसल्टेशन. सो फन एशिया 2020 इस्तेमाल कीजिए, फ्री कंसल्टेशन हासिल कीजिए, और जानिए कि क्या लेसिक या ये टेक्नोलॉजी आपके लिए सही है या नहीं. दिस इज विजनरी आई, दे आर हेल्पिंग यू सी योर फ्यूचर more clearly. और अब हम इस गाने के साथ आगे बढ़ रहे हैं. आई एम प्लेइंग सम ब्यूटिफुल पॉप म्यूजिक फॉर यू, थ्री विद अबाउट टू मोर सॉन्ग्स दैट आई विल प्ले फॉर यू, एंड विद दैट वी विल गो ऑन अ ब्रेक, एंड देन आई विल ब्रिंग यू द टॉप 6 or 10 ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ पाकिस्तान. दिस इज अब्रार. एक्चुअली लेट्स प्ले दिस, यू नो, जवाद अहमद बिन तेरे क्या है जीना.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
1: Documents या parcel भेजनी है?
3: हाँ।
1: घर relocate करनी है?
3: हाँ।
1: गाड़ी भी transport करना है?
3: हाँ भाई हाँ।
1: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर।
4: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
5: मामू देखो क्या हो गया।
6: ओ क्या हो गया?
5: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
6: ओए जर्मन का कमाल है।
5: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
6: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं, और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
2: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस। हे मैप्स, टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर।
7: कैलकुलेटिंग राउट, रीराउटिंग।
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
7: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
2: क्यों?
7: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली

0: आर फोर्ट वर्थ
1: क्यों?
0: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
1: अच्छा तो सीधा वही ले चलो
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट
0: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
4: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगा एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर।
5: वेट इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो।
7: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
8: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
9: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
10: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
11: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
1: विजिट psychicramnath.com। कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
12: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
13: यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ओनली वन नेम पॉप्स अप, एजी फिनटैक्स। दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग, फाइल स्मार्ट, फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस एंड एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स। साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना, दैट्स आवर कमिटमेंट। तो इस बार डिले क्यों? कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com। ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स। प्लान टुडे, प्रॉफिट टुमारो।
14: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.
15: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल Fun Asia 104.9 FM।

जॉम्बी थ्रिलर मूवी डायरेक्टेड बाय नबील कुरैशी. अगर आपने नहीं देखी तो जरूर चेकआउट कीजिए. फहद मुस्तफा एंड मेवश हयात एब्सोल्युटली रॉक इन जॉम्बीड.

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 एफएम फनीशर रेडियो. बिल्कुल सही जगह पे ट्यून इन है आप. चैनल चेंज मत कीजिए. वो गाड़ी में हमारे चैनल्स ही होते हैं आई गेस, उनको चेंज मत कीजिए. बहुत कुछ है मेरे पास अभी लाइंड अप. और इस गाने के बाद मैं आपको लेके जाऊंगी जी टॉप 6-10 ट्रेंडिंग ड्रामाज फॉर वीक 22 जो कि लास्ट वीक था. लेकिन जो गाना मैं इस वक्त आपके लिए प्ले कर रही हूँ दैट इज टेकन फ्रॉम द मूवी जॉम्बीड. जी हाँ, फरहा ये है जी फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात एज वेल एज बाबर अली के ऊपर पिक्चराइज ये नई मूवी जो कि रिलीज हुई है अभी 2026 में, विच वॉज रिलीज ऑन 27 मई. एक्चुअली दिस इज

राइट, ये जो गाना था फिल्म जॉम्बीड से आप सुन रहे थे और ये गाया है समर जाफरी ने. अब समर जाफरी का आप सोच रहे होंगे कि नाम कुछ सुना सुना सा है. जी हाँ, ही इज द गाय जिन्होंने अभी मायरी जो कि 2023 में ड्रामा आया था, वेरी पॉपुलर ड्रामा, उसमें फाखिर जहीर का किरदार अदा किया ऑन ARY डिजिटल. और अभी एक और बहुत पॉपुलर ड्रामा आया, एवरीबडी लव्ड इट, दैट वाज परवरिश, जो कि ARY डिजिटल पे आया था 2025 में, जिसमें वली जहांगीर का किरदार इन्होंने अदा किया था, ऐना आसिफ के ऑपोजिट थे ये. एंड ही इज डेफिनेटली, और वो जो परवरिश था उसमें उन्होंने सिंगर का ही किरदार अदा किया था. और नाउ दिस फहद मुस्तफाज मूवी, दिस सॉन्ग जरा जरा, जो कि समर जाफरी की आवाज में आप सुन रहे थे. एंड विद दैट वी आर हेडिंग ऑन टू द टॉप 6 एक्चुअली ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ पाकिस्तान लास्ट वीक. अच्छा जी, ये जो वीक 22 था, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि दिस वॉज मे 25th टिल मे 31st. और छठे नंबर पे जो ड्रामा ट्रेंड करा या जिसने TRPs पे अपनी जगह बनाई, दैट इज जंजीरें, जो कि हमें नजर आता है हम टीवी पे. फरहत इश्तियाक का लिखा हुआ ये ड्रामा, सज्जल अली, एहसन खान, सहर हाशमी, दानियाल जफर एंड मच मोर, ब्यूटीफुल स्टार कास्ट है इस ड्रामे की. और ये जो है, इट्स अ रोमांटिक एंड अ सोशल ड्रामा, जो कि ऑफकोर्स हम टीवी पे आपके लिए नशर किया जाता है, मोमिना दुरैद की प्रोडक्शन. पांचवें नंबर पे जो ड्रामा रहा वो है हमराही. पीपल आर एक्चुअली गिविंग मिक्स्ड रिव्यूज, जो कि दानिश तैमूर के बहुत डाई हार्ट फैंस हैं, वो तो हमराही को पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन बहुत सारे लोग जो जिनको ट्विस्ट अच्छा नहीं लगा कि उनकी जो पहली वाइफ थी और क्या हुआ उनके साथ, मैं आपके लिए स्टोरी यू नो एक्सपोज नहीं करना चाहती, बिकॉज अगर आप देख रहे हैं एंड यू हैवंट रीच दोज एपिसोड्स, आई डोंट वॉन्ट टू बी गिव यू अ स्पॉइलर और एनीथिंग, बट देर आर मिक्स्ड रिव्यूज. बट स्टिल द ड्रामा हैज़ मेंटेन्ड इट्स पोजिशन एट नंबर 5 दिस वीक. और चौथे नंबर पे जो ड्रामा था लास्ट वीक वो था जी शैदाई. और शैदाई ड्रामा फिरोज खान और सहर हाशमी इसमें हमें नजर आ रहे हैं. एवरी वेंसडे एंड थर्सडे 8 PM को आता है, विच रिवॉल्व्स अराउंड फिरोज खान, हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ अली खान, एक रिलेंटलेस ड्रिवन अचीवर हैं, जो कि यू नो ही इज यूज्ड टू गेटिंग व्हाट ही वांट्स एंड देन ही मीट्स दिस गर्ल हु इज नॉट यूज्ड टू गिविंग पीपल व्हाट दे वांट एंड देन हाउ द स्टोरी गोज ऑन, दैट इज द स्टोरी ऑफ शैदाई. सो हम बढ़ रहे हैं इस गाने की अगले गाने की तरफ, और वहां से जब हम वापस तो मैं आपको बताऊंगी द टॉप 3 ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ पाकिस्तान लास्ट वीक.

All right, and now we are heading on to the top three trending dramas last week, which is week 22nd, 25th May se 31st May, tak kaun se dramo ne kiya स्क्रीन पे राज. और जी तीसरे नंबर पे जो ड्रामा है वो है लीडर. बड़े दिनों बाद लीडर जो है वो मुझे हाई चार्ट्स पे नजर आया है. दिस ड्रामा इज एन हाई ऑक्टेन पॉलिटिकल थ्रिलर कंबाइंड विद यू नो फॉरबिडन रोमांस. ऑफ कोर्स हम टीवी पे ये ड्रामा शायद होता है. स्ट्रॉन्ग कास्ट है इसके अंदर, जैसे कि किंजा हाशमी एज वेल एज अली रजा. अली रजा इज एन एब्सोल्यूट स्टार, अ ग्रेट एडिशन टू द ड्रामा इंडस्ट्री. सैटरडे और संडे को 8 बजे आता है हम टीवी पे. और इसके जो राइटर हैं वो हैं जी राधेन शाह, जिनको काफ़ी पॉपुलरिटी मिल रही है फॉर द काइंड ऑफ, वो कहते हैं ना, एक्सप्लोजिव ड्रामा जो उन्होंने लिखा है. सो दिस इज द ट्रेंडिंग ड्रामा नंबर 3 लास्ट वीक. अब लीडर की बात हो रही है तो मैं आपके लिए लीडर का लगाने लगी हूं ऑफिशियल साउंड ट्रैक. कहां गया, अभी तो निकाल के रखा था.

Well, that was taken from Leader, the official soundtrack of drama serial Leader. And now the second number pe jo drama trend kiya week 22nd mein, that is ye drama bahut hafton se number 1 pe tha aur har baar har hafte mein aapko batati thi ki ji apni jagah maintain kar rakhi hai isne, lekin ek naya drama aa chuka hai jisne is ड्रामे की जगह ले ली. और वो कौन सा ड्रामा है वो तो आपको नंबर 1 पे बताऊंगी, लेकिन नंबर 2 पे है डॉक्टर बहू. ARY डिजिटल पे फ्राइडे एंड सैटरडे को 8 PM ये ड्रामा आता है जी. महरीन जब्बार ने इसे डायरेक्ट किया, सनम मेहदी जरियाब ने इसे लिखा. कुबरा खान प्ले कर रही हैं डॉक्टर बहू का किरदार, ऑफकोर्स शुजा असद उनके हस्बैंड का किरदार अदा कर रहे हैं, शहजाद नवाज, सबा हमीद एंड मैनी मोर ब्यूटिफुल कैरेक्टर्स जो कि इस ड्रामे में हैं. वेरी वेल लेड आउट स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर who gets married to a doctor family and then kis tarah se wo ladki jo hai wo apni identity ko maintain karne ki koshish kar rahi hai as a wife, as bahu, as a doctor. There's so much that goes on in a woman's life, to wo khud hi hum log juggle karte rehte hain apni life mein, but that is the story of this drama. This is Dr. Bahu airing on ARY Digital Friday and Saturday 8 PM.

And the top number one drama that trended last week with amazing TRPs is Bas Tera Saath Ho. जी हाँ, बस तेरा साथ हो, जिसमें हमें नजर आ रहे हैं फरहान सईद और सना जावेद. और जी, ये आता है ARY डिजिटल पे मंडे और ट्यूसडे को रात 8 बजे. आजकल ड्रामा एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंचा हुआ है और चारों तरफ यही बात हो रही है, बस तेरा साथ हो एंड द क्यूरियस केस ऑफ वायरल वीडियोस, क्योंकि वायरल हो गई हैं कुछ वीडियोस और जिसकी वजह से तहलका मचा हुआ है ड्रामे के अंदर. अगर आपने बस तेरा साथ हो देखना शुरू नहीं किया तो इट इज टाइम नाउ टू स्टार्ट वॉचिंग इट. बड़ी ही इंटरेस्टिंग मोड पर ड्रामा खड़ा है एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब जो मेन लीड्स हैं उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है. और अनस, जिनकी अब ओपनली, जो फरहान सईद है, उनकी ओपनली लड़ाई हो चुकी है अपनी फैमिली से, अब वो कहां जाएंगे और क्या होगा उनकी जिंदगी में. मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी फुप्पो के साथ चले जाने वाले हैं. कुछ तो होने वाला है, मतलब देयर इज समथिंग मेजर दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिस ड्रामा. दिस इज बस तेरा साथ हो, ट्रेंडिंग ऑन नंबर वन लास्ट वीक, द बेस्ट ट्रेंडिंग ड्रामा लास्ट वीक. अच्छा जी, इसके साथ हम बस तेरा साथ हो की ऑफिशियल साउंड ट्रैक से इस सेगमेंट का कर रहे हैं इख्तिताम. मैं लेके जा रही हूं आपको ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आकर हम करेंगे ट्रॉफी ट्रैक्स, कुछ आउटस्टैंडिंग अवार्ड विनिंग फिल्मों के अवार्ड विनिंग गाने आपके लिए लेके आऊंगी. दैट विल बी प्योरली बॉलीवुड फॉर यू.

0: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं हूँ किरण आपके साथ. This is your afternoon drive time with सुनहरी किरण. और जी घंटा और है मेरा आपके साथ. लेके आई हूँ आपके लिए ट्रॉफी ट्रैक्स, कुछ अवार्ड विनिंग फिल्मों के अवार्ड विनिंग गाने. आप सब हैं अवार्ड वर्दी और इसीलिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए गिव अवे. दिस इज कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण, ब्रॉट टू यू बाय नियॉन कैक्टस. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने जबरदस्त मेक्सिकन फ्यूजन खाना खाना है तो नियॉन पैक कैक्टस इज द प्लेस to go. Fresh ingredients, zabiha halal options, plenty of vegetarian options as well. Or sabse important baat, they are packed with bold flavors as well as amazing vibes. Young, colorful, modern, full of energy. So it is perfect for hangouts. Agar aapne date nights karni hai ya phir you're looking to make that, wo kehte na aaj mera chill karne ka plan, so make a chill plan. So Neon Cactus is the place for you to go. And the best part is top it off with curated cocktails, refreshing mocktails, happy hour Monday to Friday and special deals every day. तो अब क्या आया है आपके लिए नियॉन कैक्टस की तरफ से, $20 का गिफ्ट कार्ड फॉर डाइन इन ओनली. तो आप जो है अगर विनर होंगे तो आपको डाइन इन करना होगा और आपको $20 का गिफ्ट कार्ड या डिस्काउंट मिलेगा अपने बिल पे जी. तो ये तो हो गया जबरदस्त आपके लिए गिव अवे, लेकिन आपके वो उसके लिए कॉल करना पड़ेगा. क्योंकि हम ट्रॉफी ट्रैक्स कर रहे हैं तो मुझे कॉल करके बताइए ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपको लगता है कि उसको उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली अवार्ड सेरेमनीज में, या कौन से एक्टर हैं. ये आपके ऊपर कॉल है कि आप क्या बात करना चाहते हैं. कोई एक्टर, कोई फिल्म जो आपको लगता है कि बहुत ही अच्छी थी लेकिन अवार्ड सेरेमनीज में उन एक्टर को इतनी अटेंशन नहीं मिली या उन फिल्मों को इतने अवार्ड्स नहीं मिले, या फिर कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको लगता है कि वाकई बेहतरीन थी and it deserved all the awards that it got. 972-235-5555 is the number to the studio. This is Conversation Corner brought to you by Neon Cactus. Kar lijiye phone na, line ek buzz ho rahi hai. Funasia Radio, you are live on air. What is your name?
1: Yes, my name is Priya.
0: Ji Priya, bataiye.
1: I feel like not that movie, I forgot the name of it, sorry.
0: क्लू दे दे, हम नाम बता देंगे आपको.
1: दावत इश्क.
0: दावत,
1: आई डोंट नो इफ इट वाज वेरी पॉपुलर और नॉट, बट आई फील लाइक दैट मूवी रियली डिजर्व्स, यू नो, दैट इट डिडंट गेट.
0: ऑल राइट, परफेक्ट. दावत इश्क में हमें नजर आए थे परिणीति चोपड़ा और आदित्य रॉय, राइट?
1: जी.
0: ओके, परफेक्ट. थैंक यू सो मच प्रिया, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म का नाम बताया एंड आई काइंड ऑफ अग्री विद यू दैट वाज अ वेरी वेल नरेटेड फिल्म. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. कीप लिसनिंग, आई विल अनाउंस द विनर इन अ बिट. ऑलराइट जी, प्रिया ने हमें एक मूवी बताई दावते इश्क, जो कि वो सब पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाई जो उसे करनी चाहिए. फनीश रेडियो, यू आर लाइव इन एयर, व्हाट इज योर नेम?
2: हाय, माय नेम इज श्रीराम. आई वांट टू टॉक अबाउट दिस मूवी कॉल्ड तीन दीवाने.
0: ओके,
2: तीन दीवारें, दीवारें एज इन वॉर.
0: जी जी जी, तीन दीवारें. ओके,
2: तो लुक्स लाइक आपने भी नाम नहीं सुना है.
0: नहीं, मैंने बिल्कुल ये नाम सुना हुआ है जी. इसमें जैकी श्रॉफ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
2: एग्जैक्टली, जैकी श्रॉफ, जूही चावला, नागेश कुकुनूर.
0: जी जी जी,
2: आई थिंक इट वॉज एन अमेजिंग मूवी. इट वॉज अडाप्टेशन ऑफ शॉशैंक रिडेम्पशन इन हिंदी, बट आई थिंक मूवी शायद इसलिए इतनी हिट नहीं थी क्योंकि इसमें कोई गाना नहीं था, तो लोगों को पता ही नहीं चला था भाई कब चली गई. बट अगर आपने देखी है तो दिस वाज वन ऑफ वेरी गुड हिंदी मूवीज. ऑफ कोर्स
0: आपने शॉशैंक रिडेम्पशन का नाम लेके मुझे इंट्रीग कर दिया. नाम तो मैंने मूवी का सुना हुआ है, बट आप सही कह रहे हैं, मैंने देखी नहीं है वो मूवी. बट शॉशैंक रिडेम्पशन का आपने नाम लिया, आई यू मतलब इज इट रियली अ लाइक फुल फ्लेज कॉपी या इज इट लाइक व्हाट इंस्पिरेशन?
2: अडैप्टेशन, आई वुड से इट्स एन इंडियन अडैप्टेशन. अगर आप देखेंगे तो, और आपने शॉशैंक रिडेम्पशन फॉर श्योर देखी है, तो यू विल नो लाइक
0: ओके लवली. That is a great recommendation. Thank you so much, Sriram. सुनते रहिए, I'm going to announce the winner in a bit. जी हाँ, आप लोग ऐसे कमाल कमाल की चीजें हमें बताते हैं कि मुझे बड़ा मजा आता है आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन कॉर्नर करने में. फाइनेंशियल रेडियो, यूर लाइव नियर, व्हाट इज योर नेम?
3: यशु.
0: जी यशु, बताइए.
3: आई थिंक कर्फी इज वन ऑफ द मूवीज जिसको इतना अवार्ड नहीं मिले, एंड प्रियंका चोपड़ा एंड रणवीर कपूर एंड I don't remember the other actor, but I think they deserve more appreciation and more awards for that movie.
0: एब्सोल्युटली एलियाना डी क्रूज थी इसके अंदर. वैसे तो मेरा ख्याल है कि बर्फी को बहुत सारी नॉमिनेशंस मिली थी आईफा पे भी और भी बहुत सारे अवार्ड्स पे और बहुत सारे अवार्ड्स इसने जीते भी थे. बट थैंक यू सो मच यशु फॉर रिमाइंडिंग अस ऑफ द मूवी बर्फी. ओके जी लास्ट कॉलर है, उसके बाद हम एक गाना सुनेंगे और फिर वापस आएंगे. रेडियो की आवाज कम कर दीजिए. अपना नाम बताइए.
4: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए.
4: हाय रीमा.
0: जी रीमा बताइए.
4: आई थिंक लव ब्रेकअप और जिंदगी.
0: ओह
4: लव काफी अच्छी पिक्चर थी. दैट्स अ मूवी कैन वॉच ऑल द टाइम. उसको बिल्कुल रिकॉग्निशन नहीं मिला.
0: ओके सो अगर आप अवार्ड देने वाली होती तो उसकी क्या, उसको क्या अवार्ड देती है, किस किस्म का अवार्ड देती है?
4: इजी टू वॉच मूवी.
0: अच्छा
4: स्ट्रेस फ्री वाला.
0: इजी टू वॉच स्ट्रेस फ्री अवार्ड.
4: Okay. And I think Chini Kam bhi bahut achi picture thi and all the actors worked really well, but usko shayad itna recognition nahi mila shayad.
0: Perfect. Thank you, Reema, for your call. Keep listening. I'll announce the winner in a bit. All right, G, this one more caller, and then we'll go head on to a song, and we'll come back and continue with Conversation Corner. Fanisha Radio, you are live on air. What is your name?
5: Hey, my name is Saurabh Shukla.
0: Ji, bataiye Saurabh.
5: हाँ द मूवी लाइक टू मेंशन दिस मूवी कॉल्ड शहर. अरशद वारसी वाज देयर एज अ सुपर कॉप इन दैट मूवी.
0: ओह एंड दोबारा नाम बताइए, क्या नाम है फिल्म का?
5: शहर, SEHER, शहर.
0: अच्छा शहर. ओके परफेक्ट. Perfect. Thank you so much, Saurabh, for recommending this movie and telling us more about it. Keep listening. I'll announce the winner in a bit. We are heading on to a short, music break. And uske baad wapas aakar we'll continue Conversation Corner, where you're going to tell me what movies you think deserved better awards.

0: You're tuned into Conversation Corner with Sunehri Kiran, brought to you by Neon Cactus. Aapke paas mauka hai ye $20 ka gift card for dine-in jeetne ka. Financial Radio, you are live on air. What is your name?
1: Amin.
0: Ji, Amin saab, bataiye.
1: मुझे लगता है कि स्टैनली का डब्बा जो मूवी थी, वो छोटा बच्चा था, वो उसका टिफिन डब्बा लेके स्कूल जाता था वगैरह. आई वॉज रियली गुड मूवी, आई लव्ड इट. आई स्टिल रिमेम्बर समटाइम्स व्हेन आई लुक एट द स्टैनली कप होल्डर्स इन द वॉलमार्ट. सो आई थिंक स्टैनली का डब्बा डिडंट गेट एनी अवार्ड्स ऑन एनीथिंग एंड वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज आई वुड से.
0: जी बिल्कुल, वैसे स्टैनली का डब्बा को आप सही कह रहे हैं, नॉमिनेशन एक दो गाने के लिए मिली थी, लेकिन और किसी चीज के लिए उस मूवी को नॉमिनेशन नहीं मिली. बट अ ब्रिलियंट मूवी दैट यू हैव रिमाइंडेड अस. अमीन, थैंक यू सो मच. कीप लिसनिंग, आई विल अनाउंस द विनर इन अ बिट. फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव इन एयर. व्हाट इज योर नेम?
2: या हाय, माय नेम इज निलांग.
0: हाय निलांग, बताइए.
2: द मूवी दैट डिड नॉट रिसीव टू मच रिकॉग्निशन वाज आई थिंक छिछोरे.
0: Shishore
2: was one of the
0: Sushant
2: Singh Rajput wali. Yes.
0: जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं. इट वॉज अ ब्रिलियंट मूवी विद कौन थी उनके अंदर लीडिंग लेडी? श्रद्धा कपूर. जी,
2: श्रद्धा कपूर. यस.
0: ऑल राइट निलांग, थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग दैट मूवी. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. All right, G, about one or two more calls before I go on a song break, and then we are going to announce the winner. Funasia Radio, you are live on air. What is your name?
3: हाय, दिस इज शिखा.
0: जी शिखा, बताइए.
3: तो इफ आई हर्ड इट करेक्टली, यू आस्क लाइक मूवीज दैट डिडंट डू दैट डिड वेल बट दे डिडंट गेट द रिक्वायर्ड रिकॉग्निशन, और द मूवीज दैट डिड रियली वेल एंड व्हाई इफ दे गॉट द अवार्ड्स व्हाई वर दोस. तो आई वुड रियली वांट टू कॉल आउट दिस लापता लेडीज.
0: ओह यस,
3: It was a recent movie, and the way it was shot and the simplicity around it and the way these folks acted in that movie, that was simply amazing. And it at a such a low budget, they made such an amazing movie which swept across all the award ceremonies, be it IFA or be it whatever.
0: Yes.
3: So that was one of the movies that I really liked.
0: Absolutely, and you know, it was well deserved. It won so many awards. Aur bilkul aisa nahi laga ki nahi ye unfair ho raha hai. It was totally fair, right?
3: Right, and the acting was like so amazing. Those people, yes. They were all, yeah. Most of them were like newbies, I would say, but the acting was incredible.
0: Yeah, the girl and the boy was so innocent and so cute, for sure.
3: I know.
0: All right, Shikha, thank you so much. Sunti rahi, I'm going to announce the winner in a bit. All right, Jee, probably last caller. Yeah. Farisha Radio, you're live in here. Naam bataiye.
4: Hey, hi, Chinu. How are you?
0: Jee, Chinu, thank you so much. Bataiye.
4: I have a movie in mind. Its name is Rocket Singh. I mean, it was a really beautiful movie.
0: Yes.
4: Did not get much recognition. Ranbir Kapoor was on fire that year. And one actor who did not get well recognition throughout the year, we have all seen it, is Aamir Khan.
0: Aamir Khan. Correct.
4: Yeah. He could not get through the award and he started
0: बायकॉट ही कर दिया उन्होंने अवार्ड्स का. अब तो मैं देखती हूँ कि वो अपनी फिल्मों के स्क्रीन्स भी नहीं इशू करते हैं, वो बस एक पोस्टर सा लगा हुआ होता है उनके हर गाने के पीछे, बस दैट्स ऑल. थैंक यू चीनू, थैंक यू. सुनते रहिए. ऑलराइट जी, दैट इज द एंड ऑफ आवर कन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण. नियॉन कैक्टस आपके लिए लेके आए थे. ये गाना सुनिए और फिर मैं आपको बताती हूँ हु इज द लकी विनर. जरा मैथ के फॉर्मूले में आपके नंबर्स डाल दूँ.

मोरा जी, लकी नंबर निकला है 6 और 6 नंबर पे जिन्होंने मुझे कॉल किया वो हैं अमीन साहब. अमीन, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे कॉल बैक कीजिए एंड आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन सो दैट वी कैन सेंड इट टू नियॉन कैक्टस. मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आप जिस नंबर में मुझे कॉल करते हैं वो नंबर में नोट करती हूँ, फिर वो मैथ के फॉर्मूले में डलता है और नंबर निकलता है, और जिस नंबर पे कुरानदाजी निकलती है मैथ के फॉर्मूले की, वो होते हैं लकी विनर. सो आपकी लकी करती है आपके विन का फैसला. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एज ऑलवेज. इट रियली रियली मैटर्स टू मी दैट यू कॉल इन एट कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण एंड ब्रिंग दिस ऑन ब्रिलियंट कॉन्वर्सेशन विद मी. कभी अगर आप चाहें तो हम नॉन फिल्मी कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी. सो अगर आप चाहते हैं तो जरूर मुझे कॉल करके बताइए या मेरे यू नो इंस्टाग्राम पे सुनहरी डॉट किरण पे जाके और मुझे डीएम कीजिए, मैसेज कीजिए कि कुछ नॉन फिल्मी कॉन्वर्सेशन भी होनी चाहिए, कुछ सीरियस कॉन्वर्सेशन भी होनी चाहिए, तो वो भी जरूर करेंगे कुछ लाइफ के बारे में, कुछ और चीजों के बारे में. सो अमीन, आप प्लीज मुझे कॉल कीजिए एंड ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
1: कहाँ?
0: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी।
2: और अगर ऑर्डर $20 से ज्यादा हो तो घर बैठे डिलीवरी।
1: ओ वाओ।
0: एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
2: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लस वन वाइब।
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
5: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
6: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
5: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
2: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
7: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
2: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
7: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
2: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
7: एग्जैक्टली। अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
2: नंबर बोल जल्दी।
7: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
8: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट

0: करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
1: नंबर बोल जल्दी।
0: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
2: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
3: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
4: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
3: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
4: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
5: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कॉम्पिटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
6: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panchtara is now open at a new location in Allen. Wahi swad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhathe, roz taazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panchtara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
5: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद AG फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
7: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
8: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फनेशिया 104.9 FM।

104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप. योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. मैं हूं किरण आपके साथ और अराउंड 22 मिनट्स और हैं, 5 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा. इतना सब कुछ आज हमने कर लिया है शो में. बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के गाने मैंने आपके लिए लेकर प्रेजेंट किए और यू नो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स एंड एंजॉइंग द वैरायटी दैट यू गेट इन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं ट्रैफिक की अपडेट आपके लिए लेके आने वाली हूं. सबसे पहले this traffic update is brought to you by Umar Khwaja. Ji haan, attorney Umar Khwaja is here to help fight cases for you. Kis tarah ke, if you are involved in a car or a truck accident, ya phir unfortunately there is a slip or a fall incident, toh aisi situation can be extremely stressful. You don't want to deal with it yourself. You need an attorney by your side who can deal with all the nitty-gritties of this situation, and that attorney is attorney Umar Khwaja. Not only will he help fight your case, he will get you the best compensation that you deserve. Or the best part is that you don't have to pay anything until you win the case. तो आपके लिए ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक राहत का वो कहते हैं ना सामान है ये अटर्नी उमर ख्वाजा, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ अटर्नी उमर ख्वाजा, जो कि आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे. यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, समवन यू नो इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा 4693005046 उनका नंबर, या फिर उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आप attorneyumar.com. और एक इंसिडेंट इस वक्त हमें रोड्स पे नजर आ रहा है, दैट इज ऑन 114 यानी कि 114 टुवर्ड्स एस्टर्स रोड वेस्ट बाउंड. देयर इज अ कोलिजन जिसकी वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड आउट ऑफ 6. द सेवेरिटी ऑफ द इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ बैकअप इज सीन एट दिस स्पॉट. 20 मिनट पहले ये इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया है, तो आप अगर यहां पहुंचने वाले हैं तो यू माइट सी अ लॉट ऑफ बैकअप स्पेशली एट दिस रश आवर. विद दैट, दैट इज ऑल दैट आई कैन सी वेयर ट्रैफिक इज कंसर्न्ड राइट नाउ ऑन द रोड्स ऑफ डैलस, which is always, always a good news. So this is your traffic update. We are heading on to this short song, and then we will come back with weather, currency, gold price.

और जी वैसे तो ये जो वेंसडे का हमारा 4:30 के बाद का 5 मिनट 10 मिनट होते हैं, ये हुसैन पंजवानी जी के साथ होते हैं ऑफ ड्रीम होम मॉर्गेज. लेकिन आज हुसैन पंजवानी जी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है ड्यू टू सम कमिटमेंट. तो मैं आपको बताती चलूं कि ड्रीम होम मॉर्गेज इज यू नो अ डिविजन ऑफ ब्राजर्स नेशनल बैंक. ड्रीम होम इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग यू विद द लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट इन योर एरिया. चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हों, आप अपग्रेड करना चाहते हों अपना घर, यू वॉन्ट टू कंसॉलिडेट योर डेट, आउटस्टैंडिंग डेट, या फिर आप रीफाइनेंस करना चाहते हों, कमर्शियल नीड्स हों, रेजिडेंशियल नीड्स हों, जिस भी तरह की आपकी मॉर्गेज नीड्स हैं, ड्रीम होम मॉर्गेज एंड देयर टीम इज हेयर टू हेल्प यू, स्टेप गाइड यू स्टेप बाय स्टेप थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ फाइनेंशियल सोल्यूशन जो खास आपकी फाइनेंशियल नीड्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है. सो अक्सर हमारे साथ मिस्टर पंजवानी मौजूद होते हैं, जिनको और उनकी टीम को कॉन्टैक्ट करने के लिए मैं आपको बता देती हूं. कोई भी आपका सवाल है, देर आर टू वेज ऑफ गेटिंग, एक्चुअली थ्री वेज ऑफ गेटिंग इन टच विद देम. नंबर वन, यू कैन गिव देम अ कॉल. दैट नंबर इज 972-245-5626. सेकेंड तरीका क्या है, जो कि हुसैन पंजवानी जी हमें हमेशा कहते हैं, द बेस्ट वे इज टू ड्रॉप हिम एन ईमेल, एंड दैट ईमेल आईडी इज info@dreamhomemortgage.com. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, विच इज dreamhomemortgage.com. पिछले कई सालों से, मतलब आप कह लीजिए 27-28 साल से, जो है आपको आपके लिए मॉर्गेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं ड्रीम होम मॉर्गेज. दे हैव बीन एक्सट्रीमली यू नो वेल रिसीव्ड इन द कम्युनिटी. यू हैव एनी क्वेश्चंस, गिव देम अ कॉल. आपको घर खरीदना है, गिव देम अ कॉल. आपको कोई कमर्शियल नीड्स है, गिव देम अ कॉल. दिस इज ड्रीम होम मॉर्गेज.

जी हाँ, सुरैया की जान लेने का तो पता नहीं, लेकिन आजकल ऑयल प्राइसेस और गोल्ड प्राइसेस जान जरूर लेके छोड़ेंगी। बहरहाल ये टाइम आ चुका है आपको करेंसी अपडेट देने का। यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड। 4:54 PM इन द स्टूडियो एंड अकॉर्डिंग टू xrates.com राइट नाउ यूरो इज ट्रेडिंग एट 0.86, जबकि ब्रिटिश पाउंड 0.74, इंडियन रुपी 96.12 पे ट्रेड कर रहा है, कनेडियन डॉलर 1.389 पे स्टैंड कर रहा है, नेपाली रुपी 153.86, जबकि पाकिस्तानी रुपी 278.46 पाकिस्तानी रुपी इज अ ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर। और इसी के साथ बांग्लादेशी टका 122.75 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर। तो ये तो हुआ आपका डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड। आफ्टर दिस सॉन्ग मैं आपको बताऊंगी कि सोने का भाव आज क्या है।

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Wilhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Wilhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: सफर खूबसूरत है मंजिल से भी।
2: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
3: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 इयर्स, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
4: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up: AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
5: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
6: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
7: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
6: के टू ड्राइव मतलब
7: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
6: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
7: 100%
8: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट k2drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
7: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
7: ये क्या होता है?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
11: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
12: घर की याद नहीं आई तुझे जैसी?
13: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
10: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
13: सच में बिल्कुल घर जैसा।
10: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
14: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

पत्नी पूछती है अपने पति से कि अगर मैं और पड़ोसन दोनों दरिया में डूब रहे हो तो तुम किसको बचाओगे। पति कहता है मैं तो तुम्हें बचाऊंगा ना बेबी। वो कहती वाह आज तो सूरज किसी और डायरेक्शन से निकला। कहता हाँ पड़ोसन को तैरना आता है।

बंदा है बिंदास है जी, नाम अरविंद दास है। इट्स 5:25 इन द स्टूडियो क्लॉक, 5:25 हो चुके हैं। आज बुधवार है जी, वेंसडे आ चुका है, जून की 3 तारीख। देखते देखते जून आ गया। अभी आप न्यू ईयर पे बैठे थे, है ना, कोई कह रहा था कि न्यू ईयर पे हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, फिर कह रहे थे हम गर्मियों में यहाँ जाएंगे। गर्मियाँ भी आके खत्म होने वाली ही होंगी, 2 महीने और बचे हैं जी। टेक्सस जुलाई अगस्त, उसके बाद फिर से ठंडी हवाएं लहरा के आए। नंदलेस, वी वर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड बाइसिकल डे व्हिच इज सेलिब्रेटेड टुडे व्हिच इज 3rd of June टू रिकॉग्नाइज द बाइसिकल एज अ सिंपल अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 2018, द डे प्रमोट्स फिजिकल हेल्थ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली साइकिल ली थी, तो छोटे भाई होने का ना नुकसान बड़ा होता है कि बड़े भाई की हर चीज़ आपको मिलती है। बड़े भाई के कपड़े, बड़े भाई की पैंट, बड़े भाई की साइकिल, बड़े भाई का स्कूटर। बाय गॉड, हमारे लिए तो कुछ नया रखा ही नहीं था घर वालों ने। खैर, मुझे याद है कि पहली मेरी साइकिल थी एक टोबू साइकिल, और मैं उस पर बहुत घुमा करता था। उसके चक्के आगे जो हैंडल होता है, हैंडल के नीचे व्हील होता है जो, वहाँ पे 2 पेडल से होते हैं, आप उसको घुमा घुमा के घर में घूमते हो। प्लास्टिक की होती थी। उसके बाद अपग्रेड हुए जी थोड़े से, तब मेरी एक साइकिल वो लड़कों के स्टाइल वाली यंग BMX टाइप, उस टाइम तक वो मॉडल आने शुरू हो गए थे। और फिर आई जी गियरों वाली साइकिल, और वो गियरों वाली साइकिल ली थी मेरे भाई के लिए, मेरे पापा ने, क्योंकि माय ब्रदर यूज्ड टू डू ट्रायथलॉन, और वो साइकिलिंग के बड़े शौक। हीरो हॉक उस टाइम, याद होगा किसी को। आप भी बताइएगा मुझे आपकी पहली बाइक कौन सी थी, याद है अगर आपको। विल टॉक अबाउट दैट, लेट्स रिफ्रेश सम मेमोरीज। याद है आपको पहली साइकिल किसने दिलाई, कब दिलाई, पहली साइकिल आपने कब चलाई, कैसे गिरे, कुछ यादें। लेट्स टॉक अबाउट दोस। 972-235-5555 दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज। इफ यू लुकिंग फॉर अ मॉर्गेज, दीज आर द पीपल टू गेट विद, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग इट फॉर 25 इयर्स इन डालस एंड आर एक्चुअली रियली गुड पीपल टू वर्क विद। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी इज व्हाट दे स्टैंड फॉर, एंड यू विल गेट टू नो दैट एज यू गिव देम अ कॉल। 972-245-5626 और dreamhomemortgage.com। हियर वी गो विद द नेक्स्ट ट्रैक, लाइंड अप है जी।

क्या थी वो पहली साइकिल आपकी, याद है? बताओ मुझे यार, वो साइकिल की राइड याद है जो आपको किसी रिश्तेदार ने डंडे पे बिठा के घुमाया हो, और जब साइकिल की चेन टूट जाए या निकल जाती थी तो लड़कों से बेहतर कौन जानता है।

भैया निरंजन जी कहते हैं कि हम तो उस जमाने के हैं जब ब्रिटिश वाली साइकिल आया करती थी, उसका ब्रांड का नाम होता था रैले। एंड रैले की कहते हैं जी खासियत ये थी कि रैले बाइक में जो चेन कवर था वो टोटली कवर्ड था, समथिंग डिफरेंट दैट दैट बाइक हैड। उसके बाद ऑफ़ कोर्स हीरो थी, हर्क्यूलिस थी, एटलस थी, एंड देन हीरो हॉक जैसे मैंने बोला वो स्पोर्ट्स वाली आई थी, हैंडल उसका घुमा हुआ था। एंड दिस बाइकिंग ट्रेंड यू नो ऑल्सो पिक्ड अप इन इंडिया आफ्टर वो फिल्म जो जीता वही सिकंदर, ठीक है ना। मैं तो यही मानता हूं कि जो जीता वही सिकंदर। कुलभूषण खरबंदा, आमिर खान, क्या जबरदस्त फिल्म थी ना यार। आज भी उसको याद करता हूं तो आई एंजॉय इट। कभी देखने को मिले आई ट्रूली गेट ग्लूड टू द टीवी स्टिल। आपको भी अगर कुछ यादें आपकी याद हैं आपके बचपन की अबाउट योर साइकिल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स दैट यू हैड एट दैट टाइम, डू गिव मी अ कॉल। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। यू नो हैरानी की बात है, कभी कभी सोचता हूँ तो हंसता हूँ कि मोबाइल और कंप्यूटर तो इंसान का समय बचाने के लिए बनाए गए थे, ये क्या हो गया यार।

0: और आप भी सुन लीजिए कि विशाल एंड शेखर आर कमिंग टू टाउन, दैट इज द बॉलीवुड्स बिगेस्ट क्रिएटर्स ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट. विशाल एंड शेखर आर कमिंग टू डैलस एंड दिस इज गोना बी लाइव फॉर यू एट द कर्टिस कलवेल सेंटर, संडे जुलाई 12th. द डुओ बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड्स बिगेस्ट सुपर हिट्स आर ब्रिंगिंग द सुपर हिट टूर टू डैलस. टिकट्स आर ऑन सेल एट cashpatelproductions.com, दैट्स कैश पटेल विद अ के, patelproductions.com. And something really exciting is that Vishal Dadlani will be joining us on Monday evening right at 5:05 on June 8th. Stay tuned for that.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
4: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
3: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
5: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
6: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
7: हाँ.
6: घर रिलोकेट करनी है?
7: हाँ.
6: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
7: हाँ भाई हाँ.
6: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
8: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
9: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
10: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
9: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
10: वेट, व्हाट?
5: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
5: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com. देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
5: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
16: क्या मतलब?
17: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
17: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: इंडिया में आते झगड़े तो इंडिया क्या, नेपाल क्या, पाकिस्तान क्या, बांग्लादेश क्या, सब जगह पे आते झगड़े तो ये क्या के खत्म कर देते हैं। तूने इसके मुंह लग के क्या करना है, रहने दे इस बंदे को। यू लिसनिंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो राइट हियर ऑन फन एशिया। इट्स 5:47 इन द स्टूडियो क्लॉक। माय टाइम इक्विटी इज द वंस दैट आर ब्रिंगिंग दिस पार्ट ऑफ द शो टू यू। एंड माय टाइम इक्विटी करते क्या है जी, आपके फ्यूचर को या आपके फाइनेंसिस को मल्टीप्लाई करते हैं। एंड दे मेक श्योर दैट योर रिटायरमेंट इज सिक्योर्ड। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, रियल एस्टेट है, क्रिप्टो है, एंड दे डू इट ऑल। इफ यू आर लुकिंग टू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट सेफली सिक्योरली विद समबडी हु इज नोन टू डू दिस वेल, दैट इज मिस्टर सुधीर पाय, हु इज द प्रिंसिपल ऑफ माई टाइम एक्विटी इज वेल। यू जस्ट नीड टू गो टू द वेबसाइट mytimeequity.com, दैट्स mytimeequity.com। टुडे ऑल्सो मार्क्स नेशनल अंडा डे। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये तो आप सबको पता है। बट संडे हो या मंडे, रोज खाने चाहिए अंडे, नॉट डंडे। गुड इवनिंग फन एशिया, रेडियो वॉल्यूम लो, योर वॉल्यूम अप। हु इज दिस?
1: हाय, इट्स मी।
0: हाय, हाउ आर यू?
1: आई एम फाइन।
0: चलो चलो, जल्दी जल्दी बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ।
1: आज मेरा हस्बैंड का बर्थडे है।
0: क्या नाम है हस्बैंड का?
1: परवाज खेत्री।
0: कौन सा खेत्री?
1: प्रभात।
0: प्रभात खेत्री। प्रभात खेत्री, भाभी राम, भाभी आप रामरो?
1: एकदम ही रामरो
0: खेत्री। ओके, क्या गाना लगाऊं खेत्री भाई के लिए?
1: उसका फेवरेट गाना है सुजन चापागाई का।
0: कौन सा गाना? सुनाओ। चलो मैं ढूंढ के लगाता हूँ भाभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सुनते रहे फन एशिया रेडियो 104.9 FM। हैप्पी बर्थडे पहले तो प्रभात खेत्री दाई, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम द टीम हियर एट फन एशिया एंड फ्रॉम बंदा बिंदास। मैं आपका गाना ढूंढता हूँ, जब तक गाना मैं ढूंढूँ तब तक आपके लिए और गाना लाइन अप कर रहा हूँ, वो सुनिए। और उसके बाद आ रहा हूँ वापस, ओनली ऑन योर फेवरेट स्टेशन फन एशिया 104.9 FM, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। अंडों का दिन आज है जी, नेशनल एग डे। एंड इफ यू एंजॉय सम एग्स, टुडे इज द डे यू शुड डेफिनेटली एड सम टू योर मेन्यू, चाहे बॉयल्ड हो चाहे स्क्रैम्बल्ड हो। मुझे जो देसी स्टाइल भुर्जी है ना, प्याज टमाटर हरी मिर्च धनिया डाल के, उसका मजा अलग ही आता है बिड़ू। एक सवाल, जब तक आप ये गाना सुने, मुझे आपसे एक सवाल ये है कि अंग्रेजी में गर्लफ्रेंड होती है, हिंदी में होती है प्रेमिका, मराठी में होती है प्रेसी, आपकी माँ क्या कहती थी उनको, बताओ जरा। व्हाट इज गर्लफ्रेंड प्रेमिका स्लैश प्रेसी कॉल्ड इन योर मदर्स लैंग्वेज?

0: गर्लफ्रेंड प्रेमिका आपकी मम्मी उनको क्या कहती थी ये आप मुझे बताइए। गुड इवनिंग फनीजिया, हुज दिस?
1: हाय प्रेमिका,
0: प्रेमिका? प्रेमिका ने प्यार से जो भी दे दिया तेरे वास्ते नीलम जैसा। नहीं, वो तो देखो एक ना कैप्टन है, उनका नाम है जुरैल, JURL। और जो मेरी मम्मा कहती थी ना वो भी कुछ सिमिलर ही साउंड करता है। ठीक है, तो प्रेमिका, गर्लफ्रेंड, प्रेयसी, है ना? और ये क्या बोली थी, क्या बोले थे साथ में अंग्रेजी में, गर्लफ्रेंड, प्रेमिका, इसको आपकी मम्मा की लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक वर्ड कहते हैं। जो ये कप्तान साहब है ना, जुरैल उनका नाम है, उससे बड़ा मिलता जुलता है।
2: हेलो दादाजी।
3: हेलो। हाँ
2: अरे वाह, फोकस कर रहे हैं, वेरी गुड।
4: क्या सीन है भाई, कुड़ी पसंद तो नहीं आ गई?
0: लेट्स सी व्हाट मिस्टर वासवाड़ा हैव टू से। गुड इवनिंग फनीशिया, कौन बोल रहा है?
5: हाँ जी, मिहिर बोल रहा हूँ।
0: मिहिर भाई कैसे हैं?
5: बहुत बढ़िया, आप सुनाइए।
0: मैं बहुत बढ़िया, वो थोड़ी देर के बाद बढ़िया शायद ना रहूं क्योंकि लेडीज की जूती तैयार होने वाली है मेरी तरफ, बट आप बताइए
5: आप के वर्ड ढूंढ रहे हैं।
0: नहीं, मैं ये ढूंढ रहा हूं कि गर्लफ्रेंड बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेमिका बोलते हैं
5: हाँ।
0: हिंदी में, मराठी में बोलते हैं प्रेसी, आपकी मम्मा क्या बोलती
5: हाँ।
0: थी?
5: मेरी मम्मा तो कुछ नहीं बोलती, पर आप शायद वर्ड तो चुड़ैल ढूंढ रहे हैं,
0: ओ,
5: चुड़ैल के साथ।
0: मैंने कुछ नहीं कहा। क्या नाम बोले आप अपना? मिहिर, ये मिहिर भाई
5: मिहिर,
0: कहते हैं। मैंने
5: मिहिर,
0: ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, पर मेरी ऐसी मम्मा कोई वर्ड कहती थी जो मुझे सिमिलर साउंड
5: आपने तो
0: करता।
5: क्लू जो दे दिया फिर उस हिसाब से।
0: सर देखो, क्लू हो या ग्लू हो, कई चीजें जोड़ देती हैं, कई चीजें तोड़ देती हैं, बस डिफरेंस सिर्फ
5: आई
0: इतना
5: नो।
0: सा होता है। मिहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखो, जुरैल मुझे पता था, पर मम्मी कहती हैं हर बात, मम्मी की सच भी तो होती है ना। मम्मी इज ओल्ड एडवाइस, यू नो शी इज विजडम, सो बाकी जो मम्मी कहें वो अच्छा ही होता है। गुड इवनिंग फनीजिया, हुज दिस?
1: हाय जी, मेरा नाम रिजवाना। हाय,
0: रिजवाना जी कैसी हैं?
1: ठीक ठीक आप कैसे हैं जी?
0: मैं बचपन में थोड़ा गिर गया था, उसकी चोटें जो शरीर की हैं वो ठीक हो गई हैं, दिमाग वाली थोड़ी लंबा टाइम ले रही हैं।
1: किसने गिराया आपको?
0: किस्मत और वक्त ने।
1: ओके, चलो आप तो संभाल गए ना।
0: हाँ जी, बट अच्छी बात है किसी की नजरों से नहीं गिरा आज तक।
1: चलो अच्छा है। ओके,
0: अब बताइए कि ये जो वर्ड है गर्लफ्रेंड प्रेमिका,
1: हाँ, उसको माशुका कहते हैं, माशुका।
0: नहीं, मम्मी क्या कहती थी? मम्मी, मेरी मम्मी, जैसे मेल लड़कों की ना मम्मी, कुछ स्पेशल
1: ओ,
0: वर्ड, हाँ
1: मम्मी।
0: वो स्पेशल वर्ड है उनका ना, वो उसी नाम से बुलाती थी कि आ गया।
1: चमेली, चमेली।
0: अब खैर आप सुनते रहो, आपको भी पता लगेगा थोड़ी देर में। गुड इवनिंग फनेजिया, हुज दिस?
6: रविशंकर।
0: रविशंकर कैसे हैं? शंकर कैसे हो?
6: बस आपकी दुआ है, पूरा
0: चलो
6: टेरेस आपको ढूंढ रहा था।
0: मैं यही हूँ, मुझे डॉन को ढूंढने की कोई जरूरत, डॉन को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी मुझे नहीं सर, मैं तो यहाँ फ्रीक्वेंसी पे बैठा होता हूँ शाम को।
6: माँ
0: ये
6: उसको गोरी कहती थी, माँ उसको गोरी कहती थी।
0: गोरी गोरी नहीं कहती थी, जुरैल करके एक वर्ड आता है उसके साथ मिलता जुलता वर्ड है वो।
6: कौन
0: बताओ मुझे, रेडियो वॉल्यूम कम, आपका वॉल्यूम ज्यादा? हेलो हेलो, हमारी भी सुनो यार, रेडियो पे तो सुन ही रहे हो। गुड इवनिंग फनीजिया, कौन बोल रहा है या रही है?
7: मेरा नाम गुल है।
0: हाय गुल,
7: और हाउ आर यू?
0: आई एम फैंटास्टिक गुल। और हमारे ना पंजाब में कहते हैं वो बंदा गुल हो गया, पर यहाँ तो गुल मिल गया है। कैसी हैं गुल, सब ठीक है?
7: जी हम वो वाले गुल नहीं है, हम तो फूल हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, फूल खिले हैं, गुल गुल
7: गुलाब,
0: गुलशन टाइप गुल। हाँ जी गुल जी, बताइए कि वैसे तो आप मेल नहीं हैं, बट हमारी मम्मी ने स्पेसिफिकली एक वर्ड कहती थी हमारी गर्लफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड्स के लिए।
7: हाँ, वो जो ना रिजवाना ने जो कॉल किया था अभी,
0: हाँ जी, हाँ जी,
7: उनको आई एम सो सरप्राइज कि उनको चुड़ैल बोलना नहीं आया।
0: हाँ, ये
7: तो
0: देखो
7: रिजवाना जी,
0: ये तो गुल।
7: आपको ना आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड ऑन यू, इन यू, क्योंकि रिजवाना को मैं जानती हूँ और आई वाज सो सरप्राइज उसको सुन के रेडियो पे, तो मैंने कहा चलो मैं इसी वक्त कॉल कर देती हूँ।
0: चलो आपने बहुत
7: चुड़ैल,
0: अच्छा किया, चुड़ैल, ठीक है जी। ये तो मेरी मम्मी कहा करती थी, उसके बाद आज आपके मुंह से सुना है। मैं तो सिर्फ सुनता ही
7: अच्छा
0: था,
7: बीच में आपने कभी सुना ही नहीं है
0: नहीं,
7: ना?
0: मैंने सिर्फ सुना ही है, मैंने कहा कभी भी नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ मेरी भाभियों को जो सुन रही हैं और आपके जैसे। आई नेवर से दैट, यू नो आई ओनली हेयर, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू हेयर अगेन फ्रॉम समबडी कि वो क्या वर्ड था। बहुत बहुत शुक्रिया गुल, आई होप यू इंजॉय योर इवनिंग, कीप लिसनिंग टू फनेजिया, मस्ती की पाठशाला ओनली ऑन 104.9।

0: लाल परी तो ठीक है, यहाँ हमारे साथ त्यागी जी हैं, ये आज घर जाना चाह रहे हैं पर बड़ा धड़ल्ले से कुछ बोलना चाहते हैं, बीवी साथ नहीं है। हाँ, क्या कह रहे थे आप त्यागी भाई?
1: मैं कह रहा था कि डायन कहती थी मदर,
0: डायन
1: डायन से मिल गया डायन।
0: आज भाभी साथ में नहीं है भैया, और किस्मत को ये
1: पहले परमिशन ले ली थी।
0: देखो मैंने कुछ नहीं कहा, ये पब्लिक कह रही है डायन और चुड़ैल। मैं चलता हूँ ब्रेक पे, बाय।
2: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर, द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा।
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting.
7: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
7: Kyun?
8: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: Achha, to seedha wahi le chalo.
9: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
8: Your new destination has arrived.
10: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
11: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
10: कैसे?
11: पेज 3 ईटरी?
10: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
11: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
10: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
2: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
12: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
13: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
14: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
15: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
16: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
15: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
17: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motorworks in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motorworks, engineered for excellence.
18: Chicken banana. Chicken banana?
19: Bro, banana nahi, banana. मतलब मेक द चिकन राइट।
4: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
5: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
18: क्या
20: सैलरी बंद हो जाती है
18: और बिल्स बंद नहीं होते?
20: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं।
18: मतलब
20: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
21: द वेल्थ टैक्टिक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com।
22: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
21: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
23: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिंदास बोलो जी, नाम मार बिंदास बोलो। इट्स 6:06 इन द स्टूडियो क्लॉक। दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, द बिंदास शो ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम। मैं रहूंगा जी आपके साथ 7 बजे तक, यही सफर चलता है जी हमारा 4 दिन का, मंडे टू थर्सडे 5 to 7 PM। एंड कुछ बातें मेरी, कुछ बातें आपकी, बस इसी के साथ हम बुन लेते हैं जी इस प्यारे से स्वेटर टाइप डील को, बुन लेते हैं ना, बुन लेते हैं, ख्वाब भी बुन लेते हैं, पर हम बातें बुन लेते हैं यार। और तो हमारे को नीटिंग वीटिंग तो आती नहीं, चलो बातें ही बुनेंगे। कुछ आप बताना चाहते हैं तो स्टूडियो का नंबर आपके लिए खुला है जी, 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। हमने बात की थी जी पुराने ज़माने की साइकिलों की, कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की साइकिल्स हुआ करती थी और आपकी पहली साइकिल राइड कैसी थी। फिर हमने पूछा कि गर्लफ्रेंड अथवा यू नो माशूका इसको मैया क्या कहती थी, तो दो लोगों ने बताया, एक जुरैल टाइप नाम था और एक कायम चूरन टाइप नाम था। तो ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग जोर से मम्मियों का मतलब जोश होता था मम्मियों को इस चीज को बताने के लिए। गुड इवनिंग फन एशिया रेडियो, वॉल्यूम लो, योर वॉल्यूम अप। कौन बोल रहा है?
1: हाय, मैं प्रिया बोल रही हूँ।
0: हाय प्रिया, रेडियो का वॉल्यूम तो कम कर लो प्लीज।
1: और प्लीज मेरे हस्बैंड जी वॉल्यूम कम कर दीजिए, बोल दिया।
0: अरे आपके हस्बैंड भी, आप तो खुद प्रिया सी लग रही है छोटी सी।
1: यस, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ जितनी मेरी आवाज लगती है।
0: अच्छा, जैसे प्रिया का छोटा स्कूटर आता था ना पहले, वो याद आ गया मुझे।
1: ओके, नाइस।
0: तो बताइए प्रिया जी, हाउ इज योर इवनिंग, हस्बैंड कहाँ ले जा रहे हैं या आप इनको कहाँ ले जा रही हैं?
1: ओके, सो मैंने वही शेयर करने के लिए कॉल किया है। एंड द स्पेशल अबाउट दिस इवनिंग इज आज मेरा बर्थडे है।
0: अरे हैप्पी बर्थडे टू प्रिया।
1: तो हम ऐसे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। एंड मोर स्पेशल अबाउट द इवनिंग इज, ये मेरा फर्स्ट बर्थडे है जहाँ पर मेरी डॉटर भी है मेरे साथ।
0: अच्छा,
1: और मेरी मम्मी भी है मेरे साथ।
0: Wow.
1: तो वी आर 3 generations।
0: वेरी गुड, व्हाट्स योर डॉटर्स नेम?
1: सखी।
0: सखी, एंड व्हाट इज योर मदर्स नेम? सहेली।
1: अनीता।
0: अच्छा अनीता, मैंने कहा कहीं सखी सखी सहेली ना डालो। ओके अनीता जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, पैरी पैना जी, नमस्कार आंटी जी, एंड प्रिया जी, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। सखी विच इज द यंग वन, आई एम श्योर शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी येट, बट आप तीनों त्रिमूर्ति को हमारी तरफ से इस शाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस दिन की बहुत शुभकामनाएं, और खुदा करे कि ऐसे दिन आपकी लाइफ में और आते रहें। एंड आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ जॉय फॉर योर मदर ऑल्सो। अनीता जी जब देख रही हैं कि प्रिया की सखी आ चुकी है, अब प्रिया अलोन नहीं रहेगी, ये जान के जो खुशी मेरा ख्याल अनीता जी के दिल में है, दैट इज अनपैरेलल टू एनीथिंग। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ आज की शाम?
1: कोई भी अच्छा गाना लगा दीजिए।
0: कोई भी अच्छा गाना लगा दूं? चलो कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ आपके लिए लाइनअप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आई होप यू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल इवनिंग। थैंक यू फॉर योर कॉल। देखो जी क्या बात है, 3 generations इन 1 phone call, द मदर, द डॉटर एंड द डॉटर्स डॉटर, यानी कि ग्रैंड डॉटर। आप लोगों के लिए, तीनों के लिए ना एक गाना बहुत जबरदस्त फिट हो रहा है। Although it's sung by a male, but I think दिल तो हमारा हमेशा यही चाहता है कि ये दिन बस यहीं रुक जाए, right?

दिल चाहता है कि दिन यहीं रुक जाए, समय यहीं रुक जाए, स्पेशली व्हेन यू हैव गुड कंपनी एंड गुड फ्रेंड्स। एंड जैसे कि मेरा शो है, आप भी चाहते हो ना कंटिन्यू होता रहे, पर नहीं यार, मजा उसका वही आता है कि थोड़ा मिस करो आप, 5 से 7 का ही साथ है। बट नॉनदलेस टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे, जून की 3 तारीख है और आज ही के दिन वेंसडे, डेट वॉज सेम, द ईयर वॉज डिफरेंट व्हेन द US आर्मी वॉज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड, 1784 की बात है, सन 1784 द US आर्मी इज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड बाय कांग्रेस ऑफ द कॉन्फेडरेशन। दैट was on the same date, June 3rd, the year was 1784. Also on today's date, the first baseball uniforms were worn by the New York Knickerbockers. The first baseball uniforms are worn by the NY Knickerbockers, straw hats, white shirts and blue long trousers. That was also on the 3rd of June, 1851. 1851 था वो सन जब ये भी देखने को मिला। This part of the show is brought to you by Fun Pizza Kitchen, जो आपका favorite pizza पिज्जा की लोकेशन है जनाब। इफ यू आर वांटिंग समथिंग चीजी या समथिंग व्हिच इज मोर स्पाइसी, समथिंग व्हिच इज फुल ऑफ फ्लेवर, देन द अचारी पनीर पिज्जा और द तंदूरी चिकन पिज्जा फॉर दोज नॉन वेज लवर्स, फ्रेश फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बड्स। वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटीफुल, फन पिज्जा किचन हैज अ स्लाइस फॉर यू। अब आपके पास मौका है जीतने का एक $10 गिफ्ट कार्ड, व्हिच इज बाय आंसरिंग अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको ये बताऊं कि एक सरप्राइज है फॉर अ लिटिल गर्ल हु इज एक्चुअली टर्निंग 16 दिस संडे। हर मदर्स नेम इज अमीना एंड अमीना इज अ क्लोज सिस्टर टू मी। अमीना की जो बेटी है वो अपना नाम नहीं लेना चाहती, तो उनको हम प्यार से बोलते हैं मैरी बिस्किट। सो मिस मैरी बिस्किट, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, लव टू यू फ्रॉम योर मदर, लव टू यू फ्रॉम योर फादर, योर होल फैमिली एंड फ्रॉम द टीम ऑफ फनेजिया एंड फ्रॉम योर मामू मार्विन दास एज वेल। सो मेक श्योर दैट एज यू आर ग्रोइंग अप यू आर गोना बी टेकिंग केयर ऑफ योर मदर एंड फादर, ट्राई टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स दैम एंड ऑलवेज ऑलवेज गिव द लव बैक दैट यू लर्न टू टेक फ्रॉम दैम। विद दैट अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन स्वीट हार्ट, मिस मैरी बिस्किट टर्निंग 16, a very very happy birthday. Here we go with one more track, uske baad lenge hum chota sa commercial break, but gaane ke sath sath sawal kya tha, sawal ye tha janab ke kahan gaya ye raha sawal, okay ji, ye jo newspaper wale hai na india mein, ye 3 din newspaper nahi dete, ek din 15 august ke agle din 16 august ko akhbar nahi aata, 26 january ke agle din 27 january ko akhbar nahi aata, holi ke agle din aapko akhbar nahi milta। इसकी वजह क्या है, क्या आपको मालूम है? जो भी देगा मुझे क्रिएटिव सही जवाब उसको मिलेगा जी $10 गिफ्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम नन अदर देन फन पिज्जा किचन इन द कॉलोनी एंड इन फ्रिस्को।

0: हिंदुस्तान में तीन दिन अखबार नहीं आता, 15 अगस्त के अगले दिन, 26 जनवरी के अगले दिन और होली के अगले दिन, ये अखबार वाले इन तीनों दिन अखबार क्यों नहीं देते? टेल मी व्हाई यू थिंक सो।
1: दिल है तभी मुश्किल है।

0: देखो जी, रिचा जी कह रही हैं कि मार्विन जी उनकी भी छुट्टी होती होगी। ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर हो गया, इसमें लॉजिक भी नहीं है, इसलिए इसको मैंने रख लिया अपने पास। गुड इवनिंग फनीशिया, कौन बोल रहा है?
1: लेकिन मेहता,
0: बड़ी छुप छुप के बोल रहे हो, बीवी साथ बैठी है क्या मेहता साहब?
1: नहीं भैया, दूसरे की बीवी साथ है।
0: अच्छा, क्या बात है, चौका मारने वाले मेहता। मेहता जी ये बताइए कि क्यों ऐसा होता है कि अखबार नहीं आता 27 जनवरी को और 16 अगस्त को?
1: 15 अगस्त को और होली के दिन, मतलब तीनों दिन स्टाफ को छुट्टी मिलती है, स्टाफ घर जाता है, प्रिंट नहीं होता है तो दूसरे दिन अखबार नहीं आता है।
0: ये तो सच्चा सच्चा आंसर हो गया ना, सीधा सीधा कोई मार्विन टाइप आंसर। सोचो मेहता साहब, वापस वेट करता हूँ आपकी, देखता हूँ और कौन है मेरे साथ। गुड इवनिंग फनीशिया, हु इज दिस? हेलो,
2: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग मालिक।
2: अजय राज हियर।
0: कौन से राज?
2: कैसे हो?
0: अजय जी कैसे हैं आप?
2: बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हो?
0: मेरा भी ट्रक बढ़िया है यार, आपने बस बढ़िया कर लिया तो हमारा ट्रक ठीक बढ़िया चल रहा है। बताओ आप, ये चक्कर क्या है कि तीनों दिन अखबार क्यों नहीं आता?
2: बाकी सब डे प्रेस वर्क करती है, लेकिन जो प्रिंटिंग वगैरह है तो इन तीन दिन पे सबको हॉलीडे मिलता है, इसलिए इसके नेक्स्ट दिन एक बार नहीं मिलता।
0: सर ये तो बिल्कुल वही बात होगी ना, सीधा सीधा कुछ मार्विन की तरह सोचो ना। देखो ये जो तीन दिन होते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिया में, 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, इन तीनों दिन एक और चीज होती है जिसकी वजह से अगले दिन अखबार नहीं आता, वो चीज के बारे में थोड़ा सोचो। गुड इवनिंग फनीशिया, हु इज दिस?
3: हेलो, दिस इज अमृता।
0: हाय अमृता, हाउ आर यू?
3: आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ अबाउट यू?
0: आई एम डूइंग ओके, अ लिटिल स्टेप डाउन द ग्रेट। यू टेल मी, व्हाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर्स डोंट शो अप द नेक्स्ट डेज, 15th अगस्त एंड 26 जनवरी एंड होली?
3: Because those are holidays and there is no newspaper printing happens on those days.
0: Oh man, Amrita, you are also going by the book. Let me tell you people, आप सबको मैं बताता हूँ चक्कर क्या होता है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और होली, ये तीनों दिन होते हैं ड्राई डे, और हमारे न्यूज़पेपर वाला शराब पिए बिना अखबार नहीं छाप सकते, इसलिए अगले दिन अखबार नहीं आता, बिकॉज इट्स अ ड्राई डे, यू नो, दे डोंट गेट द कम्बा एंड नो अखबार लंबा लंबा। See you after the break.
4: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
5: Paid for by Mark Hill for Mayor.
6: Apni roots bhi aur Texas ka swag bhi, dono ek saath ek hi jagah, HEB mein. Royal Sona Masoori rice ho, Nanak paneer ho, ya Parle Ji biscuits. Wahi desi taste jo dil ko ghar jaisa feel de. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo sirf yahi milte hai. Ek hi trip, ek hi store aur sara saman done. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
7: बिग अचीवमेंट्स डिजर्व अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशंस। Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
8: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji. 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
9: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
9: कहाँ?
11: फूडिस्तान इन ऑवरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी।
10: और अगर ऑर्डर $20 से ज्यादा हो तो घर बैठे डिलीवरी।
9: ओह वाओ।
11: एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
10: फूडिस्तान इन ऑवरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
12: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
13: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
12: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
14: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई, और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
15: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
16: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
17: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
18: मैं हीरो।
19: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
10: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
20: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

कहते हैं कि टूटता हुआ तारा देख के अगर आप विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। मेरा बेचारा एक दोस्त टूटता हुआ तारा देखा और विश मांगने लगा कि मुझे अपनी बीवी से लड़ने की हिम्मत मिले। तारा भी वापस मुड़कर बोला, भाई रहने दे, ये ना हो पाएगा। वैसे ये तारे तो बाराती होते हैं ना, वो गाने में कहा था तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, कोई बात नहीं। पर ये तारा भी देख लो मुड़ गया, वो कहता भाई कुछ चीजें इम्पॉसिबल होती है बेटा। तो अब तारा भी बेचारा क्या करता। खैर एक तारा है मेरी लाइफ में, उनका नाम है तारा सिंह, वो मेरे पापा की जीजा है। और तारा सिंह जो चाहे वो जरूर होता है, क्योंकि उनका नाम तारा सिंह है। गाते नहीं है पर सिंह है। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय एजी फिनटैक्स। इफ यू हैवन डन योर टैक्सेस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? भैया अपने टैक्सेस की अगर एक्सटेंशन फाइल कर रखी है, पहली बात तो ये है कि सिर्फ टैक्सेस फाइल करने का पर्पज़ नहीं है, पर्पज़ ये है कि यू गेट टू लर्न अबाउट टैक्स सेविंग्स, यू गेट टू लर्न अबाउट टैक्स स्ट्रेटजीज। ऑल ऑफ दैट कैन बी लर्न विद एजी फिनटैक्स। इट्स द फास्टेस्ट गोइंग टैक्स फर्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स। गो टू द वेबसाइट agfintax.com। अच्छा जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने ये बात पूछी थी कि भैया 15 अगस्त, 26 जनवरी और होली के अगले दिन अखबार क्यों नहीं आता। अब सुनिए ध्यान से, 15 अगस्त को ड्राई डे होता है, अगले दिन अखबार नहीं आता। 26 जनवरी को भी ड्राई डे होता है, यानी कि ठेके नहीं खुलते, नो अल्कोहल सेलिंग, ठीक है। होली वाले दिन भी ड्राई डे होता है और उसके अगले दिन भी अखबार नहीं आता। मसला ये है कि जब जब इनको इनकी दवाई नहीं मिलेगी, अखबार नहीं छपेगी। शायद अखबार वाले बिना पिए अखबार छाप नहीं सकते, इसलिए ड्राई डे के अगले दिन नो न्यूज़पेपर। ऑल राइट, फन पिज्जा किचन का $10 का गिफ्ट सर्टिफिकेट अभी भी आपकी इंतजार में है। कौन जीतेगा वो बड़ा इजी करने लगा हूँ, एक गाना लगाने लगा हूँ मैं आपके लिए। आपको मुझे सिर्फ ये बताना है इस फिल्म का नाम क्या है। 9722355555 कॉलर नंबर 1 Who gives me the answer first? Fun Pizza Kitchen, पहले तो बता दूं, कॉलोनी और फ्रिस्को में लोकेटेड है। $10 का गिफ्ट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आपने ये 10 गिव अवे ना जीता हो इन द लास्ट 30 डेज। एंड यू आर एबल टू गो टू फन पिज्ज़ा किचन एंड एन्जॉय दिस। फिल्म का नाम पूछ रहा हूँ, कौन सी वाले गाने का, इस वाले का।

0: यार कमाल है, गाना लगा है और कॉलर की लाइन मेरे पास पहले ही आ गई है। कौन बोल रहा है? रेडियो का वॉल्यूम कम कर लो, अपना ज्यादा कर लो, नहीं तो मेरे कान का पर्दा फट जाएगा। बड़ी फनी।
1: हेलो, यस
0: हेलो,
1: यस, सो इट्स हेरा फेरी टू,
0: हेरा फेरी टू ऐसे बोलते हैं? सोच लो।
1: फिर हेरा फेरी टू,
0: ये
1: फिर
0: देखो आपके
1: हेरा फेरी,
0: हस्बैंड, देख लो आप कहती रहती
1: सॉरी
0: हो,
1: सॉरी,
0: आप कहती रहती हो कि तुमने मेरी जिंदगी में आगे क्या कर दिया, तुमने में, ये ना होते तो आप करती क्या मोहतरमा?
1: करेक्ट करेक्ट, नो
0: नाम
1: नो, ही इज
0: अच्छा,
1: ऑलवेज देयर, राइट?
0: ये अभी कह रही है कि घर पे भी कहती हैं?
1: नहीं, हमेशा
0: अच्छा, हमेशा
1: हेरा
0: वाली।
1: फटाया तभी तो होता है।
0: क्या नाम है आपका?
1: लवजीत,
0: लवजीत। आपने कहा कहना पड़ता है, कहना नहीं,
1: राइट?
0: कहना नहीं पड़ता, वो लड़का क्लास में पढ़ता है, कहना तो कहता है और कहना सुनता है। होल्ड कीजिए मेरे लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वन योरसेल्फ $10 फ्रॉम फन पिज्जा किचन। यस, इट इज फिर हेरा
1: थैंक
0: फेरी।
1: यू।

जागे तेरे वास्ते सोनिए, ऑल डे ऑल नाइट फन पिज्जा किचन का पिज्जा नहीं खाया तो क्या नाइट क्या डे यार, आपको जरूर ट्राई करना है। एंड जीती है जो लव जीत, आई होप दैट यू लव योर गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। दिस पार्ट ऑफ द शो इज आल्सो ब्रॉट यू बाय सैल्स किचन, जो कि आपके लिए रिचर्डसन में आया है। आजकल जो स्पाइसी चिकन का ट्रेंड चला है ना जनाब, सैल्स हॉट किचन आपको एक ऑफर दे रहा है और वो कह रहा है कि भैया हमने सुना है कि हिंदुस्तानी बहुत मिर्ची खा सकते हैं, तो चलो एक कॉन्टेस्ट लेके आए हैं आपके लिए। पहले तो डेट मार्क कर लो, दिस इज़ ऑन द 6th of June, यानी कि इस सैटरडे को 4 बजे, ठीक है, सैटरडे 4 बजे 6 PM, बल्लू बलराम याद है ना, फलानी डेट को इतने बजे वो भाग जाएगा, उसको छोड़ो आपने डेट याद रखनी है ये वाली, विच इज़ द 6th of June, सैटरडे का दिन है, दोपहर को 4 बजे, सैल्स हॉट किचन इन हॉट चिकन इन रिचर्डसन आपको दे रहा है एक कॉन्टेस्ट। आपके पास 10 मिनट होंगे, 10 मिनट में आपने 3 जंबो एक्स्ट्रा टेंडर्स को ख़त्म करना है और उसके साथ आपको दिया जाएगा 1 ग्लास दूध। जालिम नहीं है, कह रहे मिर्ची लगेगी तो दूध पी लेना, वो अलग बात है कि दूध पीने से भी मिर्ची नहीं हटेगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स हैं। डिपिंग सॉस वगैरह कुछ नहीं अलाउड, ना आपको दूध में डिप करना अलाउड है आपका टेंडर। अच्छा जी, मिलेगा क्या अगर आपने एक टेंडर भी ख़त्म कर लिया? बहुत सारे होते हैं कहते हैं मैं मिर्ची ज़्यादा खा सकता हूँ, 3 टेंडर ना ख़त्म कर पाओ और एक टेंडर ख़त्म कर लिया तो आपको एक फ्री सैंडविच मिलेगा फॉर 7 डेज। एक टेंडर ख़त्म करने पे 7 दिन एक फ्री सैंडविच। अगर आपने 2 टेंडर्स ख़त्म कर दिए, आपको मिलेंगे 15 दिन के लिए 1 फ्री सैंडविच एवरी डे, 15 दिन फ्री सैंडविच।

करने पे 7 दिन एक फ्री सैंडविच। अगर आपने दो टेंडर्स खत्म कर दिए आपको मिलेंगे 15 दिन के लिए 1 free sandwich एवरी डे। 15 दिन फ्री सैंडविच दो टेंडर खत्म करने पे। और अगर आपने 3 inferno टेंडर्स को खत्म कर दिया आपको पूरे 30 days के लिए एक सैंडविच एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा फ्रॉम सैल्स हॉट चिकन इन रिचर्डसन। विजिट funasia.net वेबसाइट टू रजिस्टर। आज ही जाइए उस वेबसाइट पर रजिस्टर करें एंड लेट द स्पाइस चैलेंज बिगिन। हु नोज यू माइट बी द लकी विनर टू गेट 7 days ऑफ चिकन सैंडविच और 15 days और इफ यू आर अ स्पाइस लवर देन 30 days के लिए आपको मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त ये चिकन सैंडविच। Remember to register on funasia.net for the Sal's chicken tender contest.

कयामत कयामत कयामत कयामत तो उस लड़के को फील हुई बेचारे को, जो ना अभी एक क्लिप आया है, बड़ा वायरल हो रहा है वो क्लिप। और वो क्लिप क्या है कि एक पापा अपने बेटे को स्कूटर पे कहीं लेके जा रहे हैं और बेटा उल्टा बैठा हुआ है। सो ही इज़ एक्चुअली फेसिंग द ट्रैफिक दैट इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। एंड उसके एक ट्रैफिक लाइट पे वो रुकते हैं और उस पापा और बेटे के साथ वाले स्कूटर पे एक अंकल और एक आंटी और उसका एक बेटा होता है, नहीं आंटी होती है और उनकी बेटी पीछे बैठी होती है। एंड यू नो लड़कियां जैसे लेफ्ट साइड को बैठती हैं, तो शी वॉज फेसिंग द बॉय। और बॉय को इतना अच्छा लगा कि जैसे ही वो साथ आगे खड़े हुए, टाइम था, ही वॉज ट्राइंग टू जस्ट टच हर चीक। और जब वो टच करने लगा था चीक, पीछे से गाड़ी का हॉर्न बजता है और वो बच्चा बेचारा डर जाता है, घबरा जाता है। उसके बाद का सीन एपिक है। इट्स ऑन माय फेसबुक एंड माय इंस्टाग्राम, गो चेक इट आउट। बंदा बिंदास मारविंदास के नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। आई वाज इन इंडिया कुछ दो हफ्ते तो कहने की बात होती है, एक दिन आपको जाने में लगता है, एक डेढ़ दिन वापस आने में लगता है, एक दिन जेट लैग में निकल जाता है। एक्चुअली आपको कर करा के दो हफ्ते में से 10 या 11 दिन मिलते हैं, बट आई हैड अ ग्रेट टाइम। माय दादी हु इज 90 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने मेरे लिए उठ के ब्रेकफास्ट पे पराठा भी बना के खिलाया, खुद आटा गूंदा, जबकि वी हैव होम हेल्प अवेलेबल। बट कहती है नहीं, मैं तुझसे प्यार करती हूँ तो खुद से खिलाऊंगी। सो ब्लेसिंग्स आर देयर टू बी काउंटेड एवरी डे, एंड इफ यू गेट द चांस मेक श्योर टू लव योर एल्डर्स, बिकॉज दे आर ओनली गोना बी हियर फॉर अ व्हाइल एंड द ओनली थिंग दैट यू विल बी लेफ्ट विद इज मेमोरीज। एक गिव अवे और है मेरे पास फ्रॉम फ्लेवर लाउंज, दे आर ऑफरिंग यू देयर दाल मखनी और देयर ढाबा स्टाइल चिकन एब्सोल्युटली फ्री। ये डाइन इन के लिए ऑप्शन है, दिस इज लोकेटेड इन फ्रिस्को एंड आई एम गिविंग यू द चांस टू विन दैट। सवाल यह है कि जो गाना मैं अब लगा रहा हूँ इस फिल्म का नाम क्या है, एंड इफ यू गिव मी द राइट आंसर, कॉलर नंबर वन हु गिव्स मी द राइट आंसर गेट्स फ्लेवर लाउंज का ये खाना। मेक श्योर कि आपने ये पहले ना जीता हो एंड यू आर एबल टू गो टू फ्रिस्को फ्लेवर लाउंज एंड एंजॉय दिस giveaway from Flavor Lounge. Name of the

गड़बड़ कर दिया ना एआई ने, ये वाला नहीं है, ये वाला है, चेक करो। आस्किंग यू द नेम ऑफ द मूवी जिसमें से ये नया गाना लिया है।

0: गाना लगाते ही मेरे पास आ चुका है जी विनर, देखते हैं कौन है ये विनर जो करेंगे चिकन स्टाइल का डिनर। गुड इवनिंग फनेशिया, रेडियो वॉल्यूम कम, आपका वॉल्यूम ज्यादा, कौन बोल रहा है?
1: सुमेरा।
0: हाय सुनैना, क्या नाम है फिल्म का?
1: सुमेरा।
0: फिल्म का नाम सुमेरा जी?
1: बीबी नंबर वन।
0: नो, ये पुराने वाला था।
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Koyal on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो।
9: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com। कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
13: क्या मतलब?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914।
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
17: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.

अगर आपका भी रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर आपको लूट के चला गया है तो घबराइए मत, क्योंकि अब आपके पास आ चुके हैं हेल टू नेल के अहमद साहब, हु इज 5-star रेटेड ऑन गूगल एंड इज बीन डूइंग दिस फॉर एजेस. मतलब मैं इनको जब से जानता हूं तब से ये रूफिंग का काम करते हैं. DFW होम ओनर्स के लिए ये एक बड़ी परेशानी की बात होती है, स्पेशली व्हेन द रेन सीजन स्टार्ट्स टू प्ले अराउंड. बिजनेस ओनर हो या हो आप घर के मालिक, आपकी छत काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है विद द गोल्फ बॉल साइज हेल दैट यू गेट हियर इन डैलस. ट्रस्ट द एक्सपर्ट्स एट हेल टू नेल कॉन्ट्रैक्टिंग बिफोर यू गेट द हेल दिस ईयर. मैं कहूंगा कि एक बार अपनी छत की इंस्पेक्शन जरूर करवा लीजिए, बिकॉज इफ यू ऑलरेडी हैव स्मॉलर डैमेज देन इट कैन टर्न इन टू अ लॉट मोर डैमेज व्हेन द हेल स्टार्ट्स टू हिट. चाहे शिंगल्स हो या हो TPO मेटल रूफिंग, हेल टू नेल हैंडल्स बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स विद क्वालिटी एंड केयर एंड दे ऑल्सो ऑफर रीमॉडलिंग. अगर आपको घर में कुछ भी रीमॉडल करवाना है, पेंटिंग करवानी है, रिपेयर्स करवाने हैं, कॉन्क्रीट वर्क करवाना है बैकयार्ड में, दे विल मेक श्योर दैट यू गेट सम ऑफ द बेस्ट डील्स. फ्री इंस्पेक्शन है और क्लेम असिस्टेंस भी दिलवाते हैं आपको टू फाइल योर क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी. चेक आउट देयर 5-star रेटिंग्स फॉर योरसेल्फ ऑन गूगल. जस्ट टाइप इन हेल the number 2 and then nail, hail to nail. You type that in your Google, you'll get all the information. Otherwise Nisar bhai ka number aap mujhse le le, 682-561-9795. This number is also available with Phonasia by calling us anytime. Ek aur news dunga aapko is agle gaane ke baad, aur uske baad ho raha hai ji mera time to take leave for today.

World Music Day awaits you on the 21st of June, and if you are a music lover, then this is your opportunity to win some exciting prizes from Fun Asia Radio. And what are those? Well, वो तो surprise है आपके लिए, but क्या जीत सकते हैं? ये बात की बात, पर करना क्या है और कैसे जीतना है वो मैं आपको बताऊंगा. All you have to do is go on to the website of funasia.net. इस website पे अगर आप जाएंगे, you will get information about the World Music Day. अब आप जब वहाँ पे जाएंगे, all you have to do type in your favorite songs from different genres. तो वहाँ पे आपको form में different genres मिलेंगे जो कि आप अपने पसंदीदा गाने उस जॉनर से डाल सकते हैं. एंड इफ योर सॉन्ग इज सिलेक्टेड टू प्ले ऑन द 21st ऑफ ऑगस्ट, व्हिच इज द डे ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक डे, 21st जून को, सॉरी ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाएगा फन एशिया रेडियो पे. और जितने लोग अपने अपने गानों की सिलेक्शन उन जॉनर्स में डालेंगे, उसमें से कुछ लोगों के गाने चूज किए जाएंगे जो कि प्ले किए जाएंगे फन एशिया रेडियो पे ऑन द डे ऑफ द 21st ऑफ जून. तो आपको सिर्फ करना क्या है, जाइए फन एशिया की वेबसाइट पे. वंस यू गो देयर यू विल सी अ टैब फॉर वर्ल्ड म्यूजिक डे, एंड व्हेन यू सी दैट, क्लिक ऑन टू दैट. Put your favorite songs in the genres you like, and who knows, you might be selected. And if you are selected and your songs are played, you will get a prize from Fun Asia Radio. I think bahut hi acha opportunity hai to showcase your favorite music and get rewarded for it as well. I think sone pe suhaga hai bade bhaiya. So get at funasia.net, fill in that form. And who knows, you might be the lucky winner to get some great rewards from Fun Asia. With that, it is time for me to say bye-bye, adios, good night. Kyunki jo aata hai, ji wo jayega. Jo shuru hota hai, usko khatam hona zaruri hai. Yehi duniya ka dastoor hai. Mera aaj ke liye waqt khatam hota chala hai. But mere baad aayengi Ippi the Hippie. And I think she is doing a fantastic job. If you haven't heard her before, make sure to stay tuned from 7 to 10 p.m. And agar aap pehle sun chuke unko, to unko aur hausla afzai dein. Get her to be, feel more comfortable with this station and you guys, because she's new to the station, but I think she's doing a fantastic job. Duaon mein mujhe yaad rakhiyega jaise ki main aapko rakhunga. And if God gives me another day tomorrow, I will be here to entertain you from 5 to 7 p.m. on your favorite station, jiska naam hai Fun Asia Radio, with your favorite evening drive time show, jiska naam hai The Bindaas Show. Ek aur baat hamesha jaate jaate kehta hoon ke bade bhaiya aur badi didi, the man and the woman in the mirror that you see is the most important person. Regardless of what everybody says, sabse zyada zaruri aap hain. क्योंकि आपके अच्छे होने से, आपके सेन होने से, आपके वेल्दी होने से, एवरी एलिमेंट दैट इज़ अराउंड यू, बी दैट योर होम, बी दैट योर डॉग्स, बी दैट योर वाइफ, योर किड्स, योर फैमिली मेम्बर्स, दे रिलाय ऑन अ सेंटर पिवोटल पॉइंट व्हिच इज़ यू. सो इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नोबडी इज़ गोना कम एंड डू दैट फॉर यू. हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ दैट यू कैन एवर एवर एवर ओन और अर्न. सो मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ दैट वेल्थ द मोस्ट. यू नो, जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि इतने बड़े जहाज को कलर कैसे करते होंगे. आप भी सोचते होंगे. अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वो जहाज को कैसे पेंट करते हैं. वो जब जहाज हवा में चला जाता है ना, फिर छोटा हो जाता है, बस तब पेंट कर लेते हैं. गुड नाइट.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
4: Chicken banana. Chicken banana?
5: Bro, banana nahi. Banana. Matlab, make the chicken right.
6: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
7: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes, and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
8: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
9: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
10: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
11: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
10: K2 ड्राइव मतलब
11: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
10: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
11: 100%
12: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
13: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
14: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
13: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
14: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
15: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस